सुप्रभात। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज दिन बुधवार है, शक संवत 1947 के विशाख मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई 2026। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं। अब हमारी सुबह की सभा आरंभ होती है। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जीवन सौरभ। भगवान बुद्ध के सुविचार। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसीलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति लगातार शिकायत करता रहता है, वास्तव में वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो संभवतः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। सब कुछ समझने का अर्थ है सब कुछ माफ कर देना। प्रसन्न

आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान बुद्ध के सुविचार। इन सुविचारों को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। जीवन सौरभ।

अभी आपने सुना जीवन सौरभ। यात्रा करने से महत्वपूर्ण है कुछ भी नहीं है, यात्रा करना अति महत्वपूर्ण है वनस्पत कहीं पहुंचने के। अब आपको बता देते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम। अब से ठीक बात सुनेगा क्षनिधि मंडलिक सूक्त 110। और उसके बाद आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का। रोजाना की तरह सुबह 8 बजे का समय होगा कार्यक्रम वतन के राग का। भुला भाई देसाई पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम और स्वर होगा सुनीता सिंह का।

इतिहास के पन्नों से। ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 8:30 पर रानी दुर्गावती के युद्ध की विजय गाथा डॉक्टर पूजा सक्सेना से संदीप शर्मा की चर्चा इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे।

सुबह 9 बजे सुनिए कार्यक्रम टेक गुरु का एआई पर आधारित कार्यक्रम। एआई विषय पर विशेषज्ञ अनुग्रह नगाइच से रतनेश सोनी यानी मेरी बातचीत आज आप सुनेंगे।

भारत विभूति, यह कार्यक्रम सुनिए सुबह 9:30 पर। योगाचार्य पी के एस अयंगर पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। भगवती सक्सेना विजयकांत नायक का स्वर होगा कार्यक्रम में।

यशोधरा जी पर आधारित कार्यक्रम काव्य गुंजन सुनिए सुबह 10:30 पर। कलाकार हैं मनीषा चतुर्वेदी, वर्षा सिंह, विकास अवस्थी और वत्सला चौबे। हमारे वैज्ञानिक यह कार्यक्रम सुनिए सुबह 11 बजे। डॉक्टर जयंत नालिकर पर आधारित आज का कार्यक्रम होगा। युग प्रवर्तक विवेकानंद ये कार्यक्रम सुनिए 11:30 पर।

तो अब से लेकर दोपहर 12 बजे तक बने रही मेरे यानी रत्नेश के साथ और आनंदी जी इन विभिन्न कार्यक्रमों का। और आइए अब सुनते हैं अक्षय निधि छोटे से अंतराल के बाद।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 110 से वाचन। ऋषि हैं कुत्स आंगिरस, देवता हैं ऋभुगण, छंद है जगति और त्रिष्टुप।
3: ततम मे अपस्तदु तायते पुनः स्वादिष्ठा धीति रुचथाय शस्यते अयम समुद्र इह विश्वदेव्यः स्वाहा कृतस्य समु तृणुत ऋभवः। हे ऋभुदेवो, जो पूजन कृत्य हमने पहले किया था उसे फिर से संपन्न करते हैं। यह मधुर स्तुति देवताओं का गुणगान करती है। समुद्र की तरह विस्तृत गुण वाला सोमरस संपूर्ण देवताओं के निमित्त यहाँ स्थिर है। स्वाहा के साथ आप इसे ग्रहण कर संतुष्टि प्राप्त करें। आभोगयम् प्रयदिच्छन्त एतनापाकाः प्रंचो मम केचिदापयः सौधन वनासश्चिरतस्य भूम नागच्छत सवितुर दाशुषो गृहम्। हे सुधन्वा पुत्रो, अधिक प्राचीन हमारे मित्र आप्त बंधु के समान आप जब सुखोपभोग की कामना से आगे बढ़ें, तब आप अपने निर्मल चरित्र के प्रभाव से उदार दानी सविता देव के आश्रय को प्राप्त हुए। तत् सविता वो मृतत्व मांसुवद गोह्यम यच्छ्री वयंत एतेन त्यम चिच्च मसमसुरस्य भक्षणमेकम संत मकृणुता चतुर्वयम्। हे ऋभुदेवो, कभी न छिपने योग्य सविता देव की कीर्ति का गान करते हुए जब आप उनके समीप गए, तब तत्काल उन्होंने आपको अमरता प्रदान की। त्वष्टा द्वारा निर्मित चमस सोमपान का जो पात्र है को उन्होंने चार प्रकार का बना दिया। विष्टवी शमी तरिणित्वेन वाघतो मर्तासः संतो अमृतत्व मानशुः सौधन्वना ऋभवः सूरचक्षसः संवत्सरे समपृच्यन्त धीतिभिः। मरणधर्मी मानवों ने निरंतर उपासना और कर्मयोग की साधना से अमर कीर्ति को प्राप्त किया। सुधन्वा के पुत्र ऋभु सूर्य देव की तरह ही तेजस्विता संपन्न होकर एक वर्ष के अंतराल में ही सबके द्वारा प्रशंसनीय स्तवनों से पूज्य भाव को प्राप्त हुए, अर्थात पूजे जाने योग्य बन गए। क्षेत्रमिव वि ममुस्ते जनेन एकम पात्र मृभवो जेहमानम उपस्तुता उपमम नाधमाना अमर्त्येषु श्रव इच्छमानाः। प्रशंसित ऋभुओं ने अमर देवों की कीर्ति की उपमा के योग्य यश की इच्छा की और खेत तैयार करने की तरह तेज धार वाले शस्त्र से बार बार प्रयुक्त होने वाले तीक्ष्ण तेजस्वी संकल्प से देवों के समतुल्य पात्रता व्यक्तित्व को विकसित किया। आ मनीषा मंतरिक्षस्य नृभ्यः सृचेवः घृतं जुहवाम विद्मना तरणित्वा ये पितुरस्य सश्चिर ऋभवो वाज मरुहं दिवो रजः। अंतरिक्ष में विचरणशील इन मनुष्य रूपधारी ऋभुओं के निमित्त मनोयोग पूर्वक की गई प्रार्थना के साथ हम चमस पात्र से घृताहुति समर्पित करें। ये ऋभुदेव अपने पिता के साथ सतत क्रियाशील रहकर दिव्य लोक और अंतरिक्ष लोक से अन्न का उत्पादन करने में समर्थ हुए। ऋभुर्न इंद्रः शवसा नवीया नृभुर्वा जेभिर् वसुभिर् वसुर् ददिः युष्माकं देवा अवसाहनि प्रियेभि तिष्ठेम प्रत्सुतीर सुन्वताम। सामर्थ्यवान होने से ऋभुदेव सदा तरुण नौजवान जैसे दिखाई देते हैं और इंद्रदेव की तरह ही संपन्न हैं। शक्तियों और धन संपदा से युक्त ये ऋभु हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। हे देवो, आपके स्मरणीय साधनों से संरक्षित हम किसी शुभ वेला में यज्ञीय कर्मों से रहित रिपुदल पर विजय प्राप्त करें। निश्चर्मणा ऋभवो गाम पिंशत सम वत्से ना सृजता मातरम पुनः सौधन वनासह स्वपस्यया नरो जिर्वी युवाना पितरा कृणोतन। हे ऋभुदेवो, आपने जिसके चर्म ही शेष रह गए थे ऐसी कृशकाया अर्थात दुर्बल शरीर वाली गौ को फिर से सुंदर हृष्ट पुष्ट बना दिया। तत्पश्चात गौ माता को बछड़े से संयुक्त कर दिया। हे सुधन्वा पुत्र वीरो, आपने अपने सत्प्रयास से अति वृद्ध माता पिता को भी युवा बना दिया। वाजेर भिन्नो वाजसाता वविड ढर्यम भुमाम इंद्र चित्रमा दर्शिराधः तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता मदिति सिंधु पृथ्वी उत द्यौः। हे ऋभुओं से युक्त इंद्रदेव, बलपूर्वक पराक्रम प्रधान समर क्षेत्र में अपने समर्थ साधनों के साथ आप प्रविष्ट हों। युद्ध से प्राप्त अद्भुत संपदाओं को हमें प्रदान करें। हमारी यह प्रिय कामना मित्र वरुण अदिति समुद्र पृथ्वी और द्युलोक आदि देवों द्वारा भी अनुमोदित हो।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 110 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
4: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सबके मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं।

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही हैं।

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में लाल किला ट्रायल का महत्वपूर्ण स्थान है। इतिहास साक्षी है कि दिल्ली चलो के नारे के साथ आजाद हिंद फौज भारत की आजादी के लिए आगे बढ़ी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की बदलती हुई परिस्थितियों और खराब मौसम को देखते हुए उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा और नवंबर सन 1945 से लेकर मई 1946 तक आजाद हिंद फौज के अनेक अधिकारियों पर मुकदमे चले। इनमें पहला और सबसे प्रसिद्ध मुकदमा दिल्ली के लाल किले में चला, जो लाल किला ट्रायल के नाम से प्रसिद्ध है। ये मुकदमा कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लो और मेजर जनरल शाहनवाज खान पर संयुक्त रूप से चला था। इस ऐतिहासिक मुकदमे की अनुगूंज से पूरा भारत आंदोलित हो उठा। इसी मुकदमे के दौरान जन जन की जुबान पर नारा था, लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लो शाहनवाज, तीनों की हो उम्र दराज। इस मुकदमे और नारे ने जैसे जागरण का एक मंत्र फूंक दिया था, मानो ये कोई मुकदमा नहीं स्वाधीनता का कोई आंदोलन हो। इसने देश की आजादी के लिए लड़ रहे अनगिनत नौजवानों को एक सूत्र में बांध दिया था। इस मुकदमे की पैरवी कर रहे थे सुप्रसिद्ध वकील भूला भाई देसाई। मुकदमे के दौरान जब वो लाल किले में बहस करते तो सड़कों पर हजारों नौजवान नारे लगा रहे होते। उनकी दलीलों से पूरे भारत में जैसे देशभक्ति का एक ज्वार सा उठ खड़ा हुआ था। भूला भाई देसाई का जन्म गुजरात के वलसाड़ में 13 अक्टूबर सन 1877 को हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा वलसाड़ के अवाबाई स्कूल में और फिर आगे की पढ़ाई भारदा हाई स्कूल बॉम्बे में हुई, जहां उन्होंने सन 1895 में अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी दौरान उनका विवाह इच्छाबेन के साथ संपन्न हुआ, जिनसे उनका एक पुत्र हुआ धीरू भाई। आगे की पढ़ाई के लिए भूला भाई देसाई ने बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया तथा अंग्रेजी साहित्य तथा इतिहास में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे अत्यंत मेधावी छात्र थे। उन्हें वर्ड्सवर्थ पुरस्कार और इतिहास तथा राजनीतिक अर्थव्यवस्था में पहला स्थान प्राप्त करने के कारण छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। पढ़ाई के बाद वो गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में अंग्रेजी और इतिहास के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। अध्यापन के दौरान ही उन्होंने कानून की भी पढ़ाई की तथा सन 1905 में बॉम्बे उच्च न्यायालय से वकालत प्रारंभ की। वे वकालत के द्वारा ही लोगों की सेवा करना चाहते थे। बहुत जल्द अपने शहर और फिर देश भर में एक मुखर और योग्य वकील के रूप में वो विख्यात हो गए।

वकालत करते हुए ही भूला भाई देसाई का रुझान देश की राजनीति की ओर हुआ। वो कुछ लोगों के संपर्क में आए। देश में स्वराज की आवाज उठ रही थी। भूला भाई देसाई ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग में शामिल होने के साथ की। साइमन कमीशन के विरोध के समय वो सामने आए। जून सन 1928 में गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह आरंभ किया। भीषण अकाल के बाद भी प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी। इसी के विरोध में ये किसान आंदोलन आरंभ हुआ था। सरदार पटेल की अगुवाई में भूला भाई देसाई ने बहुत मजबूती के साथ किसानों के मामले का प्रतिनिधित्व किया और अंततः विवश होकर ब्रिटिश सत्ता को झुकना पड़ा। 22% की लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया गया। भूला भाई देसाई गांधी जी के विश्वस्त और प्रिय सहयोगी हो गए थे। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार हेतु देश भर में लगातार आंदोलन हो रहे थे। गांधी जी ने स्वदेशी को स्वतंत्रता का मंत्र बना दिया था। भूला भाई देसाई को भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ब्रिटिश राज के विरोध का एक प्रभावशाली माध्यम लगता था। इसी विचारधारा से प्रेरित होकर सन 1932 में उन्होंने स्वदेशी सभा का गठन किया और अपनी गतिविधियां तीव्र कर दीं। उन्होंने जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए लगभग 80 कपड़ा मिलों को इस महाअभियान में शामिल कर लिया। सभी मिल मालिकों को विदेशी माल न खरीदने के लिए उन्होंने तैयार किया। स्वदेशी सभा की गतिविधियां अंग्रेजों की आंख की किरकिरी थी, इसलिए ब्रिटिश सत्ता द्वारा स्वदेशी सभा को अवैध घोषित कर दिया गया। लेकिन भूला भाई देसाई भला कब रुकने वाले थे। स्वदेशी सभा की गतिविधियों को देखते हुए सन 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

जेल के कठिन जीवन को सहते हुए भूला भाई देसाई बीमार रहने लगे। उनके गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए आगे चलकर उन्हें रिहा किया गया और अपने इलाज के लिए उन्हें यूरोप जाना पड़ा। सन 1934 में वो गुजरात से केंद्रीय विधानसभा के लिए चुने गए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल किए जाने के मुद्दे का उन्होंने विधानसभा में पुरजोर विरोध किया। गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर पुणे की यरवदा जेल भेज दिया गया। जेल में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसके कारण उन्हें रिहा करना पड़ा। खराब स्वास्थ्य के कारण ही वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं ले पाए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश के सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। इस दौरान भूला भाई देसाई सक्रिय रहे। अंग्रेज सरकार पर राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए दबाव बनाने के साथ साथ एक आदर्श भारतीय गठबंधन बनाने के उद्देश्य से उन्होंने मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली से भी बातचीत शुरू की थी। जब आजाद हिंद फौज के तीनों अधिकारियों शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, तब भूला भाई देसाई सहित 17 अधिवक्ताओं की एक रक्षा समिति बनाई गई। तेज बहादुर सपरू के नेतृत्व में ये रक्षा समिति कार्य कर रही थी। जब लाल किला ट्रायल शुरू हुआ तो तेज बहादुर सपरू की अस्वस्थता के कारण भूला भाई देसाई ने इस मुकदमे की पैरवी की। ये एक ऐतिहासिक मुकदमा था। भूला भाई देसाई ने 3 महीने लगातार काम किया और उन्होंने अपने तर्कों में अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए कहा कि तीनों आरोपियों ने एक अनंतिम सरकार के आदेश के तहत अपने देश के लिए स्वतंत्रता हासिल करने के लिए हथियार थामा, जो उनका हक था। उनका पहला तर्क था कि आजाद हिंद फौज एक उचित रूप से गठित और स्वशासित सेना थी, जिसे भारतीय अधिकारी संचालित कर रहे थे, जिसका अपना अनुशासनात्मक कोड, रैंक, वर्दी और चिन्ह था। यह सिर्फ जापान द्वारा संचालित कोई ग्रुप नहीं था। भूला भाई देसाई ने यह तर्क दिया कि आजाद हिंद फौज स्वतंत्र आजाद हिंद सरकार की ओर से लड़ रही थी और आजाद हिंद सरकार को 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। इसके बाद ही उसने ब्रिटेन से युद्ध की घोषणा की। इसका अर्थ था कि एक युद्धरत राज्य के रूप में आईएनए अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकती है। इस तरह भूला भाई देसाई ने राजद्रोह के तर्क को घुमाकर उस बिंदु पर ला खड़ा किया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार एक गुलाम देश के पास एक विदेशी शासक से युद्ध कर उसे बाहर निकालने का अधिकार प्राप्त है। भूला भाई देसाई के अकाट्य तर्कों का ये प्रभाव रहा कि तीनों आरोपियों को नौकरी से बर्खास्त कर वेतन भत्ते जब्त करने के आदेश दिए गए तथा किसी सुदूर जगह भेजने की सजा सुनाई गई। उनके तर्कों ने न केवल तीनों को फांसी की सजा से बचा लिया, बल्कि उनकी पैरवी के बहाने से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजादी हेतु किए गए कठिन प्रयासों की जानकारी जन जन तक पहुंच गई। ये मुकदमा जैसे आजाद हिंद फौज का प्रचार मंच बन गया। मुकदमे के दौरान पूरे भारत में आजादी के लिए फिर से तीव्र आवेग पैदा हुआ। लोग देश पर मर मिटने को तैयार थे। जगह जगह अंग्रेजी राज के विरुद्ध धरने, प्रदर्शन हुए, एकता की सभाएं हुई और अंग्रेज जान गए कि अब इस देश में और टिकना उनके लिए संभव नहीं है। 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन इस आजादी की भोर देखने के लिए भूला भाई देसाई नहीं थे। 6 मई सन 1946 को वो अनंत में विलीन हो चुके थे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: द्विधातु जाल और ईस्ट इंडिया कंपनी। 17वीं शताब्दी के एक बंदरगाह पर खड़े होने की कल्पना कीजिए, जहां एक जहाज पर चमकदार सोने से भरे एक के बाद एक संदूक लादे जा रहे हैं। 1670 के दशक में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये केवल धन का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये एक हताश कर देने वाला वित्तीय दाव था। लंदन में चांदी, जो वैश्विक व्यापार का मानक थी, खतरनाक रूप से दुर्लभ और महंगी होती जा रही थी। व्यापार को चालू रखने के लिए कंपनी ने सोने का रुख किया। शुरुआत में ये रणनीति शानदार लगी। भारत में चांदी की कीमत गिर रही थी, जिसका अर्थ था कि वहां सोने का व्यापार भारी प्रीमियम पर हो रहा था। लेकिन तभी बाई मेटालिक रिश्यू ट्रैप, यानी दो धातुओं के मूल्य का जाल अचानक बंद हो गया। साल 1676 था और भारतीय बुलियन बाजार अचानक चरमरा कर गिर गया। बिना किसी चेतावनी के सोने की चांदी में आकी जाने वाली कीमत धराशायी हो गई। सोने के सिक्के, जो दशकों से 15 रुपए में बिकते थे, गिरकर केवल 11 या 12 रुपए पर आ गए। कंपनी की सूरत फैक्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई, जिसने अपने सोने के शिपमेंट पर अत्यधिक भारी नुकसान की रिपोर्ट दी। इस अचानक गिरावट का कारण क्या था? बाजार की अफवाहों का दावा था कि तत्कालीन मुगल शासक औरंगजेब ने अफगानिस्तान और दक्कन में अपने भीषण युद्धों के वित्त पोषण के लिए अपने विशाल पैतृक सोने के भंडार को बाजार में उतार दिया था। अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए अर्थव्यवस्था में शाही सोने की बाढ़ लाकर सम्राट ने अनजाने में कंपनी के मुनाफे को पूरी तरह खत्म कर दिया। कंपनी ने लंदन में चांदी की कमी से बचने की कोशिश की थी, लेकिन भारत में सोने की अधिकता, यानी गोल्ड ग्लट, ने उन्हें कुचल दिया। 17वीं सदी की इस आपदा ने कंपनी को वापस चांदी की ओर लौटने पर मजबूर कर दिया। इसने साबित कर दिया कि वैश्विक मुद्रा के इस उच्च जोखिम वाले खेल में एक सम्राट की कलम का एक वार सबसे शक्तिशाली कॉरपोरेशन को भी घुटनों पर ला सकता है।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: नमस्कार, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा, और आज हम अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से में आगे की कहानी जानेंगे।

0: इसके पहले के एपिसोड्स में हम आपको बता रहे थे गोंड जनजाति के बारे में, रानी दुर्गावती के बारे में, और हम यहाँ तक पहुँच चुके थे कि बस युद्ध की तैयारियाँ हो चुकी थीं। युद्ध के मुहाने पर दोनों सेनाएं खड़ी हुई थी, रानी दुर्गावती की और मुगल सेना। इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी में हमने सुना था कि 1564 ईस्वी में गढ़ा की गोंड रानी और दिल्ली के मुगल शासक अकबर के बीच युद्ध पर आ बनी। मुगल सेनापति आसफ खां अकबर की ओर से अपनी विशाल सेना के साथ गढ़ा राज्य की सीमा पर आकर डट गया। इधर जब गोंड रानी दुर्गावती को स्थिति की जानकारी मिली तो उन्होंने भी अपनी सेना को सुगठित किया और युद्ध के लिए नरई की तरफ बढ़ गईं। बीच रास्ते में उन्होंने सेना को फिर से संगठित किया। अनेक लोग उनकी सेना में स्वेच्छा से भर्ती हो गए। रानी की सेना में 2 से 3 हजार सैनिक थे, जबकि मुगल सेना में लगभग 50 हजार सैनिक, हाथी और घोड़े थे। कई इफ्तिखार भी अपनी सेनाओं के साथ मुगल सेना में आकर जुड़ गए थे। इस तरह मुगल सेना जहां एक तरफ बहुत विशाल थी, वहीं रानी की सेना उसकी अपेक्षा में बहुत कम थी। रानी को यह भी सलाह दी गई थी कि वो संधि कर लें और युद्ध से बच जाएं। किंतु रानी दुर्गावती युद्ध से मोड़ लेने जैसा कायराना काम कर ही नहीं सकती थी। उन्होंने युद्ध क्षेत्र को ही चुना। कहते हैं कि रानी ने अपनी सेना को संबोधित किया और उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। यहां करो या मरो की स्थिति थी। रानी के ओजपूर्ण वक्तव्य ने काम किया और उनकी संपूर्ण सेना ने एक मत होकर युद्ध करने की इच्छा जाहिर की और एकजुट होकर स्वीकार किया कि जो भी परिणाम होगा उसके वो सामूहिक रूप से भागीदार होंगे, जिम्मेदार होंगे। हमारी विषय विशेषज्ञ और पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना ने हमें बताया था कि गढ़ा की प्रजा रानी का बहुत अधिक सम्मान करती थी। वो उन्हें माँ दुर्गा के समान मानती थी और इसलिए आज भी जो आख्यान गाए जाते हैं इस क्षेत्र में, उसमें इस नरई के युद्ध की घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। रानी को याद करते हुए आज भी जस गाए जाते हैं, यानी कि यश गीत गाए जाते हैं। ऐसे अनेक जस हैं जिसमें रानी को माँ दुर्गा के समान बताया गया और युद्ध के लिए रानी ने कैसे हुंकार भरी, वो कैसी दिख रही थी, पूजा जी ने बताया था। और एक बार फिर से वो सैला लोकगीत आपको जरा सा उसकी चार पंक्तियां हम यहां पर पढ़ रहे हैं। तरी नाना मो नाना रे नाना, तरी नाना मो नाना रे नाना, रानी महारानी ओ आए, माता दुर्गा जो आए, रणमा जूझे तलवारी, रानी दुर्गा कहाए। पूजा जी फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी हमें देने के लिए। फिर से पहले से ही अग्रिम धन्यवाद।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पूजा जी, अब आंखों देखा हाल आपसे सुनना चाहेंगे युद्ध का।
1: जैसा आपने कहा कि गढ़ा की सेना और आसफ खां की सेना दोनों लगभग सामने

0: युद्धों में देखने को मिलता है।
1: जी
0: यहाँ वह राजा महान होता है जो प्रजापालक हो, लोकहित में कार्य करता हो, राज्य की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दे, ऐसा राजा ऐसी रानी हमें प्रिय होती है।
1: बिल्कुल।
0: महानता इसमें नहीं है कि आप कितने साधन संपन्न थे,
1: जी हाँ,
0: आपके पास कितनी विशाल सेना थी या आप कितने बड़े राज्य के मालिक थे।
1: बिल्कुल।
0: महानता इसमें होती है कि जिस परिस्थिति में आप थे उसमें आपने क्या पराक्रम दिखाया।
1: जी हाँ।
0: आप परिस्थिति का सामना करने की बजाय भाग खड़े हुए या अपनी प्रजा के सम्मान के लिए, राज्य की रक्षा के लिए आप प्राणों की आहुति देने में भी पीछे नहीं हटे।
1: जी।
0: इन सभी प्रतिमानों पर हमारी लोकप्रिय गोंड रानी दुर्गावती खरी उतरती हैं।
1: बिल्कुल, पूरी तरह। जी।
0: उनके पास जो भी साधन थे, संसाधन थे, उसके साथ ही वह विशाल मुगल सेना के आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार हो गईं। गढ़ा की सेना को सुगठित किया, अपने वक्तव्य से सैनिकों को प्रेरित किया, उनके नेतृत्व में गढ़ा की सेना पूरे पराक्रम से इस युद्ध को लड़ी। गढ़ा राज्य की रक्षा के लिए रानी दुर्गावती और उनकी प्रजा सर्वस्व बलिदान करने के लिए सहर्ष तैयार थी।
1: पूजा जी, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि रानी दुर्गावती बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन फिर उन्होंने थोड़ी सी कुछ कूटनीति का इस्तेमाल किया और उन्होंने जो आगे बढ़ने की दिशा थी वो अपनी बदल दी थी, और उससे क्या आसफ खां की सेना चौंकी, आसफ खां चौंका या नहीं, क्या हुआ?
0: जैसा कि हम जानते हैं कि जब रानी की सेना अचानक जंगलों की ओर मुड़ गई
1: जी
0: नरई आते आते, तो आसफ खां को समझ नहीं आया कि सेना गई कहां।
1: जी।
0: कुछ समय बाद जब उनको यह सूचना मिली कि रानी की सेना नरई की ओर बढ़ रही है, तब उसने जल्दी से अपने दो सेनापतियों नाजिर मोहम्मद और आक मोहम्मद को सेना का एक बड़ा भाग देकर आगे आगे जाने को कहा।
1: जी हाँ।
0: वे दोनों मुगल सेना को लेकर नरई की ओर आगे बढ़ने लगे। वहीं सेनापति आसफ खां और अधिक सूचनाएं जुटाता रहा और पीछे बची हुई जितनी सेना थी उसको साथ लेकर नरई की ओर रवाना हो गया।
1: जी।
0: रानी तक भी यह समाचार पहुंचा कि मुगल सेनापति आसफ खां की ओर से नाजिर मोहम्मद और आक मोहम्मद के नेतृत्व में मुगल सेना की टुकड़ियां घाटी में प्रवेश कर रही हैं।
1: जी।
0: अब जैसी की योजना थी, रानी दुर्गावती ने यह निश्चय किया कि जब मुगल सेना नरई घाटी में प्रवेश कर जाएगी
1: जी।
0: तब उसका सामना किया जाएगा, क्योंकि चारों ओर से यह घाटी पहाड़ों से
1: घिरी हुई थी और इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से गोंड सेना जानती
0: भी थी। एक और नर्मदा नदी थी, दूसरी तरफ गौर नदी
1: जी।
0: तो इस क्षेत्र की अच्छी जानकार थी गोंड सेना। तो ये निश्चित हो गया कि जब नरई की घाटी में सेना प्रवेश कर जाएगी आसफ खां की, उसके बाद ही कोई हमला किया जाएगा
1: जी।
0: तो गोंड सेना भी अपने शस्त्रों और अस्त्रों के साथ सुसज्जित थी
1: जी।
0: गोंड सेना में हाथी थे, घोड़े थे और पैदल सैनिक भी थे
1: जी।
0: ये सभी धनुषवाण, ढाल, तलवार, कृपाण, कटार, बर्छी, भाला, ये सब लेकर एकदम तैयार खड़े थे।
1: पूजा जी, युद्ध बिल्कुल लड़ा कब गया, क्या कोई तारीख नजर आती है?
0: बिल्कुल, स्पष्ट आईने अकबरी में मेंशन है कि यह युद्ध 1564 ईस्वी में लड़ा गया और तारीख थी 23 जून और 24 जून।
1: अच्छा, यानी ये दो दिन की ये लड़ाई थी
0: ये लड़ाई थी। और आज से अगर हम इसको देखें तो 459 वर्ष इसको हो चुके हैं इस युद्ध को, फिर भी ये युद्ध हमारी यादों में आज भी है,
1: आज भी हमारी स्मृतियों में है और आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। रानी दुर्गावती के शौर्य की हम गाथा की बात कर रहे हैं। तो पूजा जी, हमारे श्रोता भी बहुत बेखर आ रहे हैं, बहुत उत्सुक हैं कि आगे युद्ध में क्या हुआ, बताइए।
0: जब रानी को यह पता चला कि आसफ खां की सेना की जो अग्रिम टुकड़ियां हैं वो नरई में प्रवेश करने ही वाली हैं, तो रानी दुर्गावती ने अपनी सेना घाटी के चारों ओर ऊंचे स्थान पर इस प्रकार खड़ी की कि शत्रु सेना के आते ही उस पर धावा बोला जा सके। जैसे ही मुगल सेना ने नरई घाटी में प्रवेश किया, रानी दुर्गावती के आदेश से गढ़ा की सेना ने चारों ओर से उस पर हमला बोल दिया
1: जी।
0: दोनों ही सेना के बीच भीषण युद्ध आरम्भ हो गया। हाथी, घोड़े पर सवार दोनों ही सेनाओं के सैनिक युद्ध कर रहे थे। धनुष, बाण, तीर, तलवार और भालों की खनखनाहट से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठा था।
1: अच्छा मैम, रानी दुर्गावती तो नेतृत्व कर ही रही थी सेना का, लेकिन जैसे कि होता है कि पैदल सेना, जैसे अश्व सेना, हाथी सेना, तो ये जो अलग अलग सेनाएं थी, ये जो अलग अलग युद्ध कौशल थे, तो और कौन कौन नेतृत्व करता थे रानी दुर्गावती की सेना में, उनके अगर यदि आप कुछ नाम हमें बता पाएं।
0: हमने जैसा कि पहले बात की थी एक बार कि जब रायसेन पर आक्रमण हुआ था उस समय रानी दुर्गावती जब विजय हुई थी तो उनकी सेना में कुछ मियाना अफगानी जो थे वो भी शामिल हो गए थे
1: जी, जी।
0: और वो ऊंचे पदों तक भी पहुंचे, उनकी सेना में वो सेनापति भी बने
1: जी।
0: तो आपको कुछ नाम याद होंगे जैसे कि शम्स खां मियाना
1: जी, जी।
0: मुबारक बिलूच
1: जी।
0: तो ये जो थे ये अब भी इस नरई की युद्ध में भी शामिल थे
1: जी।
0: और सेनापति के तौर पर शामिल थे और इन्होंने भी बड़ी वीरता पूर्वक इस युद्ध में लड़ा। इसी तरह जैसा कि हमने पिछले अंकों में बात की थी कि जो गढ़ा के राजा थे दलपत शाह
1: जी,
0: जब उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई तो उनका जो पुत्र था वीर नारायण
1: जी,
0: वो बहुत छोटा था, 3-4 वर्ष का रहा होगा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: अगला राजा जो घोषित किया गया था वो वीर नारायण को घोषित किया गया
1: हाँ।
0: था और रानी ने उनकी संरक्षिका बनकर राजकाज संभाला था
1: जी हाँ।
0: तो अब इस समय तक आते आते यानी कि 1564 ईस्वी तक आते आते वीर नारायण लगभग 17-18 वर्ष के रहे होंगे, रानी को शासन करते हुए 14 वर्ष हो चुके थे। तो वीर नारायण 17-18 वर्ष के नौजवान थे
1: जी।
0: बहुत अनुभवी तो नहीं रहे होंगे लेकिन हाँ साहसी थे। इस युद्ध में उनका भी वर्णन आता है, वो भी सेना का नेतृत्व कर रहे थे
1: जी।
0: तो ऐसे कुछ नाम हमको गढ़ा राज्य की सेना में मिलते हैं।
1: और पूजा जी, क्या रानी दुर्गावती की सेना में एक फौजदार थे जिनका जिक्र इतिहास में आता है, अर्जुन सिंह, उनकी क्या भूमिका थी इस युद्ध में, क्योंकि ये युद्ध उनके लिए भी काफी याद किया जाता है।
0: इस युद्ध का जो सबसे प्रमुख बलिदान सर्वप्रथम दिया वो थे अर्जुन सिंह बखीला, उनको अर्जुन सिंह बैस के नाम से भी जाना जाता है और अर्जुन सिंह बघेल के नाम से भी जाना जाता
1: अच्छा।
0: है। तो ये जो अर्जुन सिंह बखीला थे ये रानी की जो हाथी सेना थी उसका संचालन किया करते थे, फौजदार थे सेना में
1: जी।
0: और जब युद्ध चल रहा था तो उस समय इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब आसफ खां की सेना नरई में प्रवेश कर रही थी उसी समय अर्जुन सिंह बघेला ने पूरा नेतृत्व संभाल लिया और हाथी की सेना के द्वारा उन्होंने खूब अच्छा संचालन किया
1: जी।
0: आप जानते ही हैं कि मध्य युग में हाथियों का सेना में बहुत अधिक महत्व था,
1: जी।
0: हाथी की जो ऊंचाई होती है काफी ज्यादा होती है और ये काफी बलशाली पशु भी है
1: जी।
0: और अपने जो प्रशिक्षक होता है उसकी बात भी बहुत अच्छे से मानता है, इसलिए सेना में हाथियों का खूब उपयोग होता था और हाथी की सेना का जो संचालन करता था उसका भी बहुत ही महत्व था। तो इस पूरे युद्ध में अर्जुन सिंह बघेला का संचालन बहुत महत्व रखता था
1: जी।
0: तो जब आसफ खां की सेना नरई में प्रवेश कर गई तो सबसे पहला सामना अर्जुन सिंह बघेला ने ही किया और उन्होंने काफी वीरता पूर्वक युद्ध किया
1: जी।
0: लेकिन शाम होते होते अर्जुन सिंह बघेला वीरगति को प्राप्त हो गए और ये गढ़ा राज्य के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति थी।
1: निश्चित रूप से कि जिस सेना में हाथी सेना का बहुत, जिस युद्ध में बहुत ज्यादा महत्व हो, उसके जो फौजदार हैं जो हाथी सेना का संचालन ही कर रहे थे वो बहादुरी से लड़े और वो वीरगति को प्राप्त हुए, तो ये एक बड़ा सेटबैक था, ये अपूर्णीय क्षति थी गोंड सेना के लिए। वाकई श्रोताओं, पूजा जी ने हमें एक बहुत अहम जानकारी ये भी अपने पिछले अंकों में दी है कि एक बहुत बड़ा कारण हाथी भी थे गोंड राज्य पर कब्जा करने के लिए, जो अन्य शासक थे वो क्यों ललायत रहते थे। कहते हैं कि उस समय उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में हाथी पाए जाते थे। तो ये एक बहुत अच्छी और नई जानकारी निकल कर के आई है, क्योंकि हम आज के मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ बहुत सारे हाथी आज नहीं पाए जाते हैं, लेकिन उस समय वो वन क्षेत्र कितना सघन रहा होगा और कितनी उपजाऊ वो भूमि रही होगी कि वहाँ पर हाथी जैसे बड़े शाकाहारी जीव के लिए परिस्थितियाँ कितनी अनुकूल रही होंगी। तो पूजा जी, जब अर्जुन सिंह बैस वीरगति को प्राप्त हुए तो युद्ध उसके बाद भी जारी रहा, क्या इस पूरी बात से गढ़ा सेना का जोश कुछ कम हुआ?
0: युद्ध अपने चरम पर था, दोनों ओर की सेनाएं जोर शोर से लड़ रही थीं, खूब तीर तलवार ढाले बर्छे सब चल रहे थे
1: जी।
0: कोई कमी नहीं थी, एक योद्धा के जाने से सेना रुक नहीं जाती,
1: बिल्कुल।
0: वो तो अपने बराबर जिस उद्देश्य को लेकर चली है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरी मेहनत करती है
1: जी।
0: तो गढ़ा की सेना भी अपना पूरा दल बल के साथ में लगी हुई थी
1: जी।
0: युद्ध जारी था, अब धीरे धीरे दिन ढलने लगा
1: जी।
0: सूरज की रोशनी भी अब मद्धम हो चली थी
1: जी।
0: पर गड़ा की सेना का जोश कम नहीं हुआ था
1: जी।
0: लगातार तीर भाले तलवार की आवाजें गूंज रही थी। दोनों ओर से कई सौ सैनिक मारे जा चुके थे
1: जी।
0: फिर भी युद्ध तो अपनी गति पर था
1: जी। तो क्या जब शाम हो चुकी थी तो शाम के बाद भी, सूरज ढलने के बाद भी तब युद्ध होता था?
0: नहीं, जैसा कि पुराने युद्धों में नियम है
1: जी
0: कि शाम ढलने के बाद युद्ध नहीं होगा
1: जी।
0: आपने कभी ध्यान दिया हो तो भारतीय परंपरा में युद्ध जैसा कोई शब्द ही नहीं है।
1: अच्छा।
0: वास्तव में युद्ध एक अधूरा शब्द है, पूरा शब्द है युद्ध कला।
1: अच्छा।
0: युद्ध को भी एक कला के तौर पर देखा जाता है और कला में हमेशा नियम होते हैं।
1: नियम होते हैं
0: बिल्कुल। और सभी को उसका पालन करना होता है।
1: क्या बात है।
0: इसलिए युद्ध में जो नियम रख दिए जाते हैं कि जैसे कि शाम को नहीं युद्ध लड़ना है, सूरज ढलने के बाद युद्ध नहीं होगा
1: जी।
0: सूरज ढलने के बाद आपस में कोई एक दूसरे को नहीं मारेगा, या युद्ध के समय किस किस प्रकार के नियमों का पालन करना होगा, ये सब सुनिश्चित होता है
1: जी।
0: इसलिए हम बहुत सारे युद्धों में ऐसा देखते हैं कि जब भारतीय युद्ध लड़ते थे तो वो नियमों का उल्लंघन नहीं करते थे
1: जी।
0: और उसके कारण कई बार हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी पराजय भी हमको झेलनी पड़ी
1: जी।
0: लेकिन नियमों पर अडिग रहे और कभी भी उन्होंने नियमों को नहीं तोड़ा
1: जी।
0: तो यहाँ भी हम देखते हैं कि जब शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा, तो अब युद्ध इस दिन का यानी 23 जून का
1: जी।
0: अब समाप्ति की ओर था
1: जी।
0: पर युद्ध बराबर तेजी से लड़ रहे थे, हालांकि काफी सारे सैनिक मारे जा चुके थे
1: जी।
0: गौंड सेनापति भी पूरी बहादुरी से अभी तक लड़ रहे थे
1: जी।
0: आखिर सूरज ढलने लगा और पहले गढ़ा की सेना ने मुगल सेना को पीछे की ओर धकेल दिया।
1: वाकई श्रोताओं, कितनी अद्भुत जानकारी है ये कि ये तो हमें पहली बार पता चला कि युद्ध कोई शब्द हमारे इतिहास में होता ही नहीं था। पूरा जो शब्द है वो है युद्ध कला। युद्ध को हम सब भारतीय कला के रूप में देखते थे और पूजा जी ने हमें कितनी अच्छी और वास्तविक जानकारी दी कि कला में हमेशा नियम होते हैं, कला नियमों में बंधी रहती है तभी वो कला कहलाती है। और भारतीयता में ये बात कही गई कि सूरज ढलने के बाद युद्ध कला जारी नहीं रहेगी, हथियार रख दिए जाएंगे और जो लोग थोड़ी देर पहले तक सूरज की किरणों में एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू होते थे वो वहां पर अपनी अपनी तलवारें अपने म्यान में डाल दिया करते थे। तो ये कितनी वाकई अद्भुत बात है युद्ध कला की।
0: तो इस दिन का युद्ध समाप्त होने को था, दोनों सेनाएं खूब जोर शोर से लड़ रही थी, लेकिन इस तरफ देख रहे थे कि सूरज ढलने को था
1: जी।
0: और बस गढ़ा की सेना ने कमाल दिखा दिया, मुगल सेना को पीछे धकेल ही दिया।
1: वाह।
0: नरे की घाटी से आसफ खां की सेना को भागने पर मजबूर कर दिया और इस तरह आक मोहम्मद और नाजिर मोहम्मद बची खुची सेना लेकर घाटी से वापस भाग गए और रानी दुर्गावती की विजय हुई।
1: तो पूजा जी, क्या जो विजय थी, जो 23 जून को जो विजय हुई, ये इसके पीछे रानी की कूटनीति का ही कमाल था? क्योंकि पहले तो दूसरी तरफ से आने वाली थी, फिर रास्ता बदला और उस तरफ से आई जहाँ के उस पूरे इलाके का उनको ज्ञान था। और जो ऊंची ऊंची जगहों पर आपने कहा कि हाथी जैसे जीव के ऊपर जब बैठ करके ऊपर से वार किया जाता है तो वो विरोधी के लिए मुश्किल होता है, तो फिर तो हाथी इनके पास भी थे। लेकिन रानी ने दक्षता विशेषज्ञता ये दिखाई कि वो घाटी में बहुत ऊंचे ऊंचे स्थानों पर उन्होंने अपने सैनिकों को और शूरवीरों को भेजा, तो क्या इस कूटनीति से उनको मिला?
0: प्रकृति की जानकारी होना गोंड जनजाति की विशेषता है
1: जी।
0: और यही विशेषता इस पल पर उनके काम आई। जब उनके पास एक बहुत छोटी सेना थी, आकस्मिक आक्रमण हुआ था, तो ये सब जानकारियां उनके लिए तो जैसे सकारात्मक ही थी
1: जी।
0: और रानी ने अपने पराक्रम से, अपने संकल्प से ये कर दिखाया कि इतनी छोटी सेना होते हुए भी उन्होंने एक विशाल सेना के ऊपर विजय प्राप्त कर ली।
1: वाकई ये कमाल की बात है। और देखिए श्रोताओं, कितनी अद्भुत ये बात है कि यदि हमें अपने इलाकों के बारे में बहुत अच्छे से पता हो, खास तौर से जब हम उस दौर की बात करें, राजाओं की बात करें, तो राजा सिर्फ अपने महल में बैठकर ही राजकाज नहीं किया करते थे। जब तक कि वो रानी दुर्गावती की तरह बाहर नहीं घूमते थे, अपने इलाके में नहीं जाते थे, तब तक उन्हें ये जानकारी हो ही नहीं सकती थी कि किस तरफ नदी है, कहाँ नदी का घाट है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ घाटी है और कहाँ आने जाने का रास्ता है। और यदि ये जानकारी रानी के पास नहीं होती तो निश्चित रूप से इस युद्ध में उनकी हार हो सकती थी, क्योंकि बहुत ही कम सेना थी रानी दुर्गावती के पास। अदम्य साहस और शौर्य तो था ही, लेकिन बहुत सटीक जानकारी थी युद्ध कौशल होने के साथ साथ। फिर वहां उन्होंने कूटनीति का भी प्रयोग किया, एक ओर मां नर्मदा का उन्हें आशीर्वाद मिला, दूसरी ओर घाटी थी, और फिर बाकी काम उन सभी लोगों की वीरता ने कर दिखाया। तो मैम, जैसे कि आपने ये कहा, आईना अकबरी में भी 23 जून और 24 जून की इस लड़ाई का उल्लेख मिलता है। 23 जून को तो विजय हो ही गई थी, और क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है तो 24 जून की बात तो हम अपने अगले अंक में करेंगे, लेकिन क्या कोई और भी हमें साक्ष्य मिलता है जो इस युद्ध का उल्लेख करता हो?
0: जी हाँ, गढ़ा के गोंड राज्य के बारे में जानने के लिए एक बहुत प्रामाणिक स्रोत है, रामनगर मंडला में एक शिलालेख लगा है जिसमें गढ़ा के गोंड राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। इसी शिलालेख में रानी की विजय के बारे में भी एक श्लोक है।
1: वाह!
0: ये श्लोक संस्कृत में है और श्लोक इस प्रकार है कि अक्षय हीणनीय अमृत भूत लेन यातम रणे तेन महाभटेन बल विजित्या अपि समस्तम अस्य दुर्गावती भीम पराक्रमेण। यानी कि जिस महाभट्ट ने युद्ध में अक्षिणी सेना को अमृत की तरह भूमि पर प्रवाहित कर दिया और बल को जीतने के बाद भी उसकी दुर्गावती भीम पराक्रम से संपूर्ण शक्ति को नष्ट कर दिया, ऐसी दुर्गावती को प्रणाम।
1: वाह! तो मतलब और भी साक्ष्य मिलते हैं आईना अकबरी के अलावा भी। मध्य प्रदेश में ही मंडला में साक्ष्य अभी भी मौजूद हैं, जाकर देख सकते हैं कि उस लड़ाई के बारे में ये स्पष्ट वहां पर अभिलेखित है, वहां पर उल्लेखित है कि रानी दुर्गावती ने मुगल सेना को पराजित किया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी। डॉक्टर पूजा सक्सेना पुरातत्वविद हमारे साथ लगातार पिछले कुछ एपिसोड से बनी हुई हैं हमारे कार्यक्रम में, और हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं गोंड राजवंश के बारे में, रानी दुर्गावती के बारे में। आगे भी ये कहानी जारी रहेगी, आगे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कुल इस युद्ध का 2 दिन का उल्लेख मिलता है। यदि तारीख की बात करें तो आज से 459 साल पहले की बात थी, 23 और 24 जून 1564 को ये युद्ध लड़ा गया। जैसे कि डॉक्टर सक्सेना ने हमें बताया कि पहले ही दिन रानी दुर्गावती ने मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और मुगल सेना वहां से भागने को मजबूर हो गई। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, ये पूजा जी से जानेंगे हम अपने अगले अंक में। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, सुनते रहिए देश के चैनल देश के लिए, रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: वामपंथ पवित्र प्रतीकों से लेकर साम्राज्य की मुद्रा तक। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिकी पूर्वोत्तर के दलदली इलाकों और तटों पर एक अजीब गरीब बदलाव हो रहा था। यूरोपीय सिक्कों के आगमन से बहुत पहले इस क्षेत्र के मूल निवासी, जैसे मुंशी समूह क्वाहोग क्लैम के खोल से मोती बनाते थे। इन मोतियों को वामपम कहा जाता था। ये केवल सजावट की चीजें नहीं थीं, ये संधियों को दर्ज करने, कहानियां सुनाने और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली पवित्र वस्तुएं थीं। सबसे कीमती गहरे बैंगनी रंग के मोती होते थे, जिन्हें शंख के गहरे हिस्सों से तराशा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि इन बैंगनी मोतियों का उत्पादन इंटरैक्टिव डोमेन्स यानी पारस्परिक प्रभुत्व का परिणाम था। पत्थर जैसे सख्त क्वाहोग खोल को नाजुक बेलनाकार मोतियों में तराशने के लिए स्वदेशी कारीगरों को यूरोप से आपूर्ति किए गए धातु के ड्रिल की आवश्यकता थी, जो 1630 के दशक तक हडसन घाटी में आम नहीं हुए थे। इस तकनीकी संलयन ने लॉन्ग आइलैंड के तटीय क्षेत्रों को एक वास्तविक टकसाल में बदल दिया। 1640 के दशक तक डच और अंग्रेजी बसने वालों के लिए एक अजीब आर्थिक वास्तविकता बन गई थी। उपनिवेशों में सोने चांदी की कमी थी और फिर फर, जो कि पशुओं की खाल होती थी, का व्यापार धन का प्राथमिक इंजन था। बसने वालों और स्वदेशी समूहों के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए वामपम पसंद की मुद्रा बन गया। ये वो पैसा था जिसने सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापार को गति दी, जिसका उपयोग वीवर की खाल से लेकर मक्के और यहाँ तक कि जमीन के विशाल टुकड़ों को खरीदने के लिए किया जाता था। हालांकि डच वेस्ट इंडिया कंपनी और स्वदेशी उत्पादक इस पैसे को दो पूरी तरह से अलग नजरियों से देखते थे, उनके लिए वामपंप सामाजिक पारस्परिकता का हिस्सा था, एक उपहार जिसके बदले में दुनिया को संतुलन में रखने के लिए दूसरा उपहार दिया जाना चाहिए। उनके लिए ये वस्तु थी जिसे कर यानी टैक्स के दायरे में लाया और नियंत्रित किया जाना था। सितंबर 1639 में डच डायरेक्टर विलेम कीफ्ट ने नीति में एक कट्टरपंथी बदलाव का प्रयास किया। उन्होंने स्थानीय मुंशी समूहों पर सुरक्षा शुल्क लगा दिया और डच किलों की लागत वहन करने के लिए वामपम और वीवर की खाल के रूप में ट्रिब्यूट की मांग की। मुंशी इस बात से आक्रोशित थे। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने डचों का स्वागत किया था, उनके संकट के समय उनकी देखभाल की थी और उन्हें अपनी जमीन पर मुफ्त में बसने की अनुमति दी थी। वामपम, जो संतुलन का प्रतीक था, उसे अनचाही सुरक्षा के लिए टैक्स के रूप में मांगना सामाजिक पारस्परिकता की विफलता थी। वामपम के आध्यात्मिक और राजनीतिक मूल्य की यही मौलिक गलतफहमी 1640 में प्रथम डच मुंशी युद्ध का प्राथमिक कारण बनी। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ा, लॉन्ग आइलैंड के वामपम उत्पादक एक दुखद बंधन में फंस गए। यूरोपीय बाजार अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से एकीकृत होने के कारण उन्हें केवल अपनी जमीन और मोती बनाने के लिए आवश्यक धातु के औजारों तक पहुंच बनाए रखने के लिए डचों को शांति और सैन्य सहायता का वचन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 17वीं शताब्दी के मध्य तक जंगल के वे आध्यात्मिक मोतीशाही अधीनता के हथियार बन चुके थे, जो उन लोगों की बेदखली का रास्ता तय कर रहे थे जिन्होंने उन्हें बनाया था। वामपम उस समय के एक डरावने अवशेष के रूप में आज भी मौजूद हैं। जब पवित्र प्रतीकों को साम्राज्य की ठंडी मुद्रा के रूप में पुनर्गठित किया गया था।
2: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना?
3: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: गेल्मर वोसबर्ग एक डच सर्जन और मुगल दरबार की कूटनीति। 17वीं शताब्दी के बंगाल के आद्र नदी क्षेत्रों में शक्ति हमेशा औपचारिक संधियों या भव्य दूतावासों के माध्यम से नहीं दिखाई जाती थी। अक्सर यह एक शासक और उसके डॉक्टर के बीच पाई जाती थी। इस अनूठी गतिशीलता के केंद्र में गेल्मर वोसबर्ग थे, जो एक डच सर्जन थे। वे डच ईस्ट इंडिया कंपनी VOC और मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक मीर जुमला के बीच एक कूटनीतिक सेतु बन गए थे। 1660 तक मुगल उत्तराधिकार के युद्ध ने साम्राज्य के पूर्वी सीमांत को उच्च तनाव की स्थिति में छोड़ दिया था। सम्राट औरंगजेब के मामा और एक प्रतिभाशाली उद्यमी सेनापति मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मीर जुमला का राजनीतिक और व्यापारिक प्रभाव इतना अधिक था कि वे अक्सर यूरोपीय कंपनियों पर अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए धन, हथियार और तकनीकी विशेषज्ञता के लिए दबाव डालते थे। कपड़ा और शोरा के आकर्षण व्यापार को बनाए रखने के लिए बेताब VOC को लगा कि वे केवल तटस्थ नहीं रह सकते, जीवित रहने के लिए उन्हें मीर जुमला की सेवा में खुद को शामिल करना ही पड़ा। इस जबरन सहयोग के हिस्से के रूप में मीर जुमला ने VOC से विशेषज्ञ कर्मियों को लीज पर लेना शुरू किया, जिनमें जहाज निर्माता, नाविक और सर्जन गेल्मर वोसबर्ग शामिल थे। जहाँ उनका प्राथमिक कार्य नवाब और उनके आंतरिक घेरे के स्वास्थ्य की देखभाल करना था, वहीं बटाविया के डच निदेशकों और ढाका के फैक्ट्री प्रमुखों ने डॉक्टर के लिए कहीं अधिक रणनीतिक उपयोग देखा। मीर जुमला के साथ निकटता के कारण कंपनी वोसबर्ग को दैनिक कूटनीतिक व्यवहार करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति मानती थी। प्रांतीय कूटनीति की दुनिया में जहाँ विशिष्ट स्थानीय बातचीत अक्सर दिल्ली के शाही फरमानों से अधिक महत्वपूर्ण होती थी, वोसबर्ग एक मुख्य कड़ी थे। जहाँ ढाका के डच प्रतिनिधि को सप्ताह में एक बार नवाब से मिलने की उम्मीद थी, वहीं वोसबर्ग नवाब के घेरे के भीतर ही रहते थे। वे कंपनी की आंख और कान थे, जो मीर जुमला के मूड को भांपने और चिकित्सा देखभाल के अनौपचारिक क्षणों के दौरान चुपचाप डच हितों की वकालत करने में सक्षम थे। ये व्यवस्था एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा थी, जहां VOC ने अपनी विशेषज्ञता, नौसैनिक शक्ति से लेकर चिकित्सा ज्ञान तक को महत्वपूर्ण बार्गेनिंग चिप्स के रूप में इस्तेमाल किया। वोसबर्ग की सेवा ने कंपनी को उस कठिन दौर में रास्ता खोजने में मदद की, जब मीर जुमला आक्रामक रूप से हिजली द्वीप जैसे क्षेत्रों पर अधिकार कर रहे थे। एक ऐसा सर्जन प्रदान करके जिस पर नवाब भरोसा कर सके, VOC ने ये सुनिश्चित किया कि सैन्य समर्थन के लिए दबाव के बावजूद उनका व्यापार चलता रहे। गेल्मर वोसबर्ग की कहानी उस युग के ऐसे प्रभेदि को दर्शाती है, जहां यूरोपीय कंपनियों को मौजूदा एशियाई शक्ति संरचनाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये याद दिलाता है कि वैश्विक व्यापार का इतिहास अक्सर व्यक्तिगत विश्वास और सामाजिक निकटता पर बनाया गया था। 17वीं शताब्दी के बंगाल में एक सर्जन की कैंची और गवर्नर के तंबू में फुसफुसाए गए कुछ शब्द कभी कभी वैश्विक साम्राज्य के हितों को सुरक्षित करने में युद्ध पोतों के बेड़े जितने ही शक्तिशाली होते थे।
5: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज फिर एक बार हाजिर हुए हम आपके बीच हमारा कार्यक्रम टेक गुरु लेकर, और टेक गुरु में आज बात करेंगे AI पर। हमेशा की तरह हम कोई ना कोई नया सब्जेक्ट, नया विषय आपके बीच में लेकर आते हैं, और आज हमारा प्रयास है आप तक ये पहुंचाने का कि AI क्या है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन ये है क्या, किसके लिए फायदेमंद है, क्या नुकसान है, सुन तो सबने रख रखा है। अब इतना वृहद विषय है ये, इस पर प्रयास करेंगे कितना हम आप तक पहुंचा पाएं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर अनुग्रह नगाइच। आप मैनिट यानी MANIT मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। अनुग्रह जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
6: बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे स्टूडियो में आके आपके साथ इस विषय पे अपने विचार प्रकट करने देने का मौका देने के लिए।
5: अनुग्रह जी, AI एक ऐसा विषय है जिस पर हम आपसे चाहेंगे रोशनी डालें, लेकिन उससे पहले चाहेंगे कुछ आपके बारे में।
6: जैसे आज से लगभग 20-30 साल पहले कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी अपने देश में, आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुणगान गा रही है। मेरे ख्याल से कोई भी एक ऐसा क्षेत्र या विषय अछूता नहीं है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावों की चर्चा ना हो रही हो। साथ ही साथ वृहद स्तर पर राष्ट्रों के बीच, देशों के बीच भी AI वॉर ऐसी संबंधी चर्चा आ रही है। तो AI के बारे में मेरा जो रुझान था, मैं मूल रूप से वास्तुकला एवं नगर नियोजन, ये मेरा ग्रेजुएशन का विषय रहा है। और मैंने 9 से 13 के बीच जब ग्रेजुएशन कर रहा था तब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में प्रथम दृष्टया मेरे को पता चला अपने संस्थान के कंप्यूटर साइंस के लोगों के द्वारा। तो उस समय मेरा परसेप्शन ये बना कि मशीनों के शायद संवाद, जो ऑटोनोमस मशीन्स बनाते हैं, रोबोट बनाते हैं जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है हॉलीवुड की, कि मशीनों के बीच के संवाद को शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग बोलते होंगे, इससे हमारा कोई उतना सरोकार नहीं रहने वाला है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस के उन्हीं का विषय होगा। लेकिन धीरे धीरे इसकी पड़ताल करने पे मुझे जानकारी हुई कि ये एक ऐसा विषय है जिसकी उपयोगिता मेरे आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग में भी है। तब मैंने धीरे धीरे इस पर शोध करना चालू किया। तो मैंने जैसे बताया ग्रेजुएशन आर्किटेक्चर अर्बन प्लानिंग से करके मैं IIT बॉम्बे गया, वहाँ पे मैंने जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्स इंजीनियरिंग, भू संचार प्रौद्योगिकी, इस पे अपना परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वहाँ पे मेरा जो काम था वो यही था कि किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका मशीन लर्निंग नाम का एक सब डोमेन है, उसकी मदद से हम लोग जो अपने सेटेलाइट इमेजरी रहती है उसकी विवेचना करने का, उसके विश्लेषण करने में योगदान ले सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो यही वो समय था जब मैंने अपनी आंखों से AI का अपने विषय में इस्तेमाल देखा, और उस इस्तेमाल को चूंकि मैं बाहरी था, कंप्यूटर साइंस से बाहर से आ रहा था, और मैंने देखा कि जब मेरे विषय में AI इतना ज्यादा प्रभावित कर रहा है। छोटा सा उदाहरण दूंगा, जैसे जब मैं यहाँ मैनेट में पढ़ता था तो किसी शहर की शहरी विकास योजना बनती है, शहर का एक नक्शा बनता है, तो 5-6 लोग 2-3 दिन बैठ के एक एक बिल्डिंग को फुटप्रिंट बनाते जाते, मतलब शहर की सेटेलाइट इमेजरी इसरो से आएगी, एक एक सड़क को डिजिटाइज करेंगे, एक एक बिल्डिंग फुटप्रिंट को डिजिटाइज करेंगे, एक एक फीचर, नदी, नाले, पेड़, 5-6 लोगों की टीम 1-2 दिन लेती थी किसी भी बड़े शहर के लिए। AI की मदद से ये जो मैनुअल काम था डिजिटाइजेशन का, वो इसरो स्वयं ही करके देता था, मतलब वो अपने आप इमेज में, इसको कंप्यूटर विजन तकनीक बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के अंदर, अपने आप ही फीचर डेलिनेट हो गया। आप सोचिए 4-5 लोगों के 2-3 दिन की मेहनत एक क्षण में सॉल्व हो गई। उसके बाद से मेरे को ये चीज समझ में आई कि भाई इस तरीके से ये सिर्फ दो मशीनों के बीच में संवाद का जरिया नहीं है, ये हम लोग जो कंप्यूटिंग डिवाइस को जैसा प्रयोग में लेते आए हैं आज तक, उसको पूरी तरह से बदलने वाला है। और फिर मेरे को समझ में आया कि ये मेरे विषय में नहीं, लगभग हर विषय में जितने भी मैनुअल काम है उन सबको हटा के एक नए तरीके से काम करने की दृष्टि देगा। तो मेरे बैकग्राउंड से मैंने AI के साथ सामंजस्य बनाते हुए फिर इसी विषय को आगे ले जाने का सोचा, और फिर मेरी PhD जो संपन्न हुई वो पूरा मशीन लर्निंग बेस्ड वेटलैंड मॉनिटरिंग पे थी। और अभी मैं इसी विषय के बारे में और कैसे अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करता है उस पर भी लोगों में जागरूकता फैलाने का या उनको इसके प्रति सेंसिटाइज करने का प्रयास करता हूँ।
5: तो AI क्या कोई सॉफ्टवेयर है जो लोग इसका इस्तेमाल कर लें और फिर अपने काम में ले लें?
6: सर ये आपका बिल्कुल बहुत सही पकड़ा है आपने। कंप्यूटर रेवोल्यूशन में हम लोग के सामने, नजरों के सामने एक कंप्यूटिंग डिवाइस था, डेस्कटॉप कंप्यूटर था। आप देखे होंगे जब आप छोटे थे तो कंप्यूटर्स का जो यूज था वो बहुत लिमिटेड था, ऑफिसों में, पावर प्लांट्स में रहता था। आज इस स्टूडियो से लेके रेलवे स्टेशन के काउंटर तक या अस्पताल के फ्रंट डेस्क तक या किसी होटल के रिसेप्शन में लॉबी तक आप कंप्यूटर को हर जगह पाएंगे। कंप्यूटर एक प्रोडक्ट के कारण होने के कारण हम इमेजिन कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि हाँ कंप्यूटर के कितने उपयोग हो सकते हैं। AI वस्तुतः सॉफ्टवेयर ही है। सॉफ्टवेयर कहने का तात्पर्य यह है कि वो टेंजेबल प्रोडक्ट नहीं है जैसे कंप्यूटर था, जैसे TV था वो एक प्रोडक्ट था, लेकिन जैसे इंटरनेट है दो कंप्यूटर्स के बीच में, चलिए इंटरनेट भी मैं कहता हूँ कि कुछ हार्डवेयर रहता है, वायर्स या वायरलेस, लेकिन AI जो रहेगा वो कंप्यूटर के बैक एंड पे कंप्यूटर के प्रयोग को 10 गुना या 100 गुना या 1000 गुना और प्रभावी बनाएगा। उदाहरण मैंने आपको बताया कि 4-5 लोग जो मिलके एक शहर के खांचे को डिजिटाइज करते थे वो AI कुछ क्षणों में, कुछ सेकेंडों में कर लेता है। या आपके पास मान लीजिए सेंसस डेटा है एक शहर का, लगभग 20 लाख लोगों के अलग अलग उनके सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया, उसकी आप जानकारी है, उससे अगर आपको एनालाइज करना है किसी विशेष पहलू पे तो आपको पहले उसमें कुछ प्रक्रियाएं लगती थी, कुछ समय लगता था, कुछ ऊर्जा लगती थी, अब वो आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो मूल रूप से ये बैकएंड में काम करने वाला एक टेंजेबल माध्यम मीडियम फॉर्म में ना होने के कारण इसको सॉफ्टवेयर तो सही नहीं होगा, लेकिन एक नॉन टेंजेबल रेवोल्यूशन है जो कंप्यूटर्स के बैक एंड पे हो रहा है, जो हमारे कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता है। ChatGPT आपने बोला, अब ChatGPT आने से पहले लेखकों के, कॉपी राइटर्स की बहुत अच्छी दुकान चलती थी, लेकिन एक ऐसा एप्लीकेशन जो हर मोबाइल में जाके आपको रेडीमेड स्क्रिप्ट दे दे, आपको कॉपीराइट दे दे, तो ये बैक एंड में ही संचालित हो रहा है, वही AI है।
5: एक बात जो अभी भी आपने कही कि 5 या 6 लोगों का फुटप्रिंट लगता था, 5-6 लोग उस पर 2-3 दिन 6 दिन काम करते थे, तो अब वो 5-6 लोग नहीं लग रहा है, एक बात। दूसरी चीज, उतना समय भी नहीं लग रहा।
6: बिल्कुल।
5: तो क्या माने AI आने से लोगों के काम छिन गए?
6: देखिए कोई भी नई तकनीक जब आती है तो अपने साथ कुछ तो कार्य क्षेत्र में चेंज लाती है। कंप्यूटर्स के आने के पहले मुझे याद है जब मैं छोटा था तो टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूट रहते थे, शॉर्ट हैंड टाइपिंग होती थी, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग के कोर्सेज होते थे और इसमें कई लोग जाते थे। कंप्यूटर्स आने के बाद और कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन के बाद जब कंप्यूटर्स का फॉर्म फैक्टर, जब स्मार्टफोन आ गए या अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते गए, इंटरनेट पे बहुत सारी सुविधाएं मिलती गई, तो अब ये टाइपराइटर भी ऑब्सोलीट हो गया। DTP का जो एक व्यवसाय चलता था अपने भोपाल के जवाहर चौक में, आपको याद होगा कितने सारे DTP की जगह थी, या साइबर कैफे चलते थे। तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी अपने साथ डिसरप्शन लाती है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सच है कि जो मैनुअल रिपीटेटिव काम है, जैसे नक्शे में फीचर्स को आइडेंटिफाई करना या रिसर्च करना, लाइब्रेरी में जाके अपने काम की चीज ढूंढ के लाना, तो जो मैनुअल रिपीटेटिव टास्क है वो काफी हद तक ऑटोमेट होने से मैन पावर काफी फ्री हो जाएगी। लेकिन सिर्फ इसका एक पहलू को देख के ये बोलना कि इतने सारे लोग अगर नहीं कर पाएंगे तो वो करेंगे क्या, ये थोड़ा बेमानी होगा। क्योंकि एक तरफ तो लोग फ्री हो रहे हैं रिपीटेटिव टास्क के, तो ChatGPT उनको ये सुविधा भी देता है कि वो चाहें तो कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर बनने में सबसे बड़ी बाधा आती है टेक्नोलॉजी के, कैमरे की, आज सबके पास स्मार्टफोन है, विषय की और विषय के प्रस्तुतिकरण की। आज ChatGPT में आप अपने एक स्क्रिप्ट डालिए या उससे बोल दीजिए कि भाई इस विषय के बारे में कोई जानकारी दे। हाँ, ये जरूर है कि वो जानकारी सही है कि नहीं है वो हमको देखना है, लेकिन अगर जानकारी आ गई तो उसे किस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म वीडियो में 30 सेकंड 60 सेकंड में क्लब डाउन करना, ये हर कोई कर सकता है अपने मोबाइल से। तो लोगों के पास जीविकोपार्जन के, स्किल डेवलपमेंट के नए आयाम भी खुलेंगे। तो स्किल रिफॉर्म करना, स्किल डेवलपमेंट करने की तो आवश्यकता रहेगी, लेकिन इस विषय में बहुत ज्यादा सोचना कि बेरोजगारी बढ़ाएगा, मेरे ख्याल से जॉब का नेचर बदल जाएगा और बदलते समय में लोगों को भी उस स्किल को रिडेवलप करना पड़ेगा। ये AI एक आयाम लाने वाला है। मैं यहाँ पे जो प्रशासनिक अकेडमी है वहां पे भी इसी विषय पे ट्रेनिंग लेने जाता हूँ, तो वहां पे मैं कहता हूँ कि बदले समय में AI के युग में सफलता पाने के लिए, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो, प्रोफेशनल में हो, सबसे जरूरी रहेगा 3 चीजों करना, लर्न, अनलर्न और रीलर्न, यानी सीखना, फिर उसे भुलाना और पुनः सीखना। क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से परिवर्तन लाएगी उसमें मुझे भी एज अ शिक्षक, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक डिटेल उदाहरण दूंगा, IIT और के मेरे कुछ साथी शिक्षक है और हम लोग किस विषय में विवेचना करते हैं कि AI हमको रिप्लेस ना कर दे, हमें भी अपने फील्ड में रिलेवेंट बनने के लिए स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अनलर्न करना पड़ेगा और रीलर्न करना पड़ेगा।
5: मैन पावर की भी आपने बात कही थी, तो इसे मैन पावर फ्री करना बेरोजगारी ही बढ़ाना तो है या नहीं है?
6: देखिए, जो 5 दिन हम लोग नक्शा बनाने में लगाते थे वो 5 दिन बचा के हम उसको नक्शों की अच्छे से विवेचना करने में लगा सकते हैं, एडवांस स्टडी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं किसी शहर के सड़कों को डिजिटाइज करने में 2 दिन लगाता था, अब मेरे को सड़कें बन रही हैं। और इनफैक्ट मेरे को ऐसा सौभाग्य मिला था अमृत के मास्टर प्लान प्रोजेक्ट में, मणिपुर के इम्फाल शहर के मास्टर प्लान प्रिपरेशन में, वहां पे हमें जो इसरो से शीट्स आई, सर्वे ऑफ इंडिया ने भेजी, वो ऑलरेडी डिजिटाइज थी। हमको वो नक्शा ले जाके ग्राउंड ट्रूथिंग करनी थी, मतलब वो नक्शे ले जाके साइट में चेक करना था कि कौन से फीचर सही है कौन से गलत है। तो जो प्रक्रिया 6 महीने लेती थी वो अब मेरे ख्याल से 25 या 30 दिन में पूरी हो गई। हम लोग नक्शे लेके जाते थे, पेंसिल से मार्क करते थे और वही भेज के इसरो में अपडेट कर लेते थे। इस बचे हुए समय को हमने उस नगर का, इम्फाल की, अच्छे नगरी नियोजन, शहरी नियोजन कैसे किया जाए, कैसे हरियाली के बारे में क्वांटिफाइड स्टडी की जाए, उसमें लगाया। तो जहां समय बचता है वहां पे उसे दूसरे तरीके से उपयोग करने की सुविधा बढ़ जाती है। कई लोग जो AI विषय विशेषज्ञ है वो कहते हैं कि वर्क डेज लिमिटेड हो जाएंगे, मतलब जो 6 दिन या 7 दिन या 5 दिन काम होता है आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो ये वर्क आवर्स कम हो जाएंगे, तो इस चीज को हम चैनलाइज कर सकते हैं दूसरे उसमें। हाँ, ऐसे लोग जो मैं कह सकता हूँ शैक्षणिक स्तर पे नीचे है, जो इतने स्किल डेवलपमेंट नहीं है, उनके लिए भी चीजों या तकनीक के प्रति उनकी पहुंच जो है वो और सुविधा युक्त हो जाएगी, तो अगर वो चाहे तो इसकी मदद से नए स्किल्स को सीख के अपने आप को मार्केट रिलेवेंट बना सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हर युग में हुआ है। ये टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन चूंकि AI इतनी तेजी से चेंज हो रही है तो बहुत आसानी से लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, लेकिन हाँ देखा जाए तो लोगों के पास ये संभावना रहेगी कि अपनी स्किल को अनलर्न करके कैसे वो रीलर्न करके मार्केट रिलेवेंट बन सकते हैं।
5: अनुग्रह जी, एक बात और कि अभी AI को आए हुए तकरीबन 2-2.5 साल हुए हैं अगर माने, तो अभी सबसे ज्यादा उपयोग इसका कहाँ हो रहा है?
6: देखिए, मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोध विषय है ये 1960 से चल रहा था। 2-4 साल पहले इसलिए हुआ है क्योंकि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी उस लेवल पे पहुंच गई थी कि हम AI के एडवांटेजेस को रियल लाइफ में देख पाए। जैसे मैंने बताया कि मैं 2014 से 16 के बीच में जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तब मैंने AI के कुछ परिणाम देखे थे। 2022 के एंड में जब ChatGPT लॉन्च हुआ वो पहला ऐसा स्टेज था कि एक सामान्य आदमी भी एक तरह से यूज कर सकता था AI को अपने दैनिक डेली डे टू डे टास्क के लिए। तो आज की डेट में मेरे ख्याल से पिछले 2-2.5 साल में ChatGPT हो गया है, Gemini हो गया है, Airtel के यूजर है तो Perplexity मिल जाता है फ्री में, इतने ज्यादा लार्ज ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग मॉडल्स हैं। तो ऑलमोस्ट हर विषय में ही इनकी उपयोगिता हो रही है। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगा, इससे आप समझ जाएंगे कि सबसे ज्यादा कहाँ यूज हो रहा है। इसकी बजाय अगर प्रश्न ये हो कि कहाँ यूज नहीं हो रहा है, वो है जैसे मैं अपने IIT कानपुर के कंप्यूटर साइंस के बहुत वरिष्ठ सीनियर प्रोफेसर है उनके साथ बैठा था, IIT हैदराबाद की कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर के साथ बैठा था और रुड़की के प्रोफेसर के साथ बैठा था और भी मेरे साथी लोग थे। हम लोग एक वर्कशॉप में गए थे, वहां पे चर्चा हो रही थी, तो वहां पे कंप्यूटर साइंस कानपुर वाले कंप्यूटर साइंस के सीनियर प्रोफेसर ने बोला कि भाई ये AI हम लोग को भी रिप्लेस कर देगा। तो मेरे को थोड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने बोला यार IIT के कंप्यूटर साइंस के जिन्होंने मशीन लर्निंग पे पिछले 20-30 सालों से शोध किया हो, वो प्रोफेसर ऐसा बोला। मैंने पूछा प्रकाश डाली तो बोला कि IIT में उनका एक स्टूडेंट है उनके विषय का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, असाइनमेंट प्रॉब्लम प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया करता है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाता है, मतलब ही इज वेरी शार्प, लेकिन वो क्लास अटेंड नहीं करता
5: जी।
6: तो जब उनसे पूछा गया, चूंकि उसमें मेंटरशिप होता है IIT में, डिप्रेशन में नहीं चले जाए, सुसाइड नहीं हो, तो संवाद अच्छा रहता है टीचर और स्टूडेंट का, तो उसको बुला के पूछा भाई आप पढ़ाई में अच्छे हो लेकिन क्लास नहीं आ रहे हो, कुछ सब कुछ कुशल मंगल है, क्या समस्या है? तो बच्चे ने बोला सर जो मैं कॉन्सेप्ट्स क्लास में पढ़ाए जाते हैं, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो मैं AI की मदद से इंटरैक्टिव तरीके से, एक घंटे का मान लीजिए क्लास है तो 15 मिनट में वो टॉपिक समझ जाता हूँ। और ऐसे टूल्स हैं, मैं भी अपने टीचिंग पेडागोजी में पढ़ाने के लिए कई ऐसे टूल्स यूज करता हूँ कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, कैसे इसको सरल भाषा में समझाया जा सके। तो बोले सर एक घंटे की क्लास का मटेरियल मैं 15 मिनट में कंज्यूम कर लेता हूँ और वो मेरे रिजल्ट में प्रोजेक्ट में दिख रहा है, बचे हुए 45 मिनट में मैं इंट्राडे ट्रेडिंग या ऐसा कोई नया स्किल सीखता हूँ जो मेरे जीविकोपार्जन में या प्लेसमेंट में मेरे काम आए। तो मेरे लिए क्लास आने का इंसेंटिव क्या है? अब ये प्रश्न देखिए, कॉलेज IITs में अगर एक उद्देश्य देखा जाए तो ठीक है, आप लोगों को पैकेज अच्छा मिले, इंस्टीट्यूट्स शुड गिव गुड प्लेसमेंट टू द स्टूडेंट्स, तो बच्चा कमाने लायक स्किल सीख रहा है, और जो कॉन्सेप्ट उसको क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं शिक्षकों के द्वारा, वो बोल रहा है कि वो 15 मिनट में सीख रहा है। तो प्रोफेसर ने यही कहा कि भाई AI तो हमको भी रिप्लेस कर देगा। अब इस बदलते दौर में हम ऐसा क्या करें कि हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल से बेहतर बच्चों को एंगेज करके रख पाए, ये चैलेंज है। ये मैंने आपको उदाहरण इसलिए बताया कि टीचिंग एक ऐसा विषय है जहाँ पे अपन कोशिश करते हैं कि 1-on-1 बात करके बच्चों के सर्वांगीण विकास में योगदान दिया जाए, वहाँ पे भी AI घुस चुका है। और ये एक फील्ड का है, जैसे मैंने आपको बताया सोशल मीडिया में आजकल कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर्स की भरमार आ गई है। आपके आजू बाजू कई लोग ऐसे होंगे जो जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था कि ये लेखनी में उतने उत्कृष्ट हो सकते हैं, वो सब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, कैमरे में ऑटोमेटेड फिल्टर्स हैं। आप किसी व्यक्ति को निजी रूप से जानते हैं लेकिन आप उसकी तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा यार इसने प्रोफेशनल फोटोशूट करवाया हो, उसके पास AI इनेबल्ड कैमरा या फिल्टर है। तो प्रश्न अगर ऐसा हो कि कौन से ऐसे विषय हैं जहाँ पे AI पेनिट्रेट नहीं करेगा,
5: वो DP में बड़ा भारी एक परिवर्तन दिख ही रहा है।
6: हाँ,
5: मतलब वो ऐसा कह सकते हैं क्योंकि अपन ने बात ही शुरू करी थी, विषय भी अपना AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब कुल मिला के आर्टिफिशियल उसमें सब कुछ है, बहुत कुछ है, वास्तविक कितना है ये एक अलग विषय है।
6: हाँ।
5: उस आर्टिफिशियल को कितना आप और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात आपने कही थी अभी अभी, 15 मिनट में कोई भी स्टूडेंट वो अपने विषय को उससे बेहतर समझ लेता है, तो ये अंतर कैसा है? क्या मतलब वाकई जैसे कोई 10वीं का 12वीं का स्टूडेंट या कहीं का पढ़ने वाला इंजीनियरिंग का मेडिकल स्टूडेंट, ऐसा क्या है कि वो उसको उसमें 15 मिनट में उस चीज को समझ लेता है बनस्पत टीचर के समझने से?
6: देखिए आप भी कभी कोशिश करके देखिएगा कोई ऐसा तकनीकी विषय जिसके बारे में आपको जानना है, जैसे AI मान लीजिए, आप ChatGPT खोल के उसमें लिखिएगा इमेजिन यू आर अ टीचर
5: जी,
6: एक्सप्लेन AI टू मी लाइक IIM क्लास 10th स्टूडेंट
5: जी,
6: क्लास 5th स्टूडेंट करके देखिएगा उसका आउटपुट अलग रहेगा। आई हैव अ स्टूडेंट परस्यूइंग लेट्स से BA इन पॉलिटिकल साइंस, तो आप पाएंगे कि वो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है कोई भी ChatGPT हो या एंथ्रोपिक, वो हर बार आपके उस स्तर के हिसाब से आपको आंसर दे रहा है। इन सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का सर जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो बहुत विशाल है, मतलब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की काम करने की प्रक्रिया ऐसी रहती है कि दे डोंट अंडरस्टैंड, वो ये नहीं समझते कि वो क्या बोल रहे हैं। वो ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि उनको बहुत बड़े ट्रेनिंग डेटा सेट पर ट्रेन किया गया है। इसको मैं अगर एक शब्दों में समझाना चाहूँ तो एक पूरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें होती हैं उन किताबों की 10 गुना किताबों से उनको ट्रेन किया गया है, मतलब उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने उन सारी किताबों को एक तरह से पढ़ा हुआ है और उस पूरे पढ़े हुए टेक्स्ट की मदद से वो अगला शब्द या अगला सेंटेंस प्रिडिक्ट करते हुए अपनी बात कहता है। तो उसका जो कॉर्पस ऑफ नॉलेज है वो बहुत ज्यादा विशाल है। मैं फिर दोहराऊंगा कि वो समझता नहीं है उन टेक्स्ट उन लाइनों का उन शब्दों का अर्थ नहीं समझता, लेकिन उसने चीजों के पैटर्न को समझा है, ग्रामर के पैटर्न को समझा है, सब्जेक्ट के पैटर्न को समझा है और उसी तर्ज पे वो अगले शब्द अगले वाक्य अगले पैराग्राफ रिक्रिएट कर रहा है। तो उसका कॉर्पस ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा है। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में जितनी किताबें नहीं पढ़ पाएगा, आज के लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑलरेडी उससे ज्यादा किताबें पढ़ चुके हैं, तो उस ब्रॉड कॉर्पस ऑफ नॉलेज से वो कैसे कंटेक्चुअलाइज करके अपने सवाल को जवाब दे पा रहा है, वो उसे बहुत इफेक्टिव बनाता है टीचिंग के लिए। दूसरा होता है, जैसे अपन टीचर स्टूडेंट रेशियो की बात करते हैं, आमतौर पे देखा जाए तो जितने कम स्टूडेंट होंगे पर टीचर, उतना बढ़िया टीचिंग पेडागोजी होगी। अब समस्या यही आती थी कि भाई ऐसा तो कोई परिस्थिति बनती नहीं है कि एक टीचर एक स्टूडेंट के ऊपर हो, एटलीस्ट 10 या 15 का तो बैच हो गई, और जितने ज्यादा बच्चे होंगे टीचर के लिए एक बच्चे पे ध्यान देना उतना मुश्किल होगा। यहां पे आपके पास एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो हर बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से, उसके रुचि के विषयों के हिसाब से, उसके बैकग्राउंड के हिसाब से इंडिविजुअली उसको कंटेंट प्रोड्यूस कर सकता है
5: जी।
6: तो ये AI का एडवांटेज है। दैट बीइंग सेड, इतना सब करने के अलावा AI के बहुत भयंकर दुष्परिणाम भी है। यहां पे एक दुष्परिणाम जो मैं बताना चाहूंगा ताकि बैलेंस हो जाए कहानी, वो ये है कि चूंकि AI समझता नहीं है शब्दों को, वाक्यों को, वो स्टैटिस्टिकल पैटर्न पे अगला वर्ड, अगला लाइन, अगला पैराग्राफ प्रेडिक्ट कर रहा है, तो AI कई बार हेलुसिनेट भी कर लेता है या गलत जानकारी भी दे सकता है। तो ये चीज भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो AI बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि कहते हैं कि ट्रेनिंग डेटा सेट में जो है वो अगर सही है तो AI सही प्रेडिक्ट करेगा, अगर उसमें ट्रेनिंग डेटा सेट में बायस है, जैसे आज से 2-3 साल पहले बड़ा अच्छा एक केस हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं पे बताया कि ChatGPT से अगर आप बोले इमेज जनरेट करने को कि एक व्यक्ति उल्टे हाथ से लिख रहा है, लेफ्ट हैंड से, तो क्रिएट नहीं कर सकता। लोगों ने बड़ा इसको हल्के पे लिया कि यार बताइए प्रधानमंत्री जी कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो सही था, ChatGPT से अगर आप प्रॉम्प्ट में लिखेंगे कि भैया एक ऐसे फोटो जनरेट करो जिसमें व्यक्ति उल्टे हाथ से लिख रहा, वो लेफ्ट हैंड से लिखने वाले व्यक्ति की फोटो बना ही नहीं सकता था। ये मैंने क्लास में बच्चों को करके दिखाया था, शायद अब वो बता सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस जिन इमेजेस पे वो ट्रेन हुआ होगा या जिन कॉन्टेक्स्ट में वो ट्रेन हुआ होगा उसमें उसके पास कोई लेफ्ट हैंड से ड्रॉ करते हुए व्यक्ति की इमेज उसने देखी या समझी नहीं होगी, तो उसके ट्रेनिंग डेटा सेट में चूंकि सब राइट हैंड से लिख रहे थे इसलिए वो भी राइट हैंड से क्रिएट कर रहा था। तो एक तो ट्रेनिंग डेटा सेट की उपलब्धता, उसके बायसनेस, और दूसरा वो जो आउटपुट जनरेट कर रहा है वो सही है कि नहीं, ये देखना आवश्यक है, अन्यथा जो एडवांटेज अपन डिस्कस कर रहे हैं वो पूरी तरह उल्टा जा सकते हैं।
5: डॉक्टर अनुग्रह नगाइच हमारे साथ मौजूद थे आज स्टूडियो में, उन्होंने इतना तफसील से इस विषय को बताया हमें। कार्यक्रम टेक गुरु में आज AI पर जो हमने बातचीत की उसमें इस भाग में हमने जाना कि आखिर AI है क्या, AI कहां कहां अपना असर डालने वाला है, और ऐसे कई सारे प्रश्न। डॉक्टर अनुग्रह नगाइच का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए।
6: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
5: ये चर्चा जारी रहेगी आगे भी। तो ये था कार्यक्रम टेक गुरु जिसमें आज हमने बात की AI पर। ये पूरा कार्यक्रम आपके बीच में जो पहुंचाया इसके मार्गदर्शक थे संतोष कुमार वर्मा जी, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग रहा हमारे साथ सतीश पाथम का, और मैं हूं आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति और सुनते रहिए आपका अपना 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: बेरेनिका, वह रेगिस्तानी एम्पोरियम जहां रोमन सिक्कों का मिलन भारतीय रेशम से हुआ, मिस्र के तपते पूर्वी रेगिस्तान में जहां लाल रेत और लाल सागर का गहरा नीला पानी मिलते हैं। कभी एक ऐसा शहर बसा था जिसने अपने उजाड़ परिवेश को चुनौती दी थी। यह था बेरेनिका, एक ऐसी जगह जहां रोम का वैभव पूर्व के रहस्यों से मिलता था। 275 ईसा पूर्व में टॉलेमी द्वितीय द्वारा स्थापित और उनकी मां के नाम पर रखा गया यह शहर विलासिता के केंद्र के रूप में नहीं बल्कि एक सैन्य चौकी के रूप में शुरू हुआ था, जिसे अफ्रीकी युद्ध हाथियों को मिस्र लाने के लिए बनाया गया था। 30 ईसा पूर्व में मिस्र पर रोमन विजय के बाद यह दूरस्थ बंदरगाह प्राचीन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और सक्रिय एम्पोरियम में से एक में बदल गया। इस शहर के अविश्वसनीय उत्थान की कुंजी यूनानी हिप्पुल्स जैसे नाविकों द्वारा मानसून की हवाओं की खोज में छिपी थी, जिसने जहाजों को तट के किनारे रेंगने के बजाय सीधे खुले अरब सागर के पार जाने की अनुमति दी। पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान बंदरगाह के दृश्य की कल्पना कीजिए। घाट उन विशाल जहाजों के आगमन से हलचल में रहे होंगे जो भारत के मसालों से समृद्ध बंदरगाहों से दक्षिण पश्चिमी मानसून की सवारी करके अभी अभी पहुंचे थे। रोमन व्यापारी जिनकी जेबें सोने और चांदी के सिक्कों से भरी थीं, लोबान और लोहबान की महक से भरी हवाओं के बीच घूमते थे। यहां रोमन अभिजात वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित विलासिता, चीन से आने वाला चमकता रेशम उस शाही मुद्रा के बदले खरीदा जाता था जिसने साम्राज्य की वैश्विक पहुंच को ईंधन दिया था। बेरेनिका के अब छोड़े जा चुके स्थल पर मिले खजानों की विविधता अभूतपूर्व जुड़ाव की कहानी बयान करती है। पुरातत्वविदों ने भारत से बड़ी मात्रा में आई सागौन की लकड़ी बरामद की है, जिसे संभवतः समुद्र पार करने वाले जहाजों से दोबारा उपयोग के लिए निकाला गया था। इसके साथ ही सुदूर पूर्वी जावा के कांच के मनके भी मिले हैं। उन्हें ऐसे एम्फोरा यानी मिट्टी के पात्र मिले जिनमें कभी भूमध्य सागरीय शराब और जैतून का तेल लाया गया था, जो विदेशी व्यापारियों और बस्तियों की मेजों के लिए नियत थे। शायद सबसे जीवंत खोज 16 पाउंड भारतीय काली मिर्च से भरा एक जार था, एक ऐसा पुरातात्विक खजाना जो प्राचीन मसाला व्यापार के पैमाने को रेखांकित करता है। लेकिन बेरेनिका केवल माल ढोने की जगह से कहीं अधिक थी। यह एक जीवंत बहुजातीय संस्कृतियों का संगम था। इसकी रेगिस्तानी सड़कों पर चलते हुए कोई भी विभिन्न भाषाओं का एक संगीत सुन सकता था। स्थानीय पत्थरों पर खुदे हुए भित्ति लेख आम आदमी के साहित्य को दर्शाते हैं, जिसमें दक्षिण अरबियों, सीरियाई रेगिस्तान के पलमायरेन, इथियोपिया के ऊंचे इलाकों के एक्सुमाइटस और भारत के दक्षिणी छोर के तमिल भाषी लोगों की उपस्थिति का पता चलता है। इस विविधता के बीच देवी एफ्रोडाइट की मूर्तियां एक परिचित ग्रीको रोमन सुकून के रूप में खड़ी थीं, एक ऐसे शहर में जहां दुनिया की संस्कृतियों का मिलन होता था। इस रेगिस्तानी एम्पोरियम ने साबित कर दिया कि प्राचीन दुनिया इतिहास की किताबों के सुझावों की तुलना में कहीं अधिक वैश्विक थी। बेरेनिका वह अनिवार्य प्रवेश द्वार था जहां लाल सागर एक विशाल बहुकेंद्रित ऐतिहासिक इकाई में खुलता था जो पूर्व में हजारों मील तक फैली हुई थी। यह उस समय का प्रमाण है जब मिस्र की रेत का एक सुदूर टुकड़ा एक परस्पर जुड़ी दुनिया की धड़कन के रूप में कार्य करता था, जो मौसमी हवाओं और विनिमय की साझा मानवीय इच्छा से एकजुट था।
2: वीर जी वोरा वो व्यापारी राजकुमार जिसने यूरोपीय कंपनियों को अपने इशारों पर नचाया। 17वीं शताब्दी के व्यस्त सूरत बंदरगाह में अंग्रेजी और डच ईस्ट इंडिया कंपनियां समुद्री प्रभुत्व के सपने लेकर आईं, लेकिन उनका सामना एक ऐसे स्थानीय व्यापारी से हुआ जो वैश्विक बाजार को अपनी इच्छा शक्ति से मोड़ने की ताकत रखता था। उसका नाम था वीरजी वोरा, एक बनिया व्यापारी जिसका प्रभाव इतना व्यापक था कि तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में उसे सभी यूरोपीय वस्तुओं का एकमात्र एकाधिकार बताया गया है। हालांकि वोरा के पास कभी भी कंपनी ब्रोकर का औपचारिक पद नहीं था, फिर भी वो दोनों यूरोपीय शक्तियों के लिए अपरिहार्य बैंकर और मुख्य खरीदार था। सूरत में उसका मोनोपसोनी यानी एकमात्र खरीदार का अधिकार था, जिससे वो छोटे व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा करने से रोकता था और ये सुनिश्चित करता था कि हर बड़े सौदे का समय और कीमत उसके अपने निर्णय के अनुसार रहे। उसकी वित्तीय पहुंच चौंका देने वाली थी। 1622 में डच कंपनी वीओसी ने उससे 36,000 महमूदी उधार लिए थे। 1628 तक वो आगरा जैसे दूर दराज के क्षेत्रों के लिए भी ईआईसी को भारी ऋण पत्र यानी लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी कर रहा था। वोरा की शक्ति अपनी शर्तें मनवाने की उसकी क्षमता में सबसे अच्छी तरह दिखाई देती थी। 1625 में जब अंग्रेजों ने काली मिर्च खरीदने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि वोरा ने पूरी आपूर्ति पर कब्जा कर रखा है। उसने तब तक बेचने से इनकार कर दिया जब तक कि कंपनी ने उसे अपने सबसे अच्छे मूंगे के 25 बक्से उस कीमत पर नहीं सौंप दिए, जिससे अंग्रेजों का मुनाफा काफी कम हो गया। चूंकि कंपनियों के पास अक्सर कपड़ा खरीदने के लिए नगदी सोना चांदी की कमी होती थी, इसलिए वे टिके रहने के लिए वोरा की विशाल तरल पूंजी पर निर्भर थे। उसने इस कमजोरी का बेरहमी से फायदा उठाया। कभी कभी कंपनियों को लंदन या बटाविया की अपनी यात्राओं में देरी करने के लिए मजबूर किया, ताकि उनके जहाज सूरत के स्थानीय व्यापारियों के लिए माल ढोने का काम कर सकें। ईआईसी अधिकारी एडवर्ड नाइप ने 1643 में कंपनी की हताशा को दर्ज किया। उन्होंने शिकायत की कि वोरा कालीकट में कोड़ियों के दाम पर काली मिर्च खरीदता और अंग्रेजों को उसे दोगुनी कीमत पर बेचता। नाइप ने अपने मालिकों को चेतावनी दी थी कि जब तक कंपनी वोरा के कर्ज में इतनी डूबी रहेगी, सूरत में नामात्र या कोई लाभ नहीं कमाया जा सकेगा, क्योंकि वोरा हमें तब तक दबाता है जब तक हम उसके अपने रेट पर नहीं आ जाते। दशकों तक वोरा शहर का सबसे अमीर आदमी और व्यापारिक समुदाय का शिखर बना रहा। हालांकि साल 1664 में तब एक विनाशकारी बदलाव आया जब मराठों ने सूरत पर आक्रमण किया। बताया जाता है कि इस हमले में वोरा को लगभग 5,00,000 रुपए का नुकसान हुआ, एक ऐसा झटका जो छोटे व्यापारियों को नष्ट कर देता। फिर भी वो एक सक्रिय व्यक्ति बना रहा जो पारस्परिक निर्भरता के रिश्ते को दर्शाता है। जहां शक्तिशाली दिखने वाली यूरोपीय कंपनियां अक्सर भारतीय पूंजी की दया पर थीं, वीरजी वोरा की विरासत एक ऐसे मर्चेंट प्रिंस की है जिसने अंग्रेजों के भारत को जीतने से बहुत पहले उन पर महारत हासिल कर ली थी। उनकी कहानी याद दिलाती है कि कंपनियों का शुरुआती इतिहास तत्काल जीत का नहीं था, बल्कि स्थानीय दिग्गजों के साथ एक नाजुक रणनीतिक गठबंधन का था, जिनका अक्सर बाजार पर अपर हैंड रहता था।
3: न जी भर के देखा न

0: नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।
2: नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है हमारे आज के इस बेहद खास प्रसारण भारत विभूति में। एक ऐसी श्रृंखला जिसमें हम उन व्यक्तित्वों को याद करते हैं जिन्होंने अपने विचारों, कर्मों और साधना से भारत की आत्मा को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया।
1: जी हाँ, आज की ये कड़ी समर्पित है एक ऐसे योग पुरुष को जिनकी 70 वर्षों से अधिक की साधना ने योग को केवल आश्रमों और गुरुकुलों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे घर घर, देश देश और महाद्वीप महाद्वीप तक पहुँचाया। एक ऐसी तपस्या जिसमें शरीर की सीमाएं थी पर आत्मबल असीमित था।
2: जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं योगाचार्य BKS अयंगर की। दुनिया जिन्हें उनकी कालजयी कृति लाइट ऑन योगा के माध्यम से जानती है और जिनका नाम आज योग की एक पूरी विधा का पर्याय बन चुका है।
1: उनका पूरा नाम था योगाचार्य बेल्लूर कृष्णमाचार सुंदर राज अयंगर। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने योग को व्यायाम या स्वास्थ्य का साधन नहीं माना, बल्कि उसे जीवन जीने की एक अनुशासित और सजग साधना के रूप में स्थापित किया।
2: शारीरिक दुर्बलताओं, कठिन परिस्थितियों और संघर्षों से भरे जीवन में भी अयंगर जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अनुभवों, प्रयोगों और गहन अभ्यास से ये सिद्ध किया कि योग हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वह स्वस्थ हो या रोगी, युवा हो या वृद्ध, कलाकार हो या साधारण गृहस्थ।
1: उनकी साधना में कठोर अनुशासन था पर उद्देश्य करुणा से भरा हुआ। उनकी शिक्षा में सख्ती थी पर उनके पीछे जीवन को बेहतर बनाने की गहरी भावना छिपी थी। आज के इस प्रसारण में हम उनके जीवन की उसी यात्रा को फिर से जीवंत करेंगे, संघर्ष से साधना तक, साधना से सिद्धि तक और फिर सिद्धि से सेवा तक।
2: December 14, 1918, दक्षिण भारत के कर्नाटक का एक छोटा सा गांव बेल्लूर। आज सुबह की धुंध कच्ची धरती पर ऐसे बैठी थी जैसे समय भी ठहर गया हो। गांव की सकरी पगडंडियों पर बसे कुछ साधारण से घरों में ही एक गरीब ब्राह्मण परिवार में एक बालक ने जन्म लिया जो आगे चलकर संसार को योग का एक नया मार्ग दिखाने वाला था। बेल्लूर कृष्णाचार सुंदर राज अयंगर।
1: इस बालक के जन्म लेते ही उसकी सांसें मानो जीवन से संघर्ष करने लगीं। वह 13 बच्चों वाले परिवार में माता पिता की 11वीं संतान था। माँ स्वयं पहले से ही इन्फ्लुएंजा जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं और ऐसे समय में एक ऐसा बालक जन्मा जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल, दुबला और कई बीमारियों से घिरा हुआ था।
2: बालक की हालत इतनी नाजुक थी कि जब उसे बाहों में उठाया जाता तो उसके शरीर का भार नहीं बल्कि उसकी असहाय कोमलता महसूस होती, जैसे वह जीवन और मृत्यु की सीमा पर खड़ा हो। डॉक्टरों की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी और उनके शब्दों में निराशा। उन्होंने माता पिता से कह दिया कि इस बच्चे का जीवन शायद लंबा ना हो।
1: उस क्षण किसी को यह आभास भी न था कि यही दुर्बल सा बालक आगे चलकर अपने संकल्प और साधना से न केवल अपने जीवन को बदलेगा बल्कि लाखों लोगों के जीवन में स्वास्थ्य, आशा और संतुलन का प्रकाश भी फैलाएगा।
2: डॉक्टरों की ये बात सुनकर माँ की आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा। इस बालक के पिता की चुप्पी में दर्द चीख रहा था, पर इतिहास साक्षी है कि वही बच्चे जिन्हें दुनिया असहाय समझ लेती है आगे चलकर अपनी नियति को चुनौती देते हैं और अपना भविष्य स्वयं लिखते हैं।
1: कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है। कौन जानता था कि जन्म लेते ही जीवन से संघर्ष करने वाला ये बालक आने वाले समय में सांस को ही

0: अनुकूल नहीं था। 13 बच्चों की देखभाल करने वाली उनकी अकेली माँ खुद ही अक्सर बीमार रहा करती थी। वहीं टाइफाइड, मलेरिया और तपेदिक सहित बचपन की कई बीमारियों के कारण अयंगर की स्कूली शिक्षा भी सीमित रही। उनके पिता का निधन 9 वर्ष की आयु में हो गया और लगातार खराब स्वास्थ्य, कुपोषण और गरीबी ने 14 वर्ष की आयु में उनकी जीवन प्रत्याशा को और कम कर दिया।
1: संसार में आते ही अयंगर की जीवन परीक्षा शुरू हो गई थी। जैसे जैसे ये बालक बढ़ रहा था, उसका शरीर कमजोर हो रहा था। वो कई बीमारियों से ग्रसित था। परिवार पहले ही गरीबी से जूझ रहा था। तभी उनके जीवन में प्रवेश हुआ एक ऐसे गुरु का जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी। कुछ वर्षों में ही बचपन की बीमारी और संघर्षों का ये बुरा दौर गुजर गया। वो युवा अब जीवन के एक नए मोड़ पर था।
0: कुछ समय बाद अयंगर मैसूर रहने चले गए, जहां उनका जीवन एकदम बदल गया। यहां उनका मार्गदर्शन करने वाले थे पूजनीय योगाचार्य तिरुमलई कृष्णमाचार्य, उनके बहनोई, उनके गुरु और उनके योग के उस काल के महानतम विद्वान।
1: अयंगर के जीवन की शुरुआत तो भले ही कठिन थी, लेकिन कठोर अभ्यास, अनुशासन, गुरु की डांट और घंटों तक आसनों की साधना, मानो जैसे अयंगर जी के भीतर एक चुप सा संकल्प जाग उठा था, अगर जीवित रहना है तो योग ही जीवन बनेगा।
0: हालांकि कृष्णमाचार्य का प्रशिक्षण बिल्कुल भी सरल नहीं था। यहाँ बेहद कठिन, निर्भीक और अत्यंत अनुशासित जीवन शैली थी। अब जिसे अपनाने के अलावा अयंगर के पास कोई और विकल्प था ही नहीं। उनके मन में विचार आया कि अब यह केवल साधना नहीं है, यह उनके अस्तित्व का प्रश्न है। जीना है तो योग करना ही होगा।
1: गुरु का आदेश था अभ्यास, निरंतर अभ्यास करो और शरीर का हर दर्द आपके परिवर्तन की पहली सीढ़ी बन जाएगा। गुरु के इस आदेश से युवा अयंगर तप की अग्नि में उतर गए। दिन हो या रात, कठोर आसन, कठिन अभ्यास और शरीर को योग की अंतिम सीमा तक ले जाना, यही उनकी दिनचर्या बन गई।
0: अयंगर की शरीर को साधने की यात्रा शुरू हो चुकी थी। मन को संतुलित करना और आत्मा को ऊंचा उठाना, अब यही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया था। दिन में 10 से 12 घंटे अभ्यास, कभी कठिन, कभी वेदनादायक, पर हर दिन आगे बढ़ना है। यही एक ही संकल्प उनकी साधना का भी बस एक यही सूत्र था, अभ्यास, अभ्यास और केवल अभ्यास।
1: उन्होंने अपने शरीर को एक प्रयोगशाला बना लिया। कौन सा आसन किस रेखा पर टिकेगा, किस सांस पर उसे स्थिरता मिलेगी, इन सब का वो वैज्ञानिक परीक्षण किया करते और अपनी इसी तपस्या के फलस्वरूप आगे चलकर उनके जीवन को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और कई उपलब्धियां उनके नाम लिख दी गईं।
0: वर्ष 1937, सिर्फ 18 वर्ष की आयु में उन्हें अपने परिवार से दूर एक बार फिर पुणे भेज दिया गया। एक बिल्कुल नया शहर, बिल्कुल नया जीवन, पर मन में एक वचन था, योग को समझूंगा या प्रयास में मर जाऊंगा। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा कम ही लोग कर पाते हैं। अयंगर ने इस प्रतिज्ञा को आत्मसात कर लिया।
1: जीवन के इतने उतार चढ़ाव, संघर्ष और असहनीय पीड़ा को बहुत कम उम्र में देख चुके अयंगर यह भली भांति जानते थे कि उनका मार्ग संन्यास तो नहीं है। उन्होंने कभी संसार से पलायन नहीं किया। उन्होंने यह निर्णय स्पष्ट रूप से लिया कि वे गृहस्थ जीवन अपनाएंगे, विवाह करेंगे, परिवार बसाएंगे और समाज के बीच रहकर ही योग का अभ्यास और प्रचार करेंगे।
0: अयंगर के लिए योग किसी गुफा या आश्रम तक सीमित साधना नहीं था। उनके लिए योग रोजमर्रा के जीवन का ही हिस्सा था, जैसे सांस लेना, चलना, काम करना और रिश्तों को निभाना। वे मानते थे कि सच्चा योग वही है जो सामान्य मनुष्य अपने घर, अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों के बीच में जी कर सके।
1: यही कारण था कि उन्होंने योग को साधारण जनमानस की भाषा में उतारा। उन्होंने दिखाया कि योग केवल तपस्वियों का नहीं, योगियों के लिए नहीं, बल्कि गृहस्थों, विद्यार्थियों, महिलाओं, वृद्धों और रोगियों, सबके लिए है। उनके योग में जीवन से पलायन नहीं, जीवन से संवाद था।
0: धीरे धीरे अयंगर का जीवन इस बात का पुख्ता प्रमाण बन गया कि योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और संतुलन के साथ जीवन जीने की कला है। उन्होंने योग को ऊंचे आसनों से उठाकर आम आदमी की जमीन पर रखा और वहीं से उसे विश्व भर में फैलाया।
1: इस योगाभ्यासी का गृहस्थ जीवन भी शुरुआत में कठिन रहा। कभी कभी 10-10 घंटे अभ्यास और बदले में नाम मात्र की कमाई, कभी भूखे सोना, कभी बिना विश्राम अभ्यास करना। लेकिन उनके भीतर आगे बढ़ने की एक जिद थी। योग को समझना, योग को जीना और योग को पूर्णता तक पहुंचाना उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया था।
0: कहते हैं परिवार के साथ साथ जीवन में मित्रों का होना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि जो संबल, विश्वास और प्रेरणा एक सच्चा मित्र देता है, वह शायद किसी और रिश्ते से नहीं मिल पाता। और जब जीवन में ऐसी मित्रता प्रवेश करती है तो वह कृष्ण सुदामा जैसी अमर मिसाल बन जाती है।
1: अयंगर जी के जीवन में भी ऐसा ही एक अद्भुत क्षण आया जब नियति ने उनका परिचय विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन से करवाया। यह मुलाकात केवल दो व्यक्तियों की भेंट नहीं थी, बल्कि योग और संगीत, दो साधनाओं के मिलन की शुरुआत थी, जिसने आगे चलकर अयंगर जी के जीवन और योग की दिशा को वैश्विक पहचान दिलाई।
0: जी हाँ, साल 1952 की बात है। मेनुहिन अपने वायलिन वादन के एक मुश्किल विषय से जूझ रहे थे। शरीर की थकान, सांस की पकड़ और मन की बेचैनी उनका प्रदर्शन प्रभावित कर रहे थे। तभी किसी परिचित ने उन्हें अयंगर से मिलने की सलाह दी। मेनुहिन ने अयंगर के पास आकर योग का अभ्यास शुरू किया, जो केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, सांस और मन के बीच का संतुलन खोजने की एक विधि थी।
1: जैसे जैसे अभ्यास आगे बढ़ा, मेनुहिन ने अपने वादन में चमत्कारिक सुधार महसूस किया। उनकी पकड़ मजबूत हुई, सांसों का नियंत्रण बेहतर हुआ और मन अधिक केंद्रित हुआ। इस अनुभव ने दोनों के बीच गुरु शिष्य का बंधन गहरा कर दिया, जो एक सच्ची मित्रता में भी बदल गया। मेनुहिन ने अयंगर को पश्चिम बुलाया, उनसे कहा, आइए हम अपने यहाँ लोगों को भी ये सिखाएं।
0: अयंगर ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और यही वो मोड़ बना जिसने भारत के बाहर अयंगर योग की मान्यता को जन्म दिया। 1960 के दशक में लंदन से एक आग्रह आया। शैक्षिक प्राधिकरण ने अयंगर से कहा कि वे विद्यालयों और कॉलेजों में योग पढ़ाएं। यह कार्यक्रम न केवल शिक्षकों और छात्रों के बीच लोकप्रिय हुआ, बल्कि ब्रिटेन में अयंगर योग के लिए पहला ठोस आधार बना।
1: उन यात्राओं में अयंगर ने सिर्फ योग के आसन नहीं सिखाए, उन्होंने यह दिखाया कि योग कैसे कलाकारों, संगीतकारों और साधारण लोगों के जीवन में शारीरिक और मानसिक सुधार ला सकता है। मेनुहिन ने बाद में कहा कि अयंगर मुझे मेरे सबसे महान वायलिन शिक्षक की तरह मार्गदर्शित करते रहे। यह तारीफ किसी पुरस्कार से कम नहीं थी। उनकी मित्रता ने पश्चिम में योग के प्रति विश्वास और रुचि जगाई।
0: अयंगर और मेनुहिन की यह साझेदारी एक सांस्कृतिक सेतु बनकर उभरी, संगीत और योग के बीच का संवाद। इस मित्रता से यह संदेश गया कि ज्ञान, स्वास्थ्य और कला सीमाओं से परे साझा किए जा सकते हैं। आज भी जिन स्थानों पर अयंगर ने पढ़ाया, वहां उनके प्रभाव के निशान दिखाई देते हैं, जैसे स्वास्थ्य सुधार, बेहतर प्रदर्शन और जीवन के लिए नए दृष्टिकोण।
1: मेनुहिन को अयंगर की साधना में जो दिव्यता दिखाई दी थी, उसमें दुनिया को बदलने की ताकत थी। इस अटूट मित्रता में एक ओर था संगीत का तपस्वी और दूसरी ओर था योग का साधक। मेनुहिन के पश्चिम आने का निमंत्रण स्वीकार करने के बाद अयंगर कभी नहीं रुके। यही था एक छोटी सी मुलाकात का एक बड़ा असर। जब एक महान संगीतकार और एक समर्पित योगाचार्य मिलते हैं, तो वह सिर्फ व्यक्तिगत लाभ नहीं रहता, बल्कि एक पूरी सभ्यता को एक नया मार्ग भी दिखा देता है।
0: इस योग साधक की इस ऐतिहासिक यात्रा ने उन्हें और भारतीय योग को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई। लंदन, पेरिस, जिनेवा, अमेरिका, जहां भी अयंगर जाते लोग उनके सटीक और अनुशासित योग ज्ञान से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। उनका योग अब केवल अभ्यास नहीं, एक वैज्ञानिक पद्धति, एक सुरक्षित प्रणाली और दुनिया भर के लोगों के लिए आशा बन चुका था।
1: समय बीता, योग की उनकी साधना गहराती चली गई। 1973 में उनकी पत्नी इस दुनिया से चली गई। उनकी स्मृति को योग की पवित्र भूमि में अमर रखना अयंगर जी के लिए एक आध्यात्मिक कर्तव्य बन गया। अयंगर ने अपनी जीवन संगिनी राममणि के सम्मान में एक ऐसा संस्थान स्थापित किया जिसने योग की दुनिया की दिशा ही बदल दी। पुणे में स्थित राममणि अयंगर मेमोरियल योग संस्थान, यह संस्थान सिर्फ एक भवन नहीं था, यह था प्रेम, स्मृति और समर्पण का प्रतीक।
0: यहीं से योग को मिला एक व्यवस्थित ढांचा, एक वैज्ञानिक पद्धति और एक ऐसी दृष्टि जो पूरी दुनिया के लिए आदर्श बन गई। अयंगर अक्सर कहा करते थे, मेरी पत्नी का बलिदान मेरा आधार है, इसीलिए यह संस्थान सिर्फ भवन नहीं, हमारी साधना का घर है।
1: उनकी बेटी गीता अयंगर और पुत्र प्रकाश अयंगर दोनों ने उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाया और इस तरह अयंगर योग एक वैश्विक आंदोलन में बदल गया। अयंगर परिवार यह कोई सामान्य परिवार नहीं, यह तो योग की एक परंपरा है जो आज एक वैश्विक आंदोलन का स्वरूप ले चुकी है।
0: अयंगर ने एक कठोर लेकिन सुंदर शिक्षण पद्धति बनाई। अयंगर योग सिखाना हो तो सालों का अभ्यास, अनुशासन और परीक्षा अनिवार्य थी। आज 40 देशों में 1800 से अधिक संस्थान अयंगर योग का प्रसार कर रहे हैं। अयंगर का शिक्षण गहरा, सटीक और अत्यंत अनुशासित रहा है। वे कहा करते थे, योग मेरी जीवन शैली है। उनके 3 सिद्धांत संतुलन, सटीकता और स्थिरता योग की दुनिया में विख्यात हैं।
1: वे योग को लेकर इतने व्यवस्थित थे कि कभी कभी हास्य शैली में बताते थे कि लोग अक्सर उनके नाम BKS को बीट, कीक और शाउट समझ लेते हैं, क्योंकि वे गलत आसन को तुरंत सुधारते थे। उन्होंने छोटे समूहों से लेकर 1000 लोगों की कक्षाओं में योग सिखाया। 86 वर्ष की उम्र में कोलोराडो, 92 की उम्र में मॉस्को और बीजिंग में उन्होंने योग की कक्षाएं ली। दुनिया उनके सामने नतमस्तक थी।
0: चीन ने तो उनके सम्मान में डाक टिकट तक जारी किया। 1966 में उन्होंने दुनिया को एक कालजयी रचना योग पर प्रकाश, लाइट ऑन योगा, समर्पित की, जिसमें 600 से अधिक आसन और तकनीकें हैं। आज भी इसे योग की बाइबिल कहा जाता है। अब तक कुल 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है।
1: अयंगर ने 1993 में यहूदी मेनुहिन की प्रस्तावना के साथ लाइट ऑन द योगा, सूत्र ऑफ पतंजलि और 2012 में दलाई लामा की प्रस्तावना के साथ कोर ऑफ द योगा, सूत्र द डेफिनेटिव गाइड टू द फिलोसफी ऑफ योगा प्रकाशित की।
0: अयंगर के भारत के प्रति उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें 1991 में पद्मश्री पुरस्कार, वर्ष 2002 में पद्मभूषण और 2012 में प्रतिष्ठित IMC जुरान क्वालिटी मेडल से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन व्यक्तित्वों को दिया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में जागरूकता और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने में आदर्श भूमिका निभाई है।
1: अयंगर इस पुरस्कार को लेने वाले केवल 2 गैर उद्योगपतियों में से एक हैं। 2012 में उन्हें देश में गांधी जी के बाद 50 महानतम भारतीयों में से एक चुना गया था। अप्रैल 2014 में ही वे भारत गणराज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण को ग्रहण करने के लिए दिल्ली गए थे।
0: समारोह के बाद दिए एक इंटरव्यू में अयंगर ने अपनी जग प्रसिद्ध सादगी के साथ कहा, जीवन में हमारी बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। यह त्याग के लिए नहीं बना है। हम इस समाज में रहते हैं और समाज को कुछ वापस देना हमारा कर्तव्य है। त्याग का विचार मुझे 96 वर्ष की आयु में आएगा। त्याग का अर्थ है सांसारिक सुखों का आनंद छोड़ देना, लेकिन मैं आंतरिक सुख से परिपूर्ण हूँ।
1: उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 20 ग्रंथों का लेखन किया। ये अविश्वसनीय नहीं लगता कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने 14 साल में स्कूल छोड़ दिया वही आगे चलकर योग का सबसे बड़ा दार्शनिक लेखक बन गया।
0: जब किसी में योग्यता होती है तो ईश्वर स्वयं उसमें सामर्थ्य भी भर देते हैं। जीवन के अभावों में पले बढ़े अयंगर सिर्फ योग के साधक ही नहीं थे, बल्कि वे लोक कल्याण के मार्ग पर चलने वाले तपस्वी भी थे। समाज की पीड़ा उन्हें भीतर तक छूती थी, इसीलिए उन्होंने अनेक सामाजिक कार्यों के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में अपना अहम योगदान दिया।
1: योग से मिले धन से अयंगर जी ने बेलूर ट्रस्ट की स्थापना की और उसी बेलूर ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने अपने पैतृक गांव को पानी, बिजली, अस्पताल, विद्यालय, कॉलेज और तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र की सौगात दी। उनकी यही सेवा भावना योग की तरह ही लोगों के जीवन में रोशनी बनकर पहुंची।
0: उन्होंने ऋषि पतंजलि का पहला मंदिर भी पुणे में बनवाया। पश्चिम में योग को विज्ञान और कला की तरह स्थापित करने का सबसे बड़ा श्रेय अयंगर को जाता है। अगर कोई आसन कठिन लगता तो वे कहते, प्रयास करो, जरूरत हो तो रस्सी, ईंट, कुर्सी का सहारा लो, तुम जरूर कर पाओगे।
1: और इसी कारण उन्हें फर्नीचर योगी भी कहा गया। आज जो हम योग के प्रॉप्स जानते हैं, उसकी शुरुआत अयंगर ने ही की थी। योग में प्रॉप्स का उपयोग, ये एकदम नया आविष्कार था जिसमें बेल्ट्स, ब्लॉक्स और बोल्स्टर शामिल थे।
0: बोल्स्टर को कुशन, एक तकिया या एक सहारे के रूप में भी जाना जाता है, ताकि हर व्यक्ति, चाहे वो कमजोर हो या वरिष्ठ हो, अपनी क्षमता के अनुसार सुरक्षित योग कर सके। उनकी योग पद्धति ने लाखों साधकों के जीवन को नया रूप दिया, जिससे कई चमत्कारी परिवर्तन योग साधकों ने महसूस किए। शरीर बदला, स्वास्थ्य सुधरा और मन स्थिर हुआ।
1: अयंगर की मुलाकात जब भी किसी साधक, चिंतक या योगी से होती थी, वे उनसे प्रभावित होते थे, उनके जीवन से प्रेरणा लेते, उनकी बातों से जीवन में संतोष का अनुभव करते। दलाई लामा से अपनी मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं जीवन भर योग का विद्यार्थी रहा हूँ। योग किसी जाति, धर्म या देश का नहीं, बल्कि यह पूरी मानवता का है। जीवन में हमारी कई जिम्मेदारियां हैं और समाज को कुछ लौटाना ही जीवन का उद्देश्य है।
0: अयंगर ने अपने योग जीवन में ये अनुभव किए कि स्वस्थ रहते हुए योग करने से हम कई बीमारियों से लड़ सकते हैं। यदि बीमार है तब भी योग से बीमारी कम की जा सकती है या उसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। उन्होंने राममणि अयंगर मेमोरियल योगा इंस्टीट्यूट संस्थान में और बाहर भी पश्चिमी डॉक्टरों के साथ मिलकर ऐसे तरीके खोजे जिनमें मरीज अपनी बीमारी के इलाज में सक्रिय रूप से शामिल हो।
1: अयंगर कहते थे, मेरी करुणा कठोर है, मैं बीमारी से लड़ता हूँ, व्यक्ति से नहीं, इसलिए मेरी दया भी कठोर है। आज पश्चिमी चिकित्सा भी उनके इस काम को गंभीरता से देख रही है। उनके इलाज और शोध के कई परिणाम प्रकाशित हो चुके हैं और वैज्ञानिक अध्ययनों के बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं।
0: उनके योग अभ्यास पर एक फिल्म बनाई गई थी। कैमरे में दिखाया गया कि कैसे वे आसनों के बीच बादलों की तरह तेजी से, सहजता से एक से दूसरे आसन में बहते चले जाते थे। यह देखना अद्भुत था, पर साथ ही खतरनाक भी।
1: धीरे धीरे अयंगर जी को यह समझ आया कि तेज गति वाला अभ्यास केवल युवा और अत्यंत स्वस्थ लोगों के लिए ही उपयुक्त है और इसमें गलतियों की संभावना भी बहुत अधिक रहती है। इसलिए उन्होंने अपने अभ्यास की चाल को धीमा किया। हर आसन के कोण, हर स्थिति, हर आंदोलन और हर श्वास का गहन अध्ययन शुरू किया।
0: यही वह पल था जब उनके भीतर शोध का एक नया संसार खुला और यही शोध बाद में योग की दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया। जब दुनिया में योग की क्रांति आई तब योग आसनों को पेटेंट कराने की होड़ होने लगी, जिसका उन्होंने वर्ष 2011 में खुलेआम विरोध किया। वो कहते थे, योग का अनुभव हर व्यक्ति का अधिकार है, यह बहस का विषय नहीं, अभ्यास का मार्ग है।
1: 1950 के दशक में अयंगर के मित्र के आह्वान पर शुरू हुई भारत के योग की विश्व यात्रा सतत चलती रही। उन्होंने पश्चिम को यह दिखाया कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि एक जीवन यात्रा है। उनकी पुस्तक लाइट ऑन योगा ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। आज भी उनकी ये किताब योग का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, जहां जहां वे पहुंचे वहां योग के मानो बीज फूट पड़े।
0: टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया। ये सम्मान केवल किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि भारत की योग परंपरा का था। अयंगर योग की कई विशेषताएं हैं। अयंगर योग का मूल मंत्र है संतुलन, सटीकता और स्थिरता। वो हर आसन को बारीकी से करने में विश्वास रखते ताकि रोम रोम तक योग को महसूस किया जा सके।
1: हाँ, हम कह सकते हैं कि अयंगर शिक्षक से ज्यादा मूर्तिकार थे। वे अपने हर विद्यार्थी को ध्यान से देखते और उनकी गलती तुरंत सुधारते। वे तब तक सुधार करवाते जब तक योग आसन अपनी पूर्णता को न छू ले। उनके शिष्यों से उन्हें सिर्फ एक अपेक्षा थी, निष्ठा, नैतिकता और ईमानदार अभ्यास। वे कहते, लोकप्रियता योग के सच्चे लाभों को ढक दे, यह मैं कभी नहीं चाहता।
0: घर में वे अत्यंत सरल थे, शांत, नम्र और नियमों के पक्के व्यक्तित्व। सफलता के अभिमान ने उन्हें कभी छुआ ही नहीं। वे हमेशा कहते, मैं सिर्फ योग का एक विद्यार्थी हूँ। उनकी विनम्रता ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। उनका मानना था कि उदाहरण ही सब कुछ है और जब उदाहरण सत्य को व्यक्त करता है तो उसमें दूसरों को बदलने की शक्ति होती है।
1: उनके ये शब्द आज भी प्रेरणा है। आपका शरीर आपका मंदिर है, इसे शुद्ध और स्वच्छ रखें ताकि इसमें आत्मा का वास हो सके। उनका यही संदेश था। उनका मानना था कि योग केवल नजर नहीं बदलता बल्कि जीवन जीने का नजरिया बदल देता है।
0: वर्ष 2001 में एक तारे का नाम उनके नाम पर रखा गया तो वे हमेशा की तरह हंसते हुए बोले, योग की यात्रा अब धरती पर नहीं रही, आकाश तक पहुंच गई है।
1: और आज दुनिया भर में अयंगर योग संस्थान के लाखों शिक्षक इन संस्थानों में कई लोगों को योग की शिक्षा दे रहे हैं। ये करोड़ों साधक उनकी इस योग साधना की विरासत को जीवित बनाए हुए हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया। पर उनका सबसे बड़ा पुरस्कार वो लाखों मुस्कानें थीं जो योग से जीवन पाती रही।
0: 20 अगस्त 2014 का दिन, 96 वर्ष की आयु में वो अपनी योग की दुनिया से विदा हो गए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक ऐसा प्रकाश जो दुनिया को आने वाली सदियों तक योग का मार्ग दिखाता रहेगा। BKS अयंगर, साधक, शोधकर्ता, शिक्षक, दार्शनिक और मानवता के लिए योग का अमूल्य उपहार थे। श्रोताओं, जब तक ये संसार रहेगा तब तक इस विभूति का नाम भी अमर रहेगा।
1: उनकी बुद्धि ऊंची थी पर पैर हमेशा धरती पर टिके रहे। वे असाधारण भी थे और आश्चर्यजनक रूप से साधारण भी। यही संतुलन, यही स्थिरता उन्हें योग जगत का सूर्य बनाती है।
0: आज का यह विशेष कार्यक्रम योगाचार्य BKS अयंगर को समर्पित था। उनकी 70 वर्षों की योग साधना हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। यहाँ हम कह सकते हैं कि वे केवल शरीर से विदा हुए पर योग के हर श्वास, हर आसन, हर क्षण में वे आज भी जीवित हैं। भारत की इस विभूति को हमारा शत शत नमन।
1: मन को दृढ़ बनाओ, योग तुम्हें पुनर्जन्म देगा। हम अयंगर के इस मंत्र के साथ आज के विशेष कार्यक्रम भारत विभूति को यहीं विराम देते हैं।
0: श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन हमें मिला संतोष कुमार वर्मा से। परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने। समन्वय सहयोग था सतीश बाथम का। लेखन स्वाति गिरी का। और आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना
1: और मैं विजयकांत नायक।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: मिली उस व्यक्ति से जिसने ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली साम्राज्यों को थर्राने पर मजबूर कर दिया था, मराठा एडमिरल कान्होजी आंग्रे। जब यूरोपीय मैन ऑफ वार युद्धपोत खुले समुद्रों पर हावी थे, तब आंग्रे ने एक शानदार उथले पानी की तकनीक का उपयोग करके कोंकण तट पर राज किया। उन्होंने विजय दुर्ग जैसे अड्डों की किलेबंदी की, जो एक उथला बंदरगाह था, जहां उनका तेज तर्रार बेड़ा आसानी से शरण ले सकता था। जब विशाल यूरोपीय जहाजों ने उनका पीछा करने की कोशिश की, तो उनके गहरे पैंदे मिट्टी में धंस जाते या उथले पानी में फंस जाते थे, जिससे वे आंग्रे की फुर्तीली और हल्की गराब और डेलीवेट नौकाओं के लिए आसान शिकार बन जाते थे। दशकों तक उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सका, यहाँ तक कि 1722 में उन्होंने संयुक्त ब्रिटिश पुर्तगाली अभियान को भी धूल चटा दी थी। वो पश्चिमी सागर के महान अधिपति थे, जिन्होंने वैश्विक साम्राज्यों को अपने नियमों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया था।
2: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है FM 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद।

आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त है कार्यक्रम परिक्रमा का, आइए सुनते हैं परिक्रमा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में बच्चों की रचनात्मकता और आत्मविश्वास को निखारने प्रोडक्शन ओरिएंटेड चिल्ड्रंस थिएटर वर्कशॉप का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और मानव संग्रहालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला का उद्घाटन संग्रहालय के अंतरंग प्रदर्शनी विधि संकुल सभागार में किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने कहा कि बाल रंगमंच बच्चों के भीतर छिपी सृजनात्मक ऊर्जा को बाहर लाने का माध्यम है। बच्चों को कला और संस्कृति से जोड़ना दरअसल हमारे समाज में सांस्कृतिक भविष्य को मजबूत करना है।

साहित्य की दुनिया में अक्सर उपन्यास लिखे जाते हैं, लेकिन किसी उपन्यास के भीतर से समाज की विसंगतियों और स्त्री विमर्श के 21 विशिष्ट मुद्दों को निकालकर उन पर चर्चा करना एक अभिनव प्रयोग है। यह अनूठी झलक मंगलवार को शिवाजी नगर स्थित दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय में देखने को मिली। उपन्यास अग्नि गर्भ में जलती पंखुरियों पर केंद्रित पुस्तक चर्चा एवं शिनाख्त के लोकार्पण समारोह का आशा पारस फॉर पीस एंड हार्मनी फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की।

कीर्ति बैले एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा 15 मई से 25 मई एक्टिंग व कंटेम्प्रेरी वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। वर्कशॉप का आयोजन प्रतिदिन शाम 5 बजे से 7 बजे तक मायाराम सुरजन स्मृति भवन में किया जाएगा।

बच्चों ने दूरबीन के माध्यम से आकाशीय पिंडों को निहारा और खगोल विज्ञान से जुड़ी चीजों को जाना। मौका था राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर आंचलिक विज्ञान केंद्र के द्वारा रायसेन जिले के अमोदा ग्राम में विशेष विज्ञान प्रसार कार्यक्रम का, जिसका उद्देश्य ग्रामीण विद्यार्थियों और आमजन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि बढ़ाना तथा वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना था। इसकी शुरुआत ऊर्जा विषय पर आधारित मोबाइल विज्ञान प्रदर्शनी से हुई। विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों को सरल और रोचक प्रयोगों के माध्यम से समझा। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्य प्रदेश में चल रहे डिजाइन शिविर 4.0 में विद्यार्थियों और डिजाइन में रुचि रखने वाले प्रतिभागियों ने रचनात्मक गतिविधियों के जरिए नई चीजें सीखी और अपने हुनर को निखारा। दिन की शुरुआत अर्न योरसेल्फ विषय पर आयोजित प्रेरणादायक सत्र से हुई। इसमें वक्ता ने विद्यार्थियों को आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और आत्मविकास का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि हर युवा के भीतर विशेष प्रतिभा होती है, जरूरत उसे पहचानने और सही दिशा में देने की है। उनके संवादात्मक अंदाज ने विद्यार्थियों को खूब प्रेरित किया। वहीं शहर के पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान NCERT में चल रहे समर कैंप मंगलवार का दिन विद्यार्थियों के लिए कौशल और अनुभव से भरा रहा। कैंप के दौरान बच्चों ने न केवल रसोई की बारीकियों को समझा बल्कि भविष्य के लिए जरूरी वित्तीय साक्षरता और डिजिटल बैंकिंग के गुर भी सीखे। ये थी आज की परिक्रमा। सुनते रहिए FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंदी का चैनल देश के लिए।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है भारतीय साहित्य के प्रख्यात कवियों की अनुपम एवं कालातीत रचनाओं की रचनात्मक प्रस्तुति पर आधारित कार्यक्रम काव्य कुंजन।

0: कार्यक्रम काव्य गुंजन के पिछले भाग में आपने सुना था कि सिद्धार्थ के संबंधी किस तरह सिद्धार्थ के घर छोड़ने पर विलाप कर रहे हैं और दूसरी तरफ यशोधरा का पश्चाताप कि अब मैं राजसी जीवन जीकर क्या करूंगी। लीजिए अब सुनिए इसके आगे।
1: अब जो काव्यांश आप सुनेंगे वो यशोधरा के साथ साथ राहुल जननी की मना स्थिति है। खुद रोते हुए पुत्र को अभागा कहते हुए क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? लीजिए सुनिए।
2: चुप रह हाय अभागे, रोता है अब किसके आगे, तुझे देख पाते वे रोता, मुझे छोड़ जाते क्यों सोता, अब क्या होगा तब कुछ होता, सोकर हम खोकर ही जागे, चुप रह हाय अभागे। बेटा मैं तो हूं रोने को, तेरे सारे मल धोने को, हंस तू है सब कुछ होने को, भाग्य आएंगे फिर भी भागे, चुप रह हाय अभागे। तुझको क्षीर पिला कर लूंगी, नयन नीर ही उनको दूंगी, पर क्या पक्ष पातनी होंगी, मैंने अपने सब रस त्यागे, चुप रह हाय अभागे। चेरी भी वह आज कहां, कल थी जो रानी, दानी प्रभु ने दिया उसे क्यों मन यह मानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, मेरा शिशु संसार वह दूध पिए परिपुष्ट हो, पानी के ही पात्र तुम प्रभो रुष्ट या तुष्ट हो। यह छोटा रस छोना कितना उज्जवल, कैसा कोमल, क्या ही मधुर सलोना, क्यों ना हंसूं रोऊं गांव में, लगा मुझे यह टोना, आर्य पुत्र आओ सचमुच मैं दूंगी चंद खिलौना, जीर्ण तरी भूरि भार देख अरि एरी, कठिन पंथ दूर पार और यह अंधेरी, सजनी उल्टी बयार वेग धर प्रखर धार, पद पद पर विपदवार रजनी घन घेरी, जीर्ण तरी भूरि भार देख अरि एरी, जाना होगा परंतु खींच रहा कौन तंतु, गरज रहे घोर जंतु बजती भय भेरी, जीर्ण तरी भूरि भार देख अरि एरी, समय हो रहा सपत्न अपने वश कौन यत्न, गांठ में अमूल्य रत्न बिसरी सुध मेरी, जीर्ण तरी भूरि भार देख अरि एरी, भव का यह विभव साथ हाथी भर किंतु हाथ, ले लें कब लौट नाथ, ले लें कब लौट नाथ,

0: दूध जमा है राहुल मुख में तेरे। लटपट चरण चाल अटपट सी मन भाई है मेरे, तू मेरी उंगली धर अथवा मैं तेरा कर धारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। आ मेरे अवलंब बता क्यों अंब अंब कहता है, पिता पिता कह बेटा जिनसे घर सूना रहता है। दहता भी है बहता भी है यह जी सब सहता है, फिर भी तू पुकार किस मुंह से, हाँ मैं उन्हें पुकारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। आली चक्र कहाँ चलता है, सुना गया भूतल ही चलता, भानु अचल चलता है। आली चक्र कहाँ चलता है, कटते हैं हम आप घूम कर, निर्वश निर्बलता है। दिन कर दीप द्वीप शलभों को पल पल में छलता है। आली चक्र कहाँ चलता है, कुशल यही वह दिन भी कटता जो हमको खलता है। साधक भी इस बीच सिद्धि को लेकर ही टलता है। आली चक्र कहाँ चलता है, गोपा गलती है पर उसका राहुल तो पलता है। अश्रुसिक्त आशा का अंकुर देखूं कब फलता है। आली चक्र कहाँ चलता है।
1: ओ माँ आंगन में फिरता था कोई मेरे संग लगा, आया जो ही मैं अलिंद में छिपा न जाने कहाँ भगा।
0: बेटा भीत न होना वह था तेरा ही प्रतिबिंब जगा।
1: अम्ब भीती क्या,
0: मृषा भ्रांति वह, रह तू प्रीति पगा। ठहर बाल गोपाल कन्हैया राहुल राजा भैया, कैसे धाऊं पाऊं तुझको हार गई मैं दैया। सद दूध प्रस्तुत है बेटा दुग्ध फैन सी शैया, तू ही एक खिवैया मेरी पड़ी भवर में नैया। आ मेरी गोदी में आ जा मैं हूँ दुखिया मैया।
1: मैया है तू अथवा मेरी दोथन वाली गैया, रोने से यह रिस ही अच्छी तिलिलिलिताता थैया।
0: तब कहता था लोभ न दे अब चंद खिलौने कीरट क्यों।
1: तब कहती थी दूंगी बेटा माँ अब इतनी खटपट क्यों।
0: कह तो झूठ मूठ बहला दूं पर वह होगी छाया, मुझको भी शैशव में शशि की थी ऐसी ही माया। किंतु प्रसू बनकर अब मैंने उसको तुझ में पाया, पिता बनेगा तभी पाएगा तू वह धन मन भाया।
1: अम्ब पुत्री अच्छा यह मैं झेलूं इतनी झंझट क्यों।
0: पुत्र हुआ तो पिता न होगा यह विरक्ति ओ नटकट क्यों।
1: अम्ब यह पंछी कौन बोलता है मीठा बड़ा, जिसके प्रवाह में तू डूबती है बहती।
0: बेटा यह चातक है।
1: माँ क्या कहता है ये।
0: पी पी किंतु दूध की तुझे क्या सुध रहती।
1: और यह पंछी कौन बोला वाह।
0: कोयल है।
1: माँ क्यों कूक की तू हूक सी है सहती, कहती उमंग से है मेरे संग संग अहो। कहो कहो किंतु तू कहानी नहीं कहती। नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा पय हो चाहे पानी।
0: नहीं पिएगा बेटा यदि तू तो सुन चुका कहानी।
1: तू ना कहेगी तो कह लूंगा मैं अपनी मनमानी।
0: सुन राजा वन में रहता था घर रहती थी रानी, और हटी बेटा रटता था नानी नानी नानी।
1: बात काटती है तू, अच्छा जाता हूँ मैं मानी।
0: नहीं नहीं बेटा आ तूने यह अच्छी हट ठानी, सुनकर ही पीना सोना मत, नई कहूँ या पुरानी।
1: व्यर्थ गल गया मेरा रसाल, मैंने स्वयं नहीं चखा था, माँ चुनकर सौ सौ में इसे पिता के लिए बचा रखा था।
0: वह जड़ फल सड़ जावे पर चेतन भावना तभी वह तेरी, अर्पित हुई उन्हें में वत्स, यही मति तथा यही गति मेरी। निष्फल दो दो बार गई, हार गई माँ हार गई।
1: आगे आगे अंब जहां, मैं पीछे चुपचाप वहां, खोज फिरी तू कहां कहां, फिर कर क्यों ना निहार गई, हार गई माँ हार गई।
0: यहां पिता की मूर्ति यही मेरे तेरे बीच रही, तू इसको ही देख बही, सुध ही शोध बिसार गई, हार गई माँ हार गई।
1: अब की तू छिप देख कहीं, पर लेना निश्वास नहीं, पकड़ा दे जो तुझे वहीं।
0: बेटा मैया वार गई, हार गई माँ हार गई।
1: मेरी भोली माई भला खिलौना लाई,
0: जब देखो अपनी ही कहता, मेरी कब सुनता है, क्रीड़ा में ऐसा साथी क्या कोई चुनता है।
1: आहा तू मुस्कुराई मेरी भोली माई, नहीं नहीं उपजाता है माँ यह ममत्व ही गहरा, सहज मधुर भाषी होकर भी यह बराक ही बहरा, मेरा छोटा भाई मेरी भोली माई। अम्ब तात कब आएंगे?
0: धीरज धर बेटा, अवश्य हम उन्हें एक दिन पाएंगे, मुझे भले ही भूल जाएं वे, तुझे क्यों न अपनाएंगे। कोई पिता न लाया होगा वह पदार्थ वे लाएंगे,
1: माता पिता पुत्र हम दोनों संग संग फिर जाएंगे, देना तू पाथेय प्रेम से विचर विचर कर खाएंगे, पर अपने दूने सूने दिन तुझको कैसे भाएंगे।
0: हा राहुल क्या वैसे दिन भी इस धरती पर छाएंगे, देखूंगी बेटा मैं जो भी भाग्य मुझे दिखलाएंगे, तो भी तेरे सुख के ऊपर मेरे दुख ना छाएंगे।
1: अम्ब मेरी बात कैसे तुझ तक जाती है?
0: बेटा वह वायु पर बैठ उड़ जाती है।
1: होंगे जहां तात क्या, ना होगा वायु माँ वहां।
0: बेटा जगत प्राण वायु व्यापक नहीं कहां,
1: क्यों अपनी बात वह ले जाता वहां नहीं।
0: निज ध्वनि फैल कर लीन होती है यहीं,
1: और उनकी भी वहीं, फिर क्या बड़ाई है।
0: सबने शरीर शक्ति मित की ही पाई है, मन ही के माप से मनुष्य बड़ा छोटा है, और अनुपात से उसी के खरा खोटा है, साधन के कारण ही तन की महत्ता है, किंतु शुद्ध मन की निरुद्ध कहाँ सत्ता है। करते हैं साधन विजन में वेतन से, किंतु सिद्धि लाभ होगा मन से मनन से, देख निज नेत्र कर्ण जा पाते नहीं वहाँ, सूक्ष्म मन किंतु दौड़ जाता है कहाँ कहाँ। वत्स यही मन जब निश्चलता पाता है, आकर इसी में तब सत्य समा जाता है।
1: तो मन ही मुख्य है माँ।
0: बेटा स्वस्थ देह भी योग्य अधिवासी के लिए हो, योग्य गेह भी।
1: विहग समान यदि अम्ब पंख पाता मैं, एक ही उड़ान में तो ऊंचे चढ़ जाता मैं, मंडल बनकर मैं घूमता गगन में, और देख लेता पिता बैठे किस वन में, कहता मैं तात उठो घर चलो अब तो, चौंक कर अम्ब मुझे देखते वे तब तो, कहते तू कौन है तो नाम बतलाता मैं, और सीधा मार्ग दिखा शीघ्र उन्हें लाता मैं, मेरी बात मानते हैं मान्य पितामह भी, मानते अवश्य उसे टालते ना वे कभी, किंतु बिना पंख के विचार सब रीत है, हाय पंछियों से भी मनुष्य गए बीत है। हम थलवासी जल में तो तैर जाते हैं, किंतु पंछियों की भांति उड़ नहीं पाते हैं। मानवों को पंख क्यों विधाता ने नहीं दिए?
0: पंखों के बिना ही उड़ें चाहे तो इसलिए?
1: पंखों के बिना ही अम्ब?
0: और नहीं।
1: कैसे माँ?
0: भूल गया।
1: ओ हनुमान उड़े जैसे माँ, क्यों कर उड़े वे भला?
0: बेटा योग बल से।
1: मैं भी योग साधना करूँगा अम्ब कल से। तेरा मुंह पहले बड़ा था अम्ब, कह तू?
0: राहुल क्या पूछता है बेटा भला यह तू?
1: रह गया तेरा मुंह छोटा यही कह के, दादी जी अभी तो अम्ब रोई रह रह के।
0: राहुल तू कहता है खा चुका हूँ इतना, किंतु मुझे लगता है खाया अभी कितना। बेटा यही बात मेरी और दादी जी की है, होती परितृप्ति कभी जननी के जी की है।
1: रोई किंतु क्यों वे अम्ब?
0: उनके वियोग से वंचित हूँ जिनके बिना में राजभोग से।
1: माँ वही तो, छोटा मुँह कहने को तेरा है, दैन्य और दर्प जहाँ दोनों का बसेरा है। चाहे मुँह छोटा रहे किंतु बड़ा भोला है, छोटी और खोटी बात वह कब बोला है। और तेरी आँखें तो बड़ी है अम्ब तब भी।
0: बेटा तुझे देख परिपूर्ण हैं वे अब भी।
1: जब तात यहाँ लौट कर आएंगे और वे भी तेरा मुँह छोटा बतलाएंगे, तो मैं सुन उनसे कहूँगा बस इतना, मुँह जितना हो किंतु मानी मन कितना। माँ कह एक कहानी।
0: बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी?
1: कहती है मुझसे यह चेठी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी।
0: तू है हटी मान धन में मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी।
1: हाँ माँ यही कहानी।
0: वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु छिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी।
1: हाँ माँ यही कहानी।
0: गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से।

उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी।

0: की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी।
1: माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी।
0: कोई निर अपराध कुमारे, तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। तूने गुनी कहानी, सो अपने चंचल पन सो मेरे अंचल धन सो। पुष्कर सोता है निज सर में, भ्रमर सो रहा है पुष्कर में, गुंजन सोया कभी भ्रमर में, सो मेरे गृह गुंजन सो मेरे अंचल धन सो। तनिक पाशर्व परिवर्तन कर ले, उस नासा पुट को भी भर ले, उभय पक्ष का मन तू हर ले, मेरे व्यथा विनोदन सो मेरे अंचल धन सो। रहे मंद ही दीपक माला, तुझे कौन भय कष्ट कसाला, जाग रही है मेरी ज्वाला, सो मेरे आश्वासन सो मेरे अंचल धन सो। ऊपर तारे झलक रहे हैं, गोखों से लग ललक रहे हैं, नीचे मोती ढलक रहे हैं, मेरे अपलक दर्शन सो मेरे अंचल धन सो। तेरी सांसों का सुस्पंदन, मेरे तप्त हृदय का चंदन, सो मैं कर लूं जी भर क्रंदन, सो उनके कुल नंदन सो मेरे अंचल धन सो। खेले मंद पवन अलकों से, पोंछूं मैं उनको पलकों से, छद रद की छवि की छलकों से, पुलक पूर्ण शिशु यौवन सो मेरे अंचल धन सो।
2: ऊपर आसमान में तारे चमक रहे हैं। अपनी बालक में यशोधरा को बचपन की कोमलता तथा यौवन की चंचलता दोनों दिख रही हैं, और वो उसके सोने का आह्वान कर रही है। और अगले काव्यांश में संसार और अपने जीवन के सुख दुख की विवेचना में व्यस्त यशोधरा नियति को नाटक के रूप में देख रही है।

भावना का व्यर्थ ही क्यों ढो रही, भर हर्ष में भी शोक में भी अश्रु संस्रति रो रही। सुख दुख दोनों दृष्टियों से सृष्टि सुद बुद्ध

बेला रहे वह जो रही। उलट पड़ा यह दिव रत्नाकर, पानी नीचे ढलक वहां, तारक रत्ना हार सखी उसके खुले हृदय पर झलक रहा। निर्दय है या सदय हृदय वह, मैंने उससे ललक कहा। हंस बोला ग्रह चक्र देख लो, पर न उठे ये पलक। हहा पवन तू शीतल मंद सुगंध, इधर किधर आ भटक रहा है, उधर उधर ओ अंधे। तेरा भार सहे न सहे ये मेरे अवल स्कंध, किंतु बिगाड़ ना दे ये सांसें तेरा बना प्रबंध। मेरे फूल रहो तुम फूले, तुम्हें झुलाता रहे समीरन, झोंके देकर झूले। तुम उदार दानी हो, घर की दशा सहज ही भूले। क्षमा कभी यह उष्ण पाण भी भूल तुम्हें यदि छूले। प्रकट कर गई धन्य रस राग तू, पौ फट कर भी निरुपाय। भरे हैं अपने भीतर आग तू, री छाती फटी नहाए। यह प्रभात या रात है घोर तिमिर के साथ, नाथ कहाँ हो हाय।

के रस तूने यदि मुझसे मुँह मोड़ा तो कह किस तृष्णा के माथे वह अपना घट फोड़ा। मेरी नयन मालिके माना तूने बंधन तोड़ा पर तेरा मोती न बने हा प्रिय के पथ का रोड़ा। अब क्या रखा है रोने में इंदुकले दिन काट शून्य के किसी एक कोने में किसने हाय भरा घर लूटा अर्णव सा दर्पण भी छूटा खोना ही खोने में अब क्या रखा है रोने में सृष्टि किंतु सो

अब क्या रखा है रोने में, बेला फिर भी तुझे भरेगी, संचय करके व्यय न करेगी, अमृत पिए है तू न मरेगी, सब होगा होने में, अब क्या रखा है रोने में।

0: क्या रखा है रोने में।
1: यशोधरा का मानना है कि रोने से दुख और बढ़ता है। जब आपत्ति के समय प्राणी धैर्यपूर्वक प्रयत्न करता हुआ विपत्ति को पार कर लेता है, तब वो गौरव का भागी बनता है।
0: अभी आपने सुना राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ यशोधरा का वाचन। आज के भाग में आपने सुना राहुल जननी की मनः स्थिति। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य कुंचन। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनांकन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और कलाकार थे विकास अवस्थी, मनीषा चतुर्वेदी, वर्षा सिंह और वत्सला चौबे। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रजा मुराद और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक। और श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे डॉक्टर जयंत नार्लिकर जी के बारे में। भारत के महान खगोल भौतिक विज्ञानी डॉक्टर जयंत नार्लिकर का जन्म महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक उच्च शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार में 19 जुलाई 1938 को हुआ था। उनके पिता प्रोफेसर विष्णु वासुदेव नार्लिकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गणित के विभागाध्यक्ष थे। इसके बाद वे राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने। डॉक्टर जयंत नार्लिकर की शिक्षा वाराणसी में हुई। उनकी माता तत्कालीन बंबई विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातक थीं। इसके अलावा अंग्रेजी साहित्य से भी उनका लगाव था। वे बहुत शालीन, सुसंस्कृत और शिक्षित महिला थीं।
2: श्रोताओं, युवा डॉक्टर नार्लिकर असाधारण प्रतिभा के धनी थे। स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं में वे हमेशा प्रथम रहते थे। गणित उनका प्रिय विषय था। इसके अलावा किताबें पढ़ने का उन्हें बहुत शौक था। सन 1959 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। वे विश्वविद्यालय में प्रथम आए। उनके विषय गणित और खगोल भौतिक थे।
1: उनके पिताजी उन्हें उच्च अध्ययन के लिए विदेश भेजना चाहते थे। इंग्लैंड से पढ़कर लौटे लोगों ने उन्हें आगाह करते हुए आत्मसंतुष्ट न होने की सलाह दी थी। उन लोगों के अनुसार इंग्लैंड का जीवन बड़ा ही कठिन था, परंतु कठिन परिश्रम के बल पर डॉक्टर नार्लिकर पूरी तरह सफल रहे। उनके पिता से और विशेष रूप से उनके मामा डॉक्टर वसंत राव हुजूर बाजार से मिले परामर्श से उनका काम आसान हो गया।
2: उनके माता पिता के अलावा उनके शिक्षक और उन्हें सलाह देने वाले फ्रेड हॉयल का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। और इसके अतिरिक्त स्नातक स्तर पर उनके असाधारण परिणाम ने उनको छात्रवृत्ति भी दिलवाई। उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। वहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लिया। यहां उन्होंने केवल 2 वर्ष में एमएससी की डिग्री प्राप्त कर ली।
1: संयोग से खगोल भौतिकी के विश्वविख्यात अध्यापक उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे। उनका नाम था फ्रेडरिक होयल। लोग उन्हें फ्रेड होयल भी कहते थे। होयल किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रोफेसर थे और खपिंडो यानी सेलेशियल बॉडीज की गति और स्थिति पर अनुसंधान करा रहे थे। डॉक्टर नार्लिकर ने फ्रेडरिक होयल के मार्गदर्शन में पीएचडी करने के लिए पंजीकरण कराया और अनुसंधान कार्य शुरू कर दिया। होयल ने भी डॉक्टर नार्लिकर को पूरे दिल से स्वीकार कर लिया था। सन 1963 में डॉक्टर नार्लिकर को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई। वे कैम्ब्रिज में सन 1957 से 1962 तक रहे।
2: श्रोताओं, डॉक्टर नार्लिकर ने 15 वर्ष तक विदेश में रहने के दौरान अनेक महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य किए। 22 वर्ष की आयु में वे रॉयल एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी के सदस्य हो गए। उन्हें किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज का फेलो भी नियुक्त किया गया। उनके पिता भी इस संस्थान के सदस्य थे। उनकी पीएचडी के शोध प्रबंधन में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों और अलग अलग खपिंडों के बीच गुरुत्वीय आकर्षण और दबाव, सृष्टि के निर्माण और अन्य दूसरे विषयों के बारे में अनुसंधान शामिल थे। उन्होंने लोकप्रिय बिग बैंग सिद्धांत के विषय में भी विचार दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। अनेक सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार नहीं हो रहा है, बल्कि वह स्थिर है। उन्होंने इसे स्थिर स्थिति यानी स्टेडी स्टेट कहा। इस सिद्धांत ने इस विषय पर नया प्रकाश डाला।
1: फ्रेड होयल के साथ उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सादृश्य सिद्धांत यानी कन्फॉर्मल थ्योरी ऑफ ग्रेविटी प्रस्तुत किया। उनके द्वारा प्रस्तुत यह सिद्धांत पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। डॉक्टर नार्लिकर और फ्रेड होयल ने ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर कार्य किया, जिसमें स्थिर स्थिति सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और विद्युत गति यानी इलेक्ट्रोडायनामिक्स शामिल थे। उन दोनों ने ये मत प्रतिपादित किया कि अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में विद्यमान अन्य शक्तियों के बल का पदार्थ के द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा वो पदार्थ की आकृति और आकार को भी प्रभावित करता है।
2: श्रोताओं, अंतरिक्ष के पदार्थों के गुरुत्वाकर्षण संबंधी अनेक अनुसंधानों को असाधारण माना जाता है। यूरोप में उन्हें अनेक संस्थानों से पुरस्कार और पदक मिले। सन 1969 में केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने डॉक्टर नार्लिकर और प्रोफेसर फ्रेड होयल को भारत आकर के भाषण देने के लिए आमंत्रित किया।
1: सन 1968 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उन्हें एडम अवार्ड से सम्मानित किया। इससे पहले ये प्रतिष्ठित अवार्ड 3 भारतीय वैज्ञानिकों को प्रदान किया जा चुका था। ये अवार्ड सन 1944 में डॉक्टर होमी भाभा को, सन 1948 में डॉक्टर एस चंद्रशेखर को और 1961 में डॉक्टर हुजूर बजरा को प्रदान किया गया था।
2: श्रोताओं, यह अवार्ड गणित, खगोल, भौतिकी और प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्रों में असाधारण अनुसंधान के लिए हर 2 वर्ष में डॉक्टर जेसी एडम की स्मृति में प्रदान किया जाता है। एडम एक असाधारण खगोल वैज्ञानिक यानी एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने सन 1864 में नेपच्यून ग्रह के विद्यमान होने की भविष्यवाणी की थी।
1: डॉक्टर नार्लिकर का विवाह सन 1966 में मंगला सदाशिव राजवाड़े के साथ हुआ। 1969 में जब वे भारत वापस आए तब भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने उन्हें खगोल भौतिकी यानी एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर के पद का कार्यभार संभालने के लिए आमंत्रित किया।
2: डॉक्टर नार्लिकर ने भी अपने देश में अपनी सेवाएं प्रदान करने का निर्णय कर लिया था। सन 1972 में उन्होंने प्रोफेसर के रूप में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR में कार्यभार संभाल लिया। अनुसंधान और शिक्षण के अलावा वे डॉक्टरेट के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी करते थे। यहां उन्होंने टेकियॉन पर अनुसंधान जारी रखा। टेकियॉन ऐसे कण हैं जो प्रकाश की गति से भी अधिक तेज गति से चलते हैं। डॉक्टर नार्लिकर के मतानुसार कृष्ण वीवर यानी ब्लैक होल टेकियॉन कणों के आधार पर होते हैं। वे बाहर से आने वाले प्रकाश को अवशोषित करते हैं और समाविष्ट कर लेते हैं और अत्यधिक दबाव के साथ ब्लैक होल की सतह को संकुचित कर देते हैं।
1: भारत आने के बाद डॉक्टर नार्लिकर ने एक और कार्य किया, लोगों में विज्ञान और विशेष रूप से खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने के लिए डॉक्टर नार्लिकर ने अपनी मातृभाषा मराठी में आकाशाशी जड़ले नाते यानी आकाश से जुड़ा नाता नामक एक पुस्तक लिखी। इसके अलावा उन्होंने विज्ञान से संबंधित कहानियां भी लिखी। उनकी पुस्तकों का अनुवाद हिंदी और गुजराती भाषाओं में भी किया गया है। डॉक्टर नार्लिकर कुशल विज्ञान कथा लेखक हैं।
2: श्रोताओं, सितंबर 1988 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें खगोल विज्ञान और नाभिकीय भौतिकी अंतर विश्वविद्यालय केंद्र यानी एस्ट्रोनॉमी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता से यह केंद्र बना। डॉक्टर नार्लिकर इसके प्रथम निदेशक बने और उन्होंने होमी भाभा प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। सन 1988 में अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में खगोल विज्ञान से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी उन्होंने भाग लिया।
1: 10 जनवरी 1989 को राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने डॉक्टर नार्लिकर को सन 1988 का वेणु बापू मेमोरियल अवार्ड प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। इस पुरस्कार में 25,000 रुपए नकद और 1 पदक प्रदान किया जाता है। सन 1990 में उन्हें भारतीय विज्ञान अकादमी का इंदिरा गांधी पुरस्कार और सन 1996 में यूनेस्को का कलिंग पुरस्कार प्रदान किया गया।
2: 12 मार्च 2003 को उन्हें यशवंत राव चौहान राष्ट्रीय पुरस्कार 2002 प्रदान किया गया। तो श्रोताओं, ये था जीवन परिचय डॉक्टर नार्लिकर का। अब हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पुलोरन और मैनहट्टन जायफल के लिए हुआ इतिहास का सबसे बड़ा सौदा। क्या आप जानते हैं कि इतिहास का सबसे प्रसिद्ध रियल एस्टेट सौदा मैनहट्टन की खरीद वास्तव में इंडोनेशिया के एक छोटे और सुदूर द्वीप पुलोरन से जुड़ा था। आज भले ही मैनहट्टन गगनचुंबी इमारतों का एक वैश्विक जंगल है, लेकिन 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ये केवल एक दलदली बस्ती हुआ करती थी, जिसमें कोई मसाले का उत्पादन भी नहीं होता था। नक्शे पर पुलोरन को खोजने के लिए आपको कमरे के आकार के कागज की जरूरत होगी। ये केवल 2 मील लंबा और आधा मील चौड़ा है। इसके चारों ओर घूमने में मात्र 1 घंटा लगता है और यहाँ ताजे पानी का कोई स्रोत नहीं है। फिर भी ये द्वीप मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस का घर था, जिसे आमतौर पर जायफल के पेड़ के रूप में जाना जाता है। 1603 में जायफल और उसकी बाहरी झिल्ली जावित्री वनस्पति जगत की कीमती वस्तुएं थीं, जिनका उपयोग मांस को सुरक्षित रखने और महंगे स्वास्थ्यवर्धक भोजन के रूप में किया जाता था। क्या आप जानते हैं कि बांदा में 10 पाउंड जायफल की कीमत आधे पैसे से भी कम थी, लेकिन यूरोप में इसे 32,000% के चौंका देने वाले मुनाफे पर बेचा गया। जायफल का लालच इतना अधिक था कि राजा जेम्स प्रथम ने अंततः खुद को इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, फ्रांस, पुलोवे और पुलोरन का राजा घोषित कर दिया था। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए पुलोरन का महत्व जायफल की एक पौध में निहित था। 1616 में यहाँ के द्वीपवासी, जो कि ओरांग काया नामक प्रधानों द्वारा शासित स्वशासी गणराज्य थे, उन्होंने डच उत्पीड़न से बचने के लिए अंग्रेजों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। उन्होंने अंग्रेजों को पुलोरन की पीली मिट्टी में लगा हुआ जायफल का एक पौधा भेंट किया। ये विश्वास का एक बड़ा कार्य था, क्योंकि बांदावासी अपने एकाधिकार की रक्षा के लिए इन पौधों की कड़ी निगरानी करते थे। क्या आप जानते हैं कि इस नन्ही सी पौध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना स्वरूप बदलने पर मजबूर कर दिया? चूंकि उस समय कंपनी को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था, इसलिए उसने क्राउन की ओर से द्वीप को स्वीकार किया। इसके बाद ओलिवर क्रॉमवेल ने एक नया चार्टर जारी किया, जिसने कंपनी को विदेशी क्षेत्रों में किलेबंदी करने और बसने की अनुमति दी। हालांकि डचों के खिलाफ पुलोरन पर कब्जा बनाए रखना एक तनावपूर्ण और महंगा दायित्व था, जिसमें 4 साल की लंबी नाकेबंदी शामिल थी। इन मसालों के द्वीपों को लेकर अंग्रेजों और डचों के बीच प्रतिद्वंद्विता इतनी तीव्र थी कि डचों के अलावा किसी और के साथ व्यापार करना देशद्रोह माना जाता था। अंततः 1667 में 60 वर्षों के दबाव के बाद ब्रिटिश क्राउन ने हिसाब बराबर करने का फैसला किया। ब्रेडा की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने पुलोरन के सभी अधिकार डचों को सौंप दिए। बदले में उन्हें उत्तरी अमेरिकी समुद्र तट पर न्यू एम्स्टर्डम नामक एक बस्ती मिली, जिसका नाम उन्होंने तुरंत बदलकर न्यूयॉर्क रख दिया। उस समय डचों को लगा होगा कि उन्होंने अंग्रेजों को ठग लिया है। दुनिया के सबसे मूल्यवान मसाले पर एकाधिकार के बदले मैनहट्टन जैसा बिना मसालों वाला द्वीप देकर। क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया के इस छोटे से द्वीप के बिना बिग एप्पल का इतिहास डच भाषा में लिखा गया होता? भले ही बाद में पुलोरन उपेक्षित हो गया और इसके पेड़ काट दिए गए, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के जन्म में मैनहट्टन की तुलना में पुलोरन के इस छोटे से जायफल की भूमिका कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। इंडोनेशिया के उस छोटे से पौधे के बिना आज न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों पर शायद अभी भी डच झंडा फहरा रहा होता। ये एक याद दिलाता है कि ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा इंडिया से अधिक ईस्ट के बारे में थी।

0: रॉल्फ कॉर्टराइट का अनैतिक व्यवहार और ढहता हुआ व्यापारिक साम्राज्य 1633। क्या आप जानते हैं कि 1633 में रॉल्फ कॉर्टराइट नामक एक अंग्रेजी व्यापारी मसूलीपट्टनम से एक ऐसे मिशन पर निकला था जो बंगाल और उड़ीसा की उपजाऊ भूमि में ईस्ट इंडिया कंपनी का भाग्य निर्धारित करने वाला था। जहां इतिहास इस यात्रा को इसके व्यावसायिक महत्व के लिए याद रखता है, वहीं डच अभिलेखागार में इस घटना का एक कहीं अधिक अपमानजनक संस्करण सुरक्षित है, जिसे एमोरस मिस एडवेंचर अर्थात प्रेमपूर्ण दुस्साहस के रूप में जाना जाता है। कॉर्टराइट का गंतव्य कटक में उड़ीसा के नवाब का दरबार था। आगरा के मुगल शाही केंद्र की कठोर और पूर्व निर्धारित औपचारिकताओं के विपरीत यह प्रांतीय कूटनीति की दुनिया थी। कटक के भव्य महल में कॉर्टराइट ने खुद को एक बेहद आत्मीय माहौल में पाया, जहां वो नवाब से कुछ ही फिट की दूरी पर दरबार के फर्श पर पालथी मारकर बैठा था। व्यापारिक अधिकार सुरक्षित करने के लिए कॉर्टराइट ने आवश्यक रस्में निभाईं। उसने नवाब के पैर चूमे और उपहारों का एक मामूली संग्रह भेंट किया, जिसमें लौंग, जायफल, एक सुनहरा दर्पण और एक दोनाली पिस्तौल शामिल थी। ये मिशन एक बड़ी जीत जैसा लगा। नवाब कॉर्टराइट से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसे खिलअत यानी सम्मान की पोशाक पहनाई, जिसने प्रतीकात्मक रूप से अंग्रेज को नवाब के सामने सेवा और वफादारी के नेटवर्क में शामिल कर लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कॉर्टराइट एक परवाना हासिल करने में सफल रहा, जिसने अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार करने और हरिहरपुर के बंदरगाह में एक फैक्ट्री बनाने का अधिकार दे दिया। हालांकि बटाविया कैसल में डच द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी के अनुसार ये सफलता कॉर्टराइट के निजी आचरण के कारण नाटकीय रूप से बर्बाद हो गई। जैसे ही हरिहरपुर में अंग्रेजी लॉज का निर्माण पूरा होने वाला था, नवाब ने अचानक पूरी संरचना को नष्ट करने और गिरा देने का आदेश दे दिया। बंगाल की खाड़ी के बंदरगाहों में ये फुसफुसाहट थी कि कॉर्टराइट को फैक्ट्री में अनैतिक व्यवहार के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसका परिणाम त्वरित और गंभीर था। कॉर्टराइट को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और 1,000 रुपए का जुर्माना भरने के बाद ही उसे अपनी आजादी वापस मिली। जहां अंग्रेजी कंपनी के रिकॉर्ड इस विशिष्ट शर्मिंदगी के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं डच प्रशासकों ने इस कहानी को पूरी तरह से विश्वसनीय माना। कॉर्टराइट की यह घटना 17वीं सदी की कंपनी राज्य की एक बुनियादी सच्चाई को दर्शाती है। वैश्विक वाणिज्य अंतर वैयक्तिक संबंधों की नाजुक नींव पर टिका था। प्रांतीय कूटनीति की उस दुनिया में जहां एक व्यापारी की सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी पूंजी जितनी ही महत्वपूर्ण थी, एक अनैतिक व्यवहार एक उभरते व्यापारिक साम्राज्य को घुटनों पर ला सकती थी।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अब तक आपको हमने बताया कि स्वामी जी अमेरिका से पेरिस होकर लंदन गए थे। लंदन में भी अमेरिका की तरह उनका भव्य स्वागत हुआ। लगभग एक महीने की अवधि में ही उन्होंने लंदन में यथेष्ट ख्याति प्राप्त कर ली थी। इसी समय एक भाषण सभा में कुमारी मार्गरेट नोबल यानी भगिनी निवेदिता से स्वामी जी का परिचय हुआ। ये असाधारण विदुषी महिला एक स्कूल में अध्यापिका थीं और विद्वान समाज में उनकी बहुत ख्याति व प्रतिष्ठा थी। कुमारी नोबल स्वामी जी के प्रति श्रद्धा रखते हुए भी सहसा उनकी शिष्या नहीं बनी थीं। प्रतिदिन वे स्वामी जी के भाषण व प्रश्नोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से आती थीं और चुपचाप इस अद्भुत सन्यासी को देखा करती थीं। अंत में उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण करने का संकल्प लिया।
1: स्वामी जी ने अमेरिका की तरह इंग्लैंड में भी प्रचार कार्य में यथेष्ट सफलता प्राप्त की। इंग्लैंड छोड़कर पुनः अमेरिका जाने के पूर्व उन्होंने अपनी एक शिष्या को लिखा था,
2: इंग्लैंड में मेरे प्रचार कार्य को आशातीत प्रतिष्ठा प्राप्त हुई और ये सुनकर कि अगले सप्ताह मैं फिर अमेरिका जाऊंगा, कई व्यक्ति बड़े दुखी हुए। कई लोग तो इस प्रकार की आशंका प्रकट कर रही हैं कि मेरे चले जाते ही जो कार्य हुआ है उसका परिणाम अनेकांश में नष्ट हो जाएगा, परंतु मैं ऐसा नहीं समझता। मैं मनुष्य या किसी चीज पर निर्भर नहीं रहता, प्रभु ही मेरी एकमात्र शरण है। वे ही मुझे यंत्र बनाकर कर्म करा रहे हैं।
1: 18 जनवरी सन 1896 को इंडियन मिरर नामक पत्रिका ने स्वामी जी के प्रचार कार्य के संबंध में लिखा था,
3: हमें ये लिखते हुए बड़ा आनंद होता है कि स्वामी विवेकानंद ने लंदन के अनेक विशिष्ट भद्र पुरुषों व महिलाओं की दृष्टि आकर्षित की है। उनकी हिंदू दर्शन व योग संबंधी कक्षाओं में अनेक उत्साही व श्रद्धा युक्त श्रोतागण उपस्थित होते हैं।
1: दूसरे पत्रकार ने लिखा,
4: लंदन नगर की कुछ ऐश्वर्यशालिनी विलासिनी उच्च घरानों की महिलाएं कुर्सियों के अभाव में फर्श पर पैर मोड़कर बैठ गुरु भक्त भारतीय शिष्यों की तरह भक्ति के साथ स्वामी जी के उपदेश सुन रही हैं। ये वास्तव में ही विरल दृश्य है।
1: तीसरे पत्रकार ने लिखा,
5: कैथरस विल्बरफोर्स हैस आदि विशिष्ट धर्म प्रचारकों ने भी उन्हें बड़े सम्मान के साथ ग्रहण किया है। प्रथमोक्त महोदय के निवास स्थान पर स्वामी जी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए एक पारिवारिक सभा बुलाई गई थी, जिसमें लंदन के अनेक प्रतिष्ठित भद्र महोदय व महिलाएं उपस्थित थीं। स्वामी जी ने अंग्रेजी भाषी जनता के दिल में भारतवर्ष के प्रति जिस प्रेम व सहानुभूति को जागृत किया है, वो अवश्य ही भारतवर्ष की उन्नति की सहायक शक्तियों में शीर्ष स्थान प्राप्त करेगी।
0: लंदन में रहते समय कई बार उन्हें आलोचना भी सुननी पड़ती थी, परंतु अगर कोई भारत की निंदा करता तो वे सहन नहीं करते थे। एक दिन सभा के बीच में स्वामी जी भारत के गौरव का वर्णन कर रहे थे। इसी समय एक समालोचक ने प्रश्न किया,
6: भारत के हिंदुओं ने क्या किया है? वे आज तक किसी जाति पर विजय प्राप्त नहीं कर सके।
2: नहीं कर सके नहीं, कहिए कि उन्होंने की नहीं। और यही हिंदू जाति का गौरव है कि उसने कभी दूसरी जाति के रक्त से पृथ्वी को रंजित नहीं किया। वे दूसरों के देश पर अधिकार क्यों करेंगे तुच्छ धन की लालसा से? भगवान ने हमेशा से भारत को दाता के महिमामय आसन पर प्रतिष्ठित किया है। भारतवंशी जगत के धर्म गुरु रहे हैं। वे दूसरे के धन को लूटने वाले रक्त पिपासु दस्यु न थे। इसलिए मैं अपने पूर्वजों के गौरव से गर्व का अनुभव करता हूं।

0: जगत अभी उन्हें पहचान नहीं सका है, उनके प्रचारित धर्म को भली भांति समझ नहीं सका है। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि जाओ तुम अपना सब कुछ बांट दो और उसके बाद आओ मेरा अनुसरण करो। तुम्हारे देश के कितने विलासी लोग ईसा की ये उक्ति कि धनी व्यक्ति के स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने की तुलना में ऊंट को सुई के छेद से निकलना अधिक सरल है को सत्य मानकर सर्वत्यागी हुए हैं।
1: आलोचक चुप हो जाते। जब स्वामी जी इंग्लैंड में अपने प्रचार कार्य में व्यस्त थे तभी उनके पास अमेरिका से भक्तों तथा शिष्यों के बार बार लौटने के लिए अनुरोध पत्र आने लगे। इधर उनके मित्र और शिष्यगण लंदन में ही रह जाने के लिए उनसे अनुरोध करने लगे। अतः ग्रीष्म काल में फिर लंदन लौट आने का आश्वासन देकर उन्होंने अमेरिका जाना ही उचित समझा। इसी बीच बोस्टन की एक धनी महिला ने स्वामी जी के प्रचार कार्य का सारा व्यय उठाने का वचन देकर उन्हें एक पत्र लिखा जिससे स्वामी जी अमेरिका जाने के लिए तैयार हुए।
2: इंग्लैंड की शिष्य मंडली को एक समिति का रूप देकर उन्हें गीता तथा दूसरे हिंदू शास्त्रों की नियमित चर्चा करने का उपदेश देकर स्वामी जी अमेरिका के लिए रवाना हो गए।
1: स्वामी जी की अनुपस्थिति में अमेरिका में स्वामी कृपानंद, अभयानंद तथा भगिनी हरिदासी यानी कुमारी वाल्डो ने उत्साह से प्रचार कार्य चलाया था। न्यूयॉर्क के अलावा बफेलो और डिट्रॉयट नगर में दो प्रचार केंद्र की स्थापना हुई थी। 6 दिसंबर को स्वामी जी लंदन से न्यूयॉर्क आए। बोस्टन के भक्त महिला की सहायता से 29 नंबर स्ट्रीट में दो बड़े कमरे किराए पर लिए गए। स्वामी जी कृपानंद के साथ वहां रहते थे। दोनों कमरों में 150 छात्रों के बैठने की व्यवस्था थी। यहां पर दिए गए व्याख्यानों का संकलन कर कर्म योग नामक भाषणों की पुस्तक प्रकाशित हुई।
2: शिष्य गणों ने उनके भाषणों को लिपिबद्ध करने के अथक प्रयास किए, फिर इंग्लैंड के जे गुडविन न्यूयॉर्क आए और ये दायित्व अपने कंधों पर लिया। वे स्वामी जी के साथ परछाई की भांति जुड़े रहे, हर जगह जाते रहे और भाषणों को लिपिबद्ध किया। बाद में उन्होंने शिष्यत्व भी ले लिया था। राजयोग पुस्तक के अलावा और सभी भाषणों के संकलन गुडविन महोदय के परिश्रम का फल है।
1: अमेरिका के प्रसिद्ध वक्ता श्री रॉबर्ट इंग्रसोल जैसे स्वतंत्र विचार वाले व्यक्ति भी स्वामी जी के अभिन्न मित्र बन गए थे, परंतु पहले उन दोनों में काफी मतभेद थे। फिर यह मित्रता कैसे हुई तो सुनिए। दर्शन व साहित्य में प्रवीण होते हुए भी श्री इंग्रसोल संदेहवादी व भोगवादी थे। धर्म, ईश्वर, उपासना आदि विषयों का वे सदैव ही उपहास करते थे, परंतु वे इतने लोकप्रिय वक्ता थे कि एकमात्र भाषण देकर ही लाखों रुपए कमा लेते थे। उधर दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद कठोर सन्यासी, प्रत्येक धर्म के समर्थक, वेदांत दर्शन के प्रचारक थे। इन दोनों में मेल मिलाप वास्तव में आश्चर्यजनक था।
2: स्वामी जी के स्पष्ट, सरल परंतु स्नेहपूर्ण भावों ने ही इंग्रसोल के दृढ़ हृदय पर विजय प्राप्त कर ली थी। मतों की विभिन्नता होते हुए भी उस समय के अमेरिका के दो प्रसिद्ध वक्ताओं की मित्रता का ये दृश्य वास्तव में बड़ा मधुर था।

0: न्यूयॉर्क आकर रंग भेद के कारण उपयुक्त मोहल्ले में उचित मकान या परिवेश नहीं मिला था। एक दो दिन बाद उन्होंने कुमारी वाल्डो से कहा,
1: यहाँ का खाना बड़ा गंदा दीख पड़ता है, क्या तुम मेरे लिए पका सकोगी?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी मकान मालकिन से मिलकर रसोई में खाना पकाने की अनुमति लेकर आती हूँ।
1: और बर्तन भांडे?
2: आप चिंता ना करें, वो सब मैं घर से ले आऊंगी।
1: तुम्हारा घर क्या पास ही है?
2: नहीं स्वामी जी, पास तो नहीं है, वो ब्रुकलिन के दूसरी छोर पर है। पर आप चिंता ना करें, मैं सुबह 8 बजे तैयार होकर यहाँ 10 बजे तक आ जाऊंगी और आपका खाना समय पर दे दिया करूंगी।
1: तुम अकेले ही तकलीफ क्यों करोगी? सप्ताह के अंत में 2 दिन मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, वहीं दोनों मिलकर खाना पका लेंगे, ठीक है?
0: कुमारी वाल्डो के साधारण से घर की शांति और स्वतंत्रता के बीच स्वामी जी को बड़ा आराम मिलता था। वे वहाँ नए नए प्रकार के भारतीय तथा पाश्चात्य व्यंजन बनाया करते, बहुत खुश नजर आते थे वहाँ। कुमारी वाल्डो ने संस्मरण में लिखा है,
2: इतने घनिष्ठ मेल जोल के बावजूद मेरे मन में एक बार भी संसार त्याग करने की बात नहीं उठी। यही बड़े आश्चर्य की बात है। उनके साथ भारत जाने के बारे में भी मैंने कभी गंभीरता से नहीं सोचा। मुझे लगता कि मेरा स्थान अमेरिका ही है, तथापि ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं उनके लिए नहीं कर पाती। जब वे पहले बार न्यूयॉर्क में आए तब वे सर्वत्र ही अपने नारंगी रंग के वस्त्र पहने रहना चाहते थे। ब्रॉडवे पर ऐसे अग्नि के समान भड़कीले कोट पहनकर चलने के लिए बड़े साहस की जरूरत पड़ती थी। स्वामी जी जब किसी की भी परवाह किए बिना राजोचित मुद्रा में लंबे लंबे डग भरते मेरे आगे चलते और मैं हाफते हुए उनके साथ चलने का प्रयास करती, उस समय सभी लोगों का ध्यान हमारी ओर खिंच जाता और हर व्यक्ति पूछता, कौन है ये लोग? बाद में मैंने उन्हें समझा बुझाकर और भी हल्के रंग का कोट उपयोग करने को राजी कर लिया था।
3: एक दिन स्वामी जी ने वाल्डो की आंखों में आंसू देखकर पूछा,
1: क्या बात है एलन, कुछ हुआ है क्या?
2: क्योंकि जब दूसरे लोग आपको नाराज कर देते हैं तो आप आकर मुझे ही डांटते हैं।
1: देखो, मैं उन लोगों को ठीक से जानता नहीं कि उन्हें डांट सकूं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आता हूं। यदि अपने लोगों को भी ना डांट सकूं तो फिर डांटने के लिए और किसके पास जाऊंगा? चलो आंसू पोंछ डालो, अब तुम्हें नहीं डांटूंगा।
3: वाल्डो के आंसू सूख गए। इसके बाद से वे डांट फटकार का इंतजार करती थीं, क्योंकि वे समझ गई थीं कि यही स्वामी जी की आत्मीयता का द्योतक है। इसी तरह की एक घटना के बारे में रोमा रोला महोदय ने भी लिखा है। वो घटना भी कुमारी वाल्डो से ही संबंधित है। उन्होंने लिखा,
4: धर्माचार्यों के बारे में कुमारी वाल्डो को काफी अनुभव था। अपने दीर्घकालीन ज्ञानान्वेषण के दौरान उन्होंने अनेक शिक्षकों के चरण तले आश्रय लिया था, परंतु 2-4 दिन पहले या बाद में देखती कि सभी के स्वभाव में दोष है। अतः उन्हें सदा भय लगा रहता था कि कहीं इन हिंदू सन्यासी के स्वभाव में भी वैसा ही कोई दोष ना दिख जाए। ऐसे दोषों के लक्षण देखने के लिए वे बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि रखती थी और वे लक्षण उनकी निगाह में आ भी गए। उस दिन स्वामी जी तथा वे न्यूयॉर्क के एक बैठक खाने में उपस्थित थे। आज के न्यूयॉर्क के साथ स्वामी जी के काल के न्यूयॉर्क का कोई साम्य न था। उन दिनों वहां सड़क के दोनों ओर बादामी रंग के पत्थरों से निर्मित एक ही प्रकार के मकानों की कतारें थी। मकानों के रूप रंग में इतनी समानता थी कि एक बार एक प्रसिद्ध चित्रकार ने प्रश्न किया, आप लोग कैसे समझ पाते हैं कि हम अपने ही घर में आए हैं? गलती से पड़ोसी के घर में भी तो प्रविष्ट हो जाने की संभावना है। इनमें से प्रत्येक संकरे परंतु लंबे मकान की दूसरी मंजिल पर एक लंबा और संकरा बैठक खाना होता था। इसके एक ओर ऊंचा मुड़ने वाला दरवाजा, दूसरे छोर पर 2 बड़ी खिड़कियां और दोनों के बीच में फर्श से छत तक पहुंचता हुआ एक बड़ा दर्पण लगा रहता था। इस दर्पण की ओर स्वामी जी का आकर्षण दिख पड़ा। वे बारंबार उसके सामने खड़े होकर बड़े ध्यानपूर्वक अपने को देखने लगे और बीच बीच में विचारों में डूबे चहलकदमी करते रहे। कुमारी वाल्डो की आंखें भी उनका अनुसरण कर रही थी। वे सोच रही थी अब इनका भांडा फूटने ही वाला है, ये अपने व्यक्तित्व के मद में चूर दिखते हैं। स्वामी जी सहसा उनकी ओर मुड़े और कहने लगे, एलेन ये बहुत ही विचित्र बात है कि मैं याद ही नहीं रख पाता कि मैं कैसा दिखता हूं। मैं बारंबार दर्पण में अपने को देखता हूं, परंतु वहां से मुड़ते ही याद नहीं रह जाता कि मैं कैसा दिखता हूं।
0: रोमारोला साहब ने और कई घटनाओं का उल्लेख किया है, आइए उन घटनाओं के बारे में उन्हीं के मुख से सुने।
4: स्वामी जी की प्रथम अमेरिकी यात्रा के दौरान ही उनकी राजयोग पुस्तक तैयार हुई थी। इसका अधिकांश भाग उनके मुख से सुनकर कुमारी वाल्डो ने लिपिबद्ध किया था। उन्होंने इसे संकेत लिपि में नहीं अपितु सामान्य लिपि में ही लिखा था। इस कार्य में बीते आनंद पूर्ण समय की बातें उनके लिए विशेष रूप से स्मरणीय थी। वे प्रायः ही उस पर चर्चा किया करते। प्रतिदिन स्वामी जी का भोजन पक जाने तथा रसोई घर का कार्य समाप्त हो जाने पर वे मकान के पिछले हिस्से में स्थित स्वामी जी के कमरे में आते और मेज पर रखी दवात में कलम डुबाकर प्रतीक्षा में बैठी रहती। तब से लेकर उस दिन की कार्यावली समाप्त होने तक उनकी कलम की निब भीगी ही रहती थी, ताकि वे स्वामी जी के मुख से बीच बीच में निकल पड़ने वाली वाक्य धारा को पकड़ सके। कभी कभी किसी सूत्र के किसी संस्कृत शब्द का अंग्रेजी पर्याय सोचते हुए वे 15 से 20 मिनट तक एकाग्रता पूर्वक मौन बैठी रहती, परंतु कलम को सूखने नहीं दिया जाता था, क्योंकि किसी भी क्षण बोलने का प्रभाव प्रारंभ हो जाने की संभावना बनी रहती। पांडुलिपि तैयार हो जाने पर उसके मुद्रण का उत्तरदायित्व कुमारी वाल्डो को सौंप दिया गया, परंतु पुस्तक निकलने के पूर्व उन्हें बड़े कष्ट तथा मर्मांतिक पीड़ा का अनुभव करना पड़ा था। स्वामी जी के एक अन्य विशिष्ट अनुरागी ने पांडुलिपि को उनसे देखने के लिए लिया और उसे लंदन में ले जाकर प्रकाशित कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इसके लंदन में प्रकाशित हो जाने से स्वामी जी के कार्य में सुविधा होगी, परंतु इसके फलस्वरूप अमेरिकी संस्करण निकलना संभव न हो सका। अप्रचलित शब्दों की तालिका तथा कुछ अन्य सामग्री जोड़ने के बाद ही उसे प्रकाशित किया जा सका।

0: स्वामी जी ने स्टर्डी महोदय को फरवरी 1896 ईस्वी में जो पत्र लिखा था उससे भी उनकी न्यूयॉर्क के उन दिनों की कार्यप्रणाली के बारे में अच्छी धारणा हो जाती है। उन्होंने लिखा था,
1: यहाँ प्रति सप्ताह मेरी 6 कक्षाएं चलती हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रश्नोत्तर कक्षा भी है। श्रोताओं की संख्या 70 से 120 तक होती है। साथ ही प्रति रविवार को मैं एक सार्वजनिक भाषण भी देता हूँ। पिछले माह जिस सभागार में मेरे व्याख्यान हुए उसमें 600 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, परंतु प्रायः आते थे 900 लोग। कुछ तो खड़े रहकर सुनते थे और कुछ को स्थानाभाव के कारण वापस लौट जाना पड़ता था। अतः इस सप्ताह मैंने एक बड़ा सभागार ठीक किया है जिसमें 1200 लोग बैठ सकेंगे। इन व्याख्यानों में प्रवेश पाने के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं मांगा जाता, परंतु सभा के समय जो चंदा एकत्र होता है उससे मकान का किराया चुक जाता है। इस सप्ताह संवाद पत्रों की दृष्टि भी मुझ पर पड़ी है और इस वर्ष मैंने न्यूयॉर्क में काफी हलचल मचा रखी है। भय होता है कि निरंतर कार्य के बोझ से मेरा स्वास्थ्य चौपट हो जाएगा। मैंने भक्ति पर लेख लिखना आरंभ कर दिया है। यहां के कुछ मित्र मेरे रविवार के भाषणों को छाप रहे हैं। पहले की कुछ प्रतियां मैंने तुम्हें भेजी हैं। अगली डाक से परवर्ती 2 व्याख्यानों की कुछ प्रतियां तुम्हें भेजूंगा।
2: इस तरह हम देखते हैं कि अमेरिका में स्वामी जी प्रदत्त भाषण संरक्षित हो गए। इसका श्रेय श्री गुडविन और कुमारी वाल्डो को जाता है। दोनों ने दिन रात जुटकर स्वामी जी के श्रीमुख से निकले एक एक शब्द को सहेज कर रखा। हम उन दोनों के प्रति आभारी हैं, क्योंकि उन दोनों के परिश्रम के फलस्वरूप आज हमें स्वामी जी का साहित्य पढ़ने के लिए उपलब्ध है।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें। ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
1: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
0: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्ते, मैं हूँ रानी मुखर्जी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए 90.8 MHz पर।
1: अभी आपने सुने हमारी सुबह की सभा के कार्यक्रम। दोपहर की सभा में भी आपका स्वागत है, बने रहिए हमारे साथ, कार्यक्रमों का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा।
2: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में सारंगी और वायलिन वादन की जुगलबंदी सुनिएगा, जिसे पेश कर रहे हैं अब्दुल हमीद लतीफ और जावेद लतीफ खां, और इसके बाद प्रस्तुति होगी सुगंध देवी गंधर्व के गायन की। तो सबसे पहले पेश है सारंगी और वायलिन वादन की जुगलबंदी, जिसे पेश कर रहे हैं अब्दुल हमीद लतीफ और जावेद लतीफ खां।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक फीस। चतुर सेन ग्रेजुएट है मगर बेरोजगार है। आज से 5 साल पहले उसने शहर के एक नामी कॉलेज से बीए पास किया था। मन में ख्याल आया लगे हाथों एमए भी कर लिया जाए, पर सोचा क्या फायदा पैसा और वक्त जाया करने में। आईएएस बनना चाहता था, उसके लिए बीए पास क्वालिफिकेशन काफी थी। मगर पहले ही प्रयास में उसे पता चल गया कि बीए पास आदमी आईएएस नहीं बन सकता। फिर सोचा चलो डिप्टी कलेक्टर ही सही, ये पोस्ट भी बुरी नहीं है, 20-22 साल में आईएएस की प्रमोशन मिल ही जाएगी। पर हाय रे किस्मत, यूपीएससी से लेकर के पीएससी तक सब ने उसके खिलाफ जैसे मोर्चा बंदी कर रखी थी। यहां तक कि एसएससी और व्यापम ने तो उसे कोई तवज्जो ही नहीं दी। हार कर विचार करने बैठ गया कि आखिर गड़बड़ कहां है, क्यों नौकरी के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। काफी चिंतन मनन के बाद जवाब मिला कि चतुरसेन कमी तुझ में नहीं, तेरे कॉलेज में है। उसने तुझे प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं दी, फीस तो पूरी ली पर पढ़ाया कुछ नहीं। तभी तो नौकरी के हर इम्तहान में तू केवल और केवल फेल होता रहा। तेरे कॉलेज ने सेवा में कमी की है, इसलिए मुआवजे का मामला बनता है उन पर। चल उठ चतुरसेन और ठोक दे दावा कॉलेज पर। पहले नोटिस दे, अगर मान गए तो ठीक, अगर नहीं माने तो उन्हें खींच ले कंज्यूमर फोरम में। आजकल तो कंज्यूमर फोरम का जमाना है ना।
2: मैं आई कम इन सर?
3: यस कम इन, फरमाइए।
2: सर ये नोटिस है, रिसीव कर लीजिए।
3: नोटिस? मगर किस बात का?
2: कंपेंसेशन का सर।
3: कंपेंसेशन? मगर वो कैसा?
2: सर आपके कॉलेज ने सर्विस में कमी की है।
3: कॉलेज ने सर्विस में कमी की है? आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? अरे ये कॉलेज है, कोई दुकान या कंपनी नहीं। जो
2: कैसे नहीं है दुकान या कंपनी, अजी बिल्कुल है,
3: है?
2: पैसे लेकर शिक्षा बेचती है, आखिर और क्या होती है, दुकान ही होती है। कमोडिटीज ना सही, सर्विस ही सही, मगर कुछ तो बेचती है ना। बदले में फीस भी अनाप शनाप लेती है, और एजुकेशन, एजुकेशन ऐसी कि चपरासी की भी नौकरी ना मिले।
3: एक मिनट, ठीक से बताइए आप कि आप कहना क्या चाहते हैं।
2: सर आज से 5 साल पहले मैंने आपके कॉलेज से बीए पास किया था। मुझे एश्योरेंस दिया गया था कि यहाँ की पढ़ाई इतनी अच्छी है कि यहाँ का पढ़ा लिखा लड़का आईएएस तक बन सकता है। लीगल टर्म में कहें तो आपके कॉलेज नाम की कंपनी ने एक प्रकार से गारंटी दी थी अपने कंज्यूमर को, मगर ये देखिए आपकी गारंटी फेल हो चुकी है। जहां जहां भी नौकरी के लिए अप्लाई किया है मैंने, जवाब केवल केवल ना में मिला है सर।
3: तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, आप में काबिलियत ही नहीं होगी।
2: वही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सर।
3: क्या?
2: आपके कॉलेज ने मुझे इस काबिल बनाया ही नहीं कि मैं किसी नौकरी के लिए सिलेक्ट हो सकूं, जबकि ये जिम्मेदारी थी उसकी। इस तरह जो सर्विस देनी चाहिए थी उसे, वो नहीं दी उसने, और इसीलिए मुझे पूरा हक है कि जो फीस चुकाई है मैंने यहाँ वो वापस पा सकूं, और वो भी ब्याज व हर्जे खर्चे के साथ।
3: लुक मिस्टर, ये कॉलेज है, कोई फैक्ट्री नहीं जहां प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक ना हुई तो पैसा वापस।
2: सर्विसेज भी तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के दायरे में आती हैं सर।
3: अच्छा,
2: आपको विश्वास ना हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का सेक्शन 2 देख लीजिए।
3: क्या कह रहे हो?
2: आप खुद समझ जाएंगे कि मेरी डिमांड जायज है या ना जायज।
3: अरे जब कानून की इतनी गहरी समझ है आपको तो फिर कैसे कह सकते हैं कि इस कॉलेज ने आपको ठीक तालीम नहीं दी।
2: माफ कीजिएगा सर, मैंने LLB नहीं किया है आपके कॉलेज से, अरे BA किया है। BA जो प्रोडक्ट आपका है ही नहीं, उसकी क्वालिटी पर कैसे इतरा सकते हैं आप? फीस तो आपको लौटानी होगी सर।
3: और अगर हम ना बोल दें तो?
2: आपका मुंह, जो चाहे सो बोलिए, पर तब मैं कंज्यूमर कोर्ट चला जाऊंगा और हर्जाना भी तब 10 गुना होगा।
3: ओह नो।
2: ओह यस, बोलिए सर, कोर्ट कचहरी के लफड़े में फंस गए ना तो मिट्टी पलीत हो जाएगी आपकी।
3: ठीक है, मगर इसके लिए हमें अपने मैनेजमेंट से कंसल्ट करना होगा।
2: शौक से करिए, एक हफ्ते का टाइम मैंने दिया है नोटिस में, इसके भीतर मुझे जवाब मिल जाना चाहिए, नहीं तो मुझे दोष मत दीजिएगा सर। मैंने एक हफ्ते का टाइम दे रखा है, शौक से कीजिए, शौक से।

0: और भाई मिश्रा जी, कैसी चल रही है आपकी हिंदी टीचिंग?
1: अरे कहाँ प्रिंसिपल साहब, आजकल तो मेरा विषय बिल्कुल उपेक्षित हो गया है। आपने मुझे योग की कक्षा लेने के लिए कह दिया,
0: अच्छा, खूब याद दिलाया आपने। योगा टीचर बामदेव की पत्नी को बच्चा होने वाला था ना, कुछ खबर है उनकी?
1: बच्चा नहीं श्रीमान, बच्चे कहिए, बच्चे। अरे उनके यहाँ तो बच्चे बहुवचन में आविर्भूत हुए हैं
0: भूत
1: श्रीमान।
0: हुए हैं? क्या मतलब?
1: अरे श्रीमान, तात्पर्य यह है कि वामदेव जी की भार्या के उदर से युगल संतानें उत्पन्न हुई
0: ओ,
1: है।
0: अरे भाई, इतनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग क्यों करते हैं आप? लगता है फारसी में बात कर रहे हैं। जरा आम भाषा में बताइए ना कि।
1: अरे सर वो
0: सर, मैं बताता हूं मैं। आइए आइए, गणिताचार्य कृष्ण गोपाल श्री वास्तव जी।
2: धन्यवाद सर, मैं बताता हूं सर आपको। बामदेव जी की वाइफ को जुड़वां बच्चे हुए हैं
0: मगर कब, कितने दिन हो गए?
2: सर। दोनों बच्चों को मिलाकर 2 दिन 12 घंटे और 16 मिनट प्रति बच्चे एवरेज आया, 1 दिन 6 घंटे और 8 मिनट।
0: ओहो, ये कोई गणित का सवाल है जो एवरेज निकाल रहे हो?
1: और श्रीमान, बामदेव जी ने तो उनका नामकरण भी कर दिया है।
0: इतनी जल्दी? अभी तो
1: जी
0: नामकरण संस्कार का समय नहीं आया।
1: अरे श्रीमान, वो बामदेव हैं, कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व किए गए कर्म श्रेष्ठ होते हैं।
0: स्मार्ट गाई, स्मार्ट गाई, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। और नाम क्या रखा है उनका?
1: अरे सर, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम श्रीमान। योगा शिक्षक है ना, तो इससे उत्तम नाम भला और क्या पाते वो।
0: अनुलोम विलोम, बहुत सही, बहुत सही। ये तो अच्छा हुआ कि वे भूगोल के अध्यापक नहीं थे, नहीं तो उनके नाम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव रख दिए होते। खैर, उनकी धर्म पत्नी कैसी है? स्वस्थ तो है ना?
1: कौन? कपाल भारती जी। अरे
0: हाँ,
1: वो तो शवासन में है अभी सर।
0: शवासन
1: जी
0: मतलब वो
2: ना ना ना
0: गई?
2: ना ना ना सर, मिश्रा जी भी ना, योगा पढ़ाते पढ़ाते अब योगा की भाषा बोलने लगे हैं। कपाल भारती जी टोटल बेड रेस्ट पर हैं सर।
0: ओ, तो यूं कहिए ना मिश्रा जी, आप भी और आपकी हिंदी भी। अच्छा, और उनकी माता जी, वैसे वे तो आई होंगी ना अपनी बहू की देखभाल करने?
1: कहाँ श्रीमान, उनका तो कब का प्राणायाम हो चुका है।
0: मुझे ठीक से बताइए ना मिश्रा जी, आप बार बार मुझे परेशानी में क्यों डाल देते हैं?
1: क्षमा करें श्रीमान, वो क्या है ना कि हिंदी व योग की शब्दावली जरा मिश्रित हो गई है। वस्तुतः मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि उनकी माता जी का प्राणांत हो चुका है।
2: मतलब ये कि अब नहीं, नहीं सर वो।
1: हाँ
0: भाई, बड़े ही होनहार अध्यापक हैं हमारे।
3: गुड मॉर्निंग सर।
0: आ गए आप मिस्टर चतुरसेन।
3: सर, हमारे कंपनसेशन के संबंध में आपने क्या निर्णय लिया है?
0: चतुरसेन जी, आपके मैटर में हमने मैनेजमेंट से चर्चा की थी।
3: फिर?
0: अरे, मान ही नहीं रहे थे वे लोग। एक मेंबर तो बिल्कुल ही तमतमा गए।
3: क्यों?
0: कहने लगे मानहानि का मुकदमा कायम करेंगे ऐसे व्यक्ति पर जो हमारे कॉलेज की बदनामी करता फिर रहा है। अरे, पिछले 5 सालों में कुल मिलाकर 3 IAS, 5 IPS, 14 डिप्टी कलेक्टर और 18 DSP सेलेक्ट हो चुके हैं हमारे कॉलेज से, और बाकी सर्विसेज की तो कोई गिनती नहीं। यहां तक कि कंज्यूमर कोर्ट के जज साहब भी यहीं के पढ़े स्टूडेंट हैं। आखिर इन लोगों को भी तो वही तालीम दी गई थी ना जो आपको दी गई।
3: फिर यानी कि तैयार ही नहीं हुए वो लोग।
0: अरे छोड़िए जी उनकी बातें, वे ठहरे व्यापारी लोग, बेरोजगारों का दर्द क्या समझें, अपने स्टूडेंट की तकलीफ तो हम समझते हैं
3: सर। वो हाँ बिल्कुल, मतलब हमारा काम हो जाएगा ना सर।
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने भी खूब पानी पिलाया उन लोगों, बोल दिया कि कंज्यूमर कोर्ट का जज आपके कॉलेज का पड़ा है तो क्या कर लेंगे आप लोग। अरे जज किसी का सगा नहीं होता, वो कानून से फैसला करता है और कानून चतुर सेन के पक्ष में है। हम लोगों ने सेवा में कमी की है, ये बात इसी बात से साबित हो चुकी है कि चतुर सेन को अब तक कोई नौकरी नहीं मिली।
3: तो मतलब हमारा चेक रेडी है ना सर।
0: अरे रेडी ही समझिए जी, बस जरा सी फॉर्मेलिटी रह गई है, 2-3 घंटों में वो भी पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपका चेक आपके हाथ में।
3: अरे सर फॉर्मेलिटी, अब वो क्या सर?
0: दरअसल मैनेजमेंट इस बात का सर्टिफिकेट चाहता है कि इस कॉलेज ने आपको घटिया शिक्षा दी है, रिकॉर्ड में लगाने के लिए। अरे भाई कॉलेज की बैलेंस शीट का भी तो ऑडिट होता है ना, सो ऑडिटर के ऑब्जेक्शन से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी है।
3: ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आजकल किसी की मनमानी थोड़ी ही चलती है, अब पेमेंट होगा तो ऑडिटर तो देखेगा ही उसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सब समझते हैं।
3: पर इसके लिए मुझे क्या करना होगा सर?
0: कुछ नहीं, बस एक फॉर्मल टेस्ट होगा, 2-3 लोगों की पैनल बैठ जाएगी, उसमें वो ये देखेगी कि आपका नॉलेज कैसा है।
3: ऐसा क्यों सर?
0: अगर उस टेस्ट में आप फेल हो गए तो कॉलेज आपकी पूरी फीस मय ब्याज खर्चे खर्चे के साथ वापस कर देगी और फेल रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लगा देगी।
3: और अगर मैं सर फेल ना हो पाया तो?
0: भाई तब तो मजबूरी है, मैनेजमेंट इतना तो देखेगा ही ना कि कॉलेज ने आपको ठीक से नॉलेज दिया है कि नहीं, आखिर कॉलेज की भी चूक दिखनी तो चाहिए ना।
3: ओके ठीक है सर, मैं तैयार हूँ।
0: सिट डाउन मिस्टर चतुरसेन।
3: जी सर।
0: मैं पैनल से आपका परिचय करा दूं।
3: जी।
0: यह है प्रोफेसर मिश्रा।
3: जी।
0: हिंदी के अध्यापक हैं। और यह है मिस्टर श्रीवास्तव।
4: हेलो।
0: गणित पढ़ाते हैं।
3: जी नमस्ते सर।
0: ये दोनों लोग हमारे पैनल के 2 मेंबर हैं और तीसरा मेंबर और चेयरमैन मैं खुद हूँ।
3: आपको भी नमस्ते सर।
0: नमस्ते, वेरी क्लेवर। मैं आपसे जनरल नॉलेज और दीगर विषयों के सवाल पूछूंगा, इन सवालों के जो भी जवाब आपको आते हैं उन्हें ठीक ठीक देना है, कोई चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, बिल्कुल ऑनेस्टली। और हाँ, तीनों मेंबर्स के 100-100 मार्क्स हैं, यानी कुल मिलाकर 300 मार्क्स, पास होने के लिए आपको पाने होंगे 40%, यानी कुल मिलाकर 300 में से 120 नंबर। तो तैयार हैं आप?
3: यस सर।
0: मिश्रा जी शुरुआत आप कीजिए।
1: हाँ तो चतुरसेन, मेरा पहला प्रश्न हिंदी व्याकरण से है और आपको ये बताना है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से दोहराता हूँ, हिंदी में वचन कितने होते हैं?
3: सर 7।
1: सोच कर उत्तर दीजिए, सोच कर। मेरा प्रश्न है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं? एक क्लू देता हूँ आपको, वचन को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजी में नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। आपको बताना इस तरह है कि हिंदी में कुल कितने नंबर यानी कि वचन होते हैं।
3: कह दिया ना सर, 7 वचन, फाइनल आंसर।
1: हाँ, वो कैसे पैनल को समझाएंगे आप?
3: बिल्कुल सर, हमारे यहाँ शादी के समय वर और वधु एक दूसरे को 7 वचन देते हैं।
1: हाँ।
3: तो फिर हिंदी में कितने वचन हुए? 7 ही ना।
1: अच्छा चलिए छोड़िए, गोली मारिए वचन वचन को। हम आपसे दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि हिंदी भाषा के वे कौन से कवि हुए हैं जो दोनों आंखों से अंधे थे?
3: अंधे कवि?
1: हाँ
3: अंधे कवि, सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है।
1: एक क्लू देता हूँ आपको। वो एक भक्त भी थे और उनके नाम के अंत में दास आता है।
3: सर याद आ गया, तुलसीदास।
1: तुलसीदास, मगर वो कैसे?
3: सर तुलसीदास ही थे ना जो भरी बरसात में अपनी वाइफ से मिलने के लिए सांप को रस्सी समझकर छत पर चढ़ गए थे। अब ये काम तो कोई अंधा ही कर सकता है ना सर।
1: ठीक ठीक। अब अपना तीसरा प्रश्न आप ध्यान से सुनिए
3: जी।
1: मैं एक कविता की पहली पंक्ति आपको सुना रहा हूँ। आपको बताना यह है कि इस कविता के रचयिता कौन है। हाँ, तो कविता की पंक्ति है, मानुष हो तो वही रसखान, बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन।
3: सर ये कविता तो हमने कभी सुनी ही नहीं सर।
1: अरे नहीं भाई, ये तो बहुत ही सामान्य कविता है और हिंदी की कक्षा में पढ़ाई ही जाती है। चलिए मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ
3: जी,
1: जिससे आपको संपूर्ण प्रसंग याद आ जाए। कवि रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, अगले जन्म में यदि आप मुझे मनुष्य बनाना तो उस गांव का ग्वाला बनाना जो ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में रहता है। चलिए चलिए आप बताइए इसके रचयिता का नाम क्या है, बता सकते हैं ना आप?
3: जी सर, गोविंदा।
1: गोविंदा,
3: लॉक कर दीजिए सर, यही है।
1: अरे गोविंदा, अरे भाई वो कब से कविता लिखने लगा?
3: सर मैं शर्त लगा सकता हूँ आपसे, गोविंदा को छोड़कर कोई और ऐसी कविता लिखी ही नहीं सकता।
1: अरे
3: अरे ग्वालों के संग गोविंदा नहीं रहना चाहेगा तो भला और कौन रहना चाहेगा सर।
1: ठीक है चतुरसेन, आपका अगला प्रश्न है कि हाँ, विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है?
3: विद्या शब्द का पर्यायवाची? सर मुझे नहीं मालूम।
1: अरे भाई ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कॉलेज आने वाले सभी विद्यार्थी इसे पाना चाहते हैं और हमारी संस्कृति में इन्हें देवी भी कहा जाता है। नृत्य संगीत जैसी कलाएं इन्हीं के दम पर हैं। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है।
3: जी जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ गया मैं।
1: बताइए।
3: श्री देवी।
1: श्री देवी, अरे मगर वो कैसे भाई?
3: देखिए सर, वो एक देवी भी है और एक जमाने में कॉलेज स्टूडेंट्स में इनकी दीवानगी भी काफी थी। और नृत्य संगीत, ओ हो, वो तो पूछिए ही नहीं सर। नगीना फिल्म देख लीजिए ना आप, आपको खुद जवाब मिल जाएगा सर।
1: अरे श्रीमान प्रिंसिपल महोदय, मेरा तो सर दर्द होने लगा, मैं कुछ समय का विश्राम चाहता हूँ।
0: ठीक है मिश्रा जी, विश्राम कीजिए, अब बारी श्रीवास्तव जी की है, आइए श्रीवास्तव जी।
4: धन्यवाद जी। चतुरसेन जी, मेरा सवाल बहुत ही आसान है, आप मुझे ये बताइए कि एक आदमी अगर किसी काम को दो दिन में पूरा करता है तो दो आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अरे अरे सवाल एक बार फिर से दोहराता हूँ मैं।
3: जी जी सर।
4: एक आदमी अगर किसी काम को दो दिन में पूरा करता है तो दो आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे?
3: सर 2 × 2 = 4, सर 4 दिनों में।
4: थोड़ा सोचकर चतुरसेन, ये गणित का सवाल है, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। अरे भाई जब आदमी बढ़ेंगे तो दिन तो कम लगने ही है ना।
3: सर मैंने सोचकर ही उत्तर दिया है और मेरा उत्तर बिल्कुल सही है।
4: मगर कैसे, समझाएंगे आप हमें?
3: देखिए सर, जब एक आदमी काम करेगा तब तो वो केवल काम करेगा और काम को दो दिनों में निपटा देगा, लेकिन जब दो आदमी काम करेंगे तब वो काम कम बातें ज्यादा करेंगे, तो दो दिन से ज्यादा तो लगेंगे ही ना।
4: बहुत सही, क्या गणित है। अच्छा फिर अगर 4 आदमी कर दिए जाए तो?
3: फिर तो काम ही नहीं खत्म होगा सर।
4: वो कैसे?
3: अरे सर फिर तो वहां गुटबंदी शुरू हो जाएगी, दो दो लोगों के दो गुट बन जाएंगे और ये दोनों गुट आपस में लड़ पड़ेंगे, फिर क्या सिर्फ फुटबॉल हो जाएगी और चार के चारों हवालात पहुंच जाएंगे। अब आप ही बताइए ना, क्या ऐसे में काम खत्म हो सकता है?
4: अरे बाप रे, इतनी गहरी पढ़ाई तो हमने भी कभी नहीं की। अच्छा गोली मारी आदमी आदमी को। मैं एक बहुत ही आसान सवाल पूछता हूँ आपसे। एक पेंसिल का दाम 1 रुपए है, तो 12 पेंसिलों का दाम क्या होगा?
3: 12 पेंसिलों का, 12 पेंसिलों का सर 10 रुपया।
4: 10 रुपया? मगर वो कैसे?
3: सर 10 पेंसिलें लेने पर 2 पेंसिलें फ्री में मिल जाएंगी। बस हो गया, 12 पेंसिलें और 10 रुपए हमारे मोहल्ले में स्टेशनरी वाला देता है सर।
4: अच्छा अच्छा, तो अब ये बताइए कि एक कार निर्माता कंपनी का दावा है कि उसकी बनाई कार 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर का सफर करती है, तो 5 लीटर पेट्रोल में वो कितने किलोमीटर का सफर करेगी?
3: सर 50 किलोमीटर का।
4: मगर कैसे?
3: सर देखिए, कंपनियों के दावे 50% से ज्यादा सही होते ही नहीं है। ऐसे में वो कार 5 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर से ज्यादा जा ही नहीं सकती। हाँ, कम जरूर जा सकती है।
0: ठीक है चतुर्सेन, अब आप हमारे सवालों के जवाब दीजिए।
3: जी,
0: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है?
3: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम, वो तो दुनिया जानती है सर, ओसामा बिन लादेन।
0: ओसामा बिन लादेन? मगर ये तो गलत जवाब है भाई, वो ओसामा नहीं बल्कि ओबामा है।
3: हाँ, तो ओबामा बिन लादेन कर दीजिए ना सर, आखिर बा और सा का फर्क ही है ना, बोलचाल में इतना तो चलता है।
0: अरे बा और सा का ही फर्क नहीं, बिन लादेन का भी फर्क है। अरे भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम में बिन लादेन नहीं आता।
3: आपको कैसे मालूम कि नहीं आता? हमने तो जब जब अमेरिका पढ़ा तब तब बिन लादेन पढ़ा, यहाँ तक कि इस बार का इलेक्शन भी अमेरिका में बिन लादेन का हल्ला पीट कर किया गया सर, और जीता भी गया। माफ कीजिएगा सर, मेरा जनरल नॉलेज आपसे अच्छा है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप ये बताइए कि ताज किसने बनवाया था?
3: बहन छायावती ने।
0: बहन छायावती ने? मगर वो कैसे?
3: सर यही तो है, आप अखबार बिल्कुल नहीं पढ़ते। ताज कॉरिडोर का मामला कितना उछलता रहा पेपरों में, याद कीजिए। बेचारी छायावती ने जैसे गुनाह कर दिया जो ताज बनवा दिया, बड़ी मुश्किल से पिंड छूटा उसका, वो भी कोर्ट में जाकर।
0: चलिए अब एक सवाल अर्थशास्त्र पर, इकोनॉमिक्स। प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर होता है?
3: सर, जो कर आंखों के सामने वसूल किया जाए वो प्रत्यक्ष कर, और जो आंखों में धूल झोंक कर वसूल किया जाए वो अप्रत्यक्ष कर होता है।
0: वेरी गुड वेरी गुड, एक उदाहरण देंगे इन करों का?
3: बिल्कुल सर, लूट प्रत्यक्ष कर है और जेब कटी अप्रत्यक्ष कर।
0: अच्छा, अब एक आखिरी सवाल।
3: जी,
0: एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और किसी जगह पहुंचने में उसे 2 घंटे लगते हैं, तो बताइए मेरी उम्र कितनी है?
3: सर जोड़ने दीजिए, 18 + 18 = 36। हाँ सर, 36 साल।
0: करेक्ट आंसर। मगर कैसे निकाला आपने भाई?
3: सर मेरा एक भाई है जो आधा पागल है और उसकी उम्र 18 साल है। अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, आपकी उम्र हुई 18 + 18 मतलब 36 साल।
0: ठीक है चतुर्सेन, ठीक है, आप थोड़ी देर बाहर इंतजार करें, तब तक हम आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं।
3: जी बेहतर सर।
0: अरे क्या किया जाए भाई, ये चतुर लड़का तो बड़ा कहिया है, जानबूझकर सारे सवालों के जवाब गलत दे रहा है।
4: जी सर,
0: इस आधार पर तो हमें इसकी फीस लौटानी ही होगी।
4: सर हमारे पास एक आइडिया है।
0: वो क्या?
4: सुनिए सर।
0: अरे वाह वाह वाह वाह
4: ठीक है ना सर,
0: फिर बुलाइए बुलाइए उसे बुलाइए बुलाइए। चतुर्सेन जी, आप इस परीक्षा में उच्च अंकों से अनुत्तीर्ण हुए, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। आपको उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए थे 40%। लेकिन आपने महज 0% अर्जित करके अनुत्तीर्ण होने का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। हम आपका क्लेम स्वीकार करते हैं।
5: जी सर,
0: हमने मान लिया कि हम आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे सके, इसीलिए मैं ब्याज फीस वापसी का आपका हक बनता है।
5: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
0: अरे इतना मच मचाइए नहीं, ये लीजिए 17,542 रुपए का आपका चेक।
3: 17,542? मगर ये तो गलत है सर, 3 सालों की पढ़ाई के दौरान कुल मिलाकर मैंने 36,000 तो केवल फीस के दिए हैं। इसके बाद 2,000 योगा के नाम पर, 7,000 कंप्यूटर के नाम पर, 4,000 स्पोर्ट्स के नाम पर लिए गए हैं, कुल मिलाकर हुए 49,000 रुपए। इस राशि पर अगर आप केवल 10% का भी ब्याज लगा लीजिए तो ब्याज हो गया 4,900, यानी कुल मिलाकर 53,900 रुपए। और इसकी जगह आप केवल 17,542 देना चाहते हैं मुझे, ये बेईमानी है सर, दिस इज चीटिंग।
0: चतुर्सेन, आपने बिल्कुल सही हिसाब लगाया, इस कॉलेज ने आपको बिल्कुल सही तालीम दी है, प्रॉपर एजुकेशन। यह आपका अंतिम टेस्ट था जो 300 नंबरों का था, इसमें आपको मिले हैं 300 में से 300 नंबर। इस तरह कुल मिलाकर 600 में से आपको मिले 300 नंबर। 50% मार्क्स के साथ आप टेस्ट में उत्तीर्ण घोषित किए जाते हैं और फीस वापसी का आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाता है। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं।
3: नहीं नहीं सर, ये चीटिंग है सर, आपने तो बताया ही नहीं था सर ये टेस्ट का हिस्सा है।
1: हाँ, और आप क्या कह रहे थे चतुर्सेन?
0: बताइए बताइए,
1: क्या कर रहे थे आप? जानबूझकर प्रश्नों के गलत जवाब दे रहे थे।
0: अभी हमारे है ना?
1: वो क्या था आखिर? वो पुरानी कहावत भूल गए आप, जैसे को तैसा।
3: सर सर सर, ऐसा ना करिए सर, मैं 17,542 पर ही कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ सर। लाइए सर, लाइए ये चेक मुझे दे दीजिए।
0: बिल्कुल नहीं भुंजी, भांग भी नहीं मिलेगी तुमको। गेट आउट
3: सर,
0: आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर।

तो श्रोताओं, ये था हमारा हास्य नाटक फीस। इसका आलेख तैयार किया था प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मीता पंडित का गायन। आज का कार्यक्रम भारत भारती बस यहीं तक। अब दीजिए अपने दोस्त दानिश को इजाजत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं, रिटायरमेंट नौकरी की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार सरकारी गीता के अनुसार जो नौकरी में भर्ती हुआ है तो उसका रिटायरमेंट भी निश्चित है। अब अगर मुलाजिम रिटायर होगा तो दो बातें होंगी, या तो उसे पेंशन की पात्रता होगी या नहीं होगी। अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हुई तो इसे पाने के लिए उसे कितने पापड़ बेलने होंगे यह तो वह रिटायर होने के बाद ही जान पाएगा। यहां तक कि पेंशन चालू रहने के दौरान भी उसे बार बार अपने जिंदा होने का सबूत पेश करना पड़ेगा। जीते जागते आदमी से पूछा जाएगा कि साबित करो कि तुम जिंदा हो। और यह बात अलग है कि परलोकवासी का भी अगर लाइफ सर्टिफिकेट हो तो उसकी पेंशन नहीं रुकेगी। आज का हमारा नाटक इसी थीम पर आधारित है, पेंशन की टेंशन।

0: भाई साहब, ये पेंशन तो आपको नहीं मिल सकती।
1: नहीं मिल सकती? क्यों?
0: आपको अपने जिंदा होने का सबूत देना होगा।
1: जिंदा होने का सबूत? अरे आपके सामने वन पीस में खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, अपनी पेंशन मांग रहा हूँ, क्या इतना काफी नहीं है?
0: जी नहीं, वन पीस में तो क्या, अगर आप थ्री पीस में भी होते ना तो भी चलता, बशर्ते कोई सबूत होता आपके पास अपने जिंदा होने का।
1: तो आप ही बता दीजिए ना कि कैसे साबित करूं कि मैं जिंदा हूं।
0: कोई लेटेस्ट डॉक्यूमेंट दे दीजिए जो इस बात को साबित करे कि आप जिंदा हैं।
1: जैसे?
0: जैसे जैसे हाँ, किसी अस्पताल का कोई पर्चा जिसमें आपका नाम लिखा हो।
1: अस्पताल का पर्चा होगा तो जरूर, मगर घर पर ढूंढना पड़ेगा उसे।
0: तो ढूंढिए ना, जाइए, जाकर ले आइए। अगर पेंशन चाहिए तो ये तुच्छ पीड़ा तो आपको सहन करनी ही होगी।
1: मगर है वो 1.5 साल पुराना, चलेगा?
0: अजीब इंसान है आप। अरे 1.5 साल पुराना दस्तावेज चलता तो 3 महीने पहले के आपके सिग्नेचर ना चल जाते। जाने कैसे भर्ती हो गए थे सरकारी नौकरी में, इतना भी नहीं समझते।
1: अजीब आदमी है जी आप, एक सीनियर सिटीजन से बात करने की भी तमीज नहीं है आपको। सीट पर क्या बैठ गए, खुद को खुदा समझने लगे आप?
0: ओ भाई साहब, पेंशन लेने आए हैं तो पेंशन की टेंशन लीजिए, मुझे तमीज की कमीज ना पहनाइए। हैं? अब सीनियर सिटीजन हैं आप तो इसमें मेरा क्या कसूर? क्या साष्टांग दंडवत करूं आपको?
1: साष्टांग दंडवत करेंगे ये? अरे दो शब्द सभ्यता से तो बोल नहीं सकते। ये नहीं सोचते कि 4 दिन बाद इन्हें भी रिटायर होना है।
0: ओ बड़ो बाबा, भुनर भुनर मत करो, जो कहना है साफ साफ कहो, समझे?
1: नहीं नहीं श्रीमान जी, मेरा तो आपसे विनम्र निवेदन है कि कोई ऐसा उपाय हो जिससे मुझ गरीब का कुछ काम चल जाए तो कृपा करके हमें बताएं।
0: ये हुई ना सही बात। अरे उपाय एक तो क्या हजार है, एक 4 अंगुल का कागज ही तो चाहिए जिसमें आपका नाम लिखा हो और कोई ताजी तारीख पड़ी हो। अच्छा आप ये बताइए कि राशन कार्ड पर राशन लिया है आपने हाल में?
1: नहीं भैया, मैं तो कंट्रोल का राशन लेता ही नहीं हूँ।
0: अस्पताल में भर्ती नहीं हुए, राशन लेते नहीं? अरे कोई तो ऐसी हरकत हो आपकी जो जिंदा लोग करते हैं। आखिर कैसे साबित हो कि आप जिंदा हैं? अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि बैंक से कोई विड्रॉल किया है आपने हाल में?
1: अरे कैसी बात करते हैं भाई आप। अरे बैंक से विड्रॉल करना होता तो पेंशन ही ना निकाल लेता।
0: बात तो सही है आपकी भाई साहब, फिर तो आप मुझे माफी कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। रूल यानी रूल, मैं उस आदमी को पेंशन नहीं दे सकता जिसके जिंदा होने की कोई गारंटी नहीं।
1: फिर वही बात, अरे कागज कहिए जनाब, कागज। आपको जिंदा होने का कागज चाहिए? मेरे जिंदा होने की गारंटी तो मैं खुद हूं। अरे मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है कि जो आदमी सांस ले रहा है, जिसके दिल की धड़कन चल रही है, जिसका दिमाग काम कर रहा है, वो जिंदा है।
0: तो जाकर ले आइए इस बात का सबूत उससे।
1: किससे?
0: मेडिकल साइंस से। जाइए किसी अस्पताल से एक सर्टिफिकेट ले आइए कि आपकी सांस चल रही है, आपका दिल धड़क रहा है, आपका दिमाग काम कर रहा है। मेडिकल ऑफिसर के सील सिग्नेचर करवा लीजिए। गॉड प्रॉमिस, 5 मिनट के अंदर आपकी पेंशन दे दूंगा।
1: हंसी खेल है क्या? क्या है? अरे वो डॉक्टर मुझे पागल समझेगा जिससे मैं कहूंगा कि ये सब बातें मुझे सर्टिफाई करके दो।
0: तो ठीक है, फिर पागल खाने से ही लिखवा लाइए आप। अरे कुछ तो खिलाकर कागज का पेट भरिए।
1: क्या भाई साहब, अरे यार मेरी पेंशन अटकी हुई है और आपको दिल लगी सूझ रही है।
0: अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि हाल ही में ट्रैफिक पुलिस ने आपका चालान वगैरह तो बनाया होगा?
1: नहीं बनाया है। अब मैं क्या आपको रेस ड्राइविंग करने वाला दिखता हूँ? अरे मैं एक सभ्य नागरिक हूँ देश का, गाड़ी ऐसे नहीं चलाता कि ट्रैफिक पुलिस मेरा चालान बनाए। हे भगवान, 2-4 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर क्या चला गया, सरकार ने मुझे मरा हुआ ही मान लिया।
0: ओहो हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने, एक काम करिए आप,
1: हाँ हाँ,
0: रेलवे रिजर्वेशन का एक टिकट लगा दीजिए, आपके लिए हम इसी से काम चला लेंगे।
1: मगर वो तो नहीं है।
0: वो क्यों?
1: क्योंकि मैं जनरल डिब्बे में गया था।
0: कैसे आदमी हैं आप भाई साहब, हैं ची ची ची ची ची, जनरल डिब्बे में ही तीर्थ यात्रा कर आए।
1: अरे तो इसमें क्या गलत किया मैंने? अरे गांधी जी भी तो थर्ड क्लास में ही चला करते थे। आम आदमी हूँ, आम जनता के साथ सफर करता हूँ, ये कोई गुनाह तो नहीं है?
0: हाँ गुनाह तो नहीं, मगर पेंशन भी नहीं मिल सकती इसके बिना आपको।
1: काय सता रहे पेंशन बाबू इस बुड्ढे को? अरे पेंशन नहीं मिलेगी तो मैं खाऊंगा क्या?
0: खाना जिंदा आदमी खाता है बाबा, मरा आदमी नहीं।
1: ये बात तो आपको समझनी है भैया, जब मैं खाना खाने की चिंता कर रहा हूँ तो मैं जिंदा ही होऊंगा, मरा आदमी थोड़े खाने की फिक्र करता है।
0: मेरे समझने से तो काम नहीं चलेगा ना बाबा, मुझे तो कागज चाहिए रिकॉर्ड में लगाने के लिए। अच्छा चलिए, ये तो बताइए कि अभी म्युनिसिपल इलेक्शन में आपने वोट तो डाला ही होगा ना?
1: कैसे डालता भैया, बताया तो कि मैं यहाँ नहीं था यार, तीरथ पर गया हुआ था।
0: तीरथ पर गया था, तीरथ पर गया था, जाइए भगवान से ही लिखवा लाइए कि आप तीरथ पर गए थे, मान लूंगा मैं।
1: काहे काहे मजबूर की हंसी उड़ा रहे हो भैया, कहीं भगवान भी लिखा पढ़ी करते?
0: जानता हूँ भगवान लिखा पढ़ी नहीं करते, मगर उनके एजेंट तो करते हैं। अरे पंडे पुरोहित की यहाँ हाजिरी लगाई होगी आपने तीर्थ यात्रा के दौरान, उनके बही खाते में नाम लिखवाया होगा, उनकी बही की ही सर्टिफाइड कॉपी ले आइए, हम उसी से मान लेंगे कि आप जिंदा हैं अभी।
1: अरे यार लेकिन मैंने तो सारा काम डायरेक्ट किया है, भगवान के एजेंटों से तो दूर ही रहा हूँ मैं।
0: एक काम कीजिए फिर, पेंशन भी डायरेक्ट सरकार से ही ले लीजिए।
1: अरे यार
0: काहे बीच में मुझ कर्मचारी की जान ले रहे हैं आप, हैं? पता चला आपको पेंशन देने के चक्कर में मेरी पेंशन बंद हो गई है? अरे ये नहीं वो नहीं, धरती पर कोई जिंदा इंसान ऐसा होता है कि एक आध महीने में कहीं किसी कागज पर उसका नाम ही ना लिखा जाए?
1: अरे भाई क्यों भरमा रहे हो यार मुझे, पेंशन के बिना मेरा गुजारा कैसे चलेगा यार?
0: देखिए सीनियर सिटीजन जी, देखिए मैं ठहरा सरकारी आदमी, कायदे कानून के हिसाब से चलता हूँ। माना कि मुझे आपसे हमदर्दी है, मगर मुझे भी तो अपनी नौकरी प्यारी है। अरे इतने दिनों में आपने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो जिंदा लोग करते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अरे कुछ नहीं तो किसी से मारपीट ही कर लिए होते, एक आध रात हवालात में काटे होते, कम से कम थाने से ही कोई रिकॉर्ड मिल जाता।
1: अरे काय काय मेरी भद्द बना रहे हो भैया, 65 साल का ये आदमी आपको मारपीट करने वाला दिखता है। अरे जवानी में भी कभी नहीं की ऐसी हरकत हमने, और आप कहते हो कि इस बुढ़ापे में
0: फिर तो भाई साहब आप मेरा पीछा छोड़ दो, अकेले आपका ही काम नहीं करना है मुझे? चलिए हटिए हटिए, मुझे दूसरों का काम करना है, चलिए हटिए।
1: मगर मैं अपनी पेंशन लिए बगैर नहीं जाऊंगा आज, कह देता हूँ आपसे, चाहे इसके लिए मुझे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह वाह, बुढ़ापे में ये जोश, क्या करेंगे आप? चलिए चलिए, नहीं देता आपकी पेंशन, जो करते बने कर लीजिए।
1: ओ साहब इस बुड्ढे के सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए।
0: अरे जाइए जाइए जनाब जाइए, किसी और को आंखें दिखलाइए, अपन नहीं डरने वाले इन लाल लाल आंखों से। हाथ पांव में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं, च्यवनप्राश खाया करो, ठीक से खड़ा तो हुआ नहीं जाता और डरा रहे ऐसे। चल चल फुट, बात सुन ली तेरी बड़बड़, चल फुट फुट फुट।
1: फूटने को बोलता है पेंशन नहीं देता तो ले।
0: अरे अरे मार डाला, अरे मार डाला, अरे
1: अरे बुड्ढे मार डाला, अरे अरे लाठी से कमर तोड़ दी मेरी।
0: अरे राम कोई है, अरे पुलिस को बुलाओ पुलिस।
2: भगवान ना करे किसी को डॉक्टर वकील या पुलिस के पास जाना पड़े। इन तीनों जगहों पर इंसान अपनी मर्जी से नहीं जाता, लेकिन एक बार अगर पहुंच गया तो पीछा छुड़ाना जरूर मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे इन दोनों पात्रों के साथ भी।
0: दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी, देखिए इस बुड्ढे ने जबरदस्ती मुझसे पेंशन लेने की कोशिश की। मैंने कहा कि लाइफ सर्टिफिकेट ले आओ, तो बोला नहीं लाऊंगा, जो करते बने कर लो। मैंने रोका तो गालियां देने लगा, देखिए देखिए डंडा खींच कर मारा मुझे, अरे गिरफ्तार कर लीजिए, बहुत खतरनाक बुड्ढा है।
1: अरे कोई गाली वाली नहीं दिए दरोगा साहब, हाँ छड़ी जरूर उठाई है इस पर, वो भी इसलिए कि इसने पेंशन देने से मना कर दिया था, कहने लगा जिंदा होने का सबूत लेके आओ। हाँ, मैंने कहा तुम्हारे सामने अच्छा भला खड़ा हूँ, क्या इतना सबूत काफी नहीं है? तो बोला मैं नहीं मानता इस सबूत को। तो ठीक है, जब मैं जिंदा ही नहीं हूँ तो मैंने कोई जुर्म भी कैसे किया है? किस कानून में लिखा है कि मुर्दे को गिरफ्तार करो? जाइए पहले ये साबित कीजिए कि मैं जिंदा हूँ, फिर गिरफ्तार करिएगा मुझे।
0: सुन रहे हैं दरोगा जी, आप आपके सामने खड़ा होकर बकर बकर कर रहा है, आपसे बहस कर रहा है दरोगा जी, आपको कानून सिखा रहा है और कह रहा है कि पहले ये साबित कीजिए कि ये जिंदा है।
3: चुप, एकदम चुप। तुम दोनों ने मेरा दिमाग गर्म कर दिया। अरे ऐसा टिपिकल केस मैंने जिंदगी में नहीं देखा, और तुम ए सीनियर सिटीजन, ये सरकारी आदमी के काम में बाधा पहुंचाते हो, गाली बकते हो, मारपीट करते हो। आईपीसी की धारा 294, 332, 33, 34, 353 की धाराएं जब लगाऊंगा ना तुम्हारे ऊपर, तो सारी जवानी ठंडी हो जाएगी तुम्हारी।
1: अरे ऐसे कैसे लगाएंगे जी, पहले साबित तो कीजिए कि मैं जिंदा हूँ, है कि कोर्ट में बताएंगे कि दयाराम नाम के भूत ने ये सब किया है जी।
3: ये तुम साबित करना है कि तुम जिंदा नहीं हो। अरे भूत प्रेत पिशाच हो क्या हो, मैं तो तुम्हें जिंदा मानकर तुम्हारी चार्जशीट भर दूंगा, दैट्स इट।
1: अच्छा ऐसे कैसे दैट्स इट? थोड़ा बहुत कानून मैं भी जानता हूँ, जुर्म साबित करना पुलिस का काम है, ना कि मुलजिम का कि वो खुद को बेगुनाह साबित करे। आप साबित कीजिए कि मैं गुनाहगार हूँ, मगर इसके पहले आपको मुझे जिंदा तो साबित करना पड़ेगा।
0: इस बुड्ढे की बातचीत में मत आइए दरोगा जी, मैं कंप्लेंट लिखवा रहा हूँ कि इसने मुझे गाली दी और मारा। अरे गाली गलौच और मारपीट कोई जिंदा इंसान ही कर सकता है, ना कि कोई मुर्दा। मैं गवाह हूं कि ये जिंदा है, आप पकड़ लीजिए इसको।
1: वाह वाह वाह वाह, सुना सुना आपने दरोगा जी, ये पेंशन बाबू मुझे जिंदा मान रहा है, मगर इसके बाद भी पेंशन देने को तैयार नहीं है, कहता है कि साबित करो कि मैं जिंदा हूँ। अरे गिरफ्तार तो इसे कीजिए, एक सीनियर सिटीजन को प्रताड़ित करने के जुर्म में, दुर्व्यवहार करने के जुर्म में, गाली गलौज करने के जुर्म में, धक्का देकर पब्लिक प्लेस से बाहर निकालने के जुर्म में, इसे तो जिंदा भी साबित करने की जरूरत नहीं है, ऑफिस में हाजिरी लगाई होगी इसने, है ना? इतना ही काफी है।
3: हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? मुर्दा जिंदा है, लेकिन जो जिंदा है वो जिंदा नहीं।
1: वो ही तो, जो जिंदा है उसे जिंदा होने का सबूत पेश करने को कहा जा रहा है, ये देखिए आप। लेकिन लॉकअप में डालने के लिए जिंदा होना जरूरी नहीं है, अंधेर गर्दी मचा रखी है, है?
3: बस बस, अब मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, और अब किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, दोनों पार्टियों के खिलाफ केस बनाऊंगा, और ज्यादा बड़बड़ की तो पुलिस ऑफिसर को ऑन ड्यूटी मेंटल टॉर्चर देने का एक कस और बनाऊंगा, सब लड़ाई झगड़ा भूल जाओगे, चलो थाने तुम दोनों, चलो।
0: अरे मुझे छोड़ दीजिए दरोगा जी, छोड़ दीजिए। अरे मेरी नौकरी चली जाएगी, इस बुड्ढे का क्या, मजे से सरकारी ने मेहमानी करेगा, मगर मैं तो बाल बच्चे वाला आदमी हूँ।
1: हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, अब तो मैं भी अंदर और तू भी अंदर, ना मुझे पेंशन की जरूरत और ना तुझे तनख्वाह की जरूरत, सरकारी खाना, सरकारी रहना, सरकारी इलाज, चारों ओर कमांडो, अब तो ऐसी ऐसे।
0: क्या बक रहा है बुड्ढे तू, हैं? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे जेल जा रहे हैं हम दोनों, जेल का मतलब जानता भी है तू?
1: नहीं जानता तो जान जाऊंगा, अरे ये तो अपनी जेल है, अपनी भारत सरकार की, गांधी जी तो अंग्रेजों की जेल में रहे थे, हैं? वो भी सत्य के लिए गए थे,
4: और मैं भी सत्य के लिए ही जा रहा हूँ। बढ़िया है।
0: अरे ये बात बात में तू गांधी जी को क्यों बीच में ले आता है भाई? आपस का मामला है, मिलकर निपटा लेते हैं। चल भाई मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता हूँ, अब तो खुश।
3: ओए क्या फालतू समझ रखा है पुलिस को, जब मर्जी हुई तो कंप्लेंट कर दी और जब मर्जी हुई तो कंप्लेंट वापस। पुलिस तो जैसे तुम्हारे बाप की नौकर है, जैसे चाहो वैसे नचाओ, कोई कंप्लेंट वम्प्लेंट वापस नहीं होगी। 24 घंटे हवालात में रहोगे, इसके बाद तुम दोनों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो कुछ बोलना है वहीं जाके बोलना।
0: अरे आप भी तो कुछ बोलिए अंकल जी, अपनी तो वाट लग जाएगी।
1: अंकल जी, अरे वाह वाह अंकल जी। वारे वक्त ये बुड्ढा अब अंकल जी हो गया।
4: अरे वाट तो तेरी लगेगी पेंशन बाबू। नहीं अपने राम को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे घर में रहे चाहे जेल में, दो वक्त की रोटी कपड़े से मतलब है ना। आगे कोई रोने वाला है ना पीछे।
0: हे राम कहाँ फंस गया रे, हमें छोड़ दीजिए दरोगा जी, दरोगा जी हमें छोड़ दीजिए, हम अपना मामला आपस में ही सुलटा लेंगे। देखिए देखिए मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे आप भी तो नौकरी वाले हैं, कुछ तो ख्याल कीजिए।
4: बहुत खूब बहुत खूब। अरे मैं भी तो कभी नौकरी वाला था और कल मेरी तरह तुम भी पेंशनर बनोगे, ये सब नहीं सोचा। पेंशन देने से मना कर दिया, बोला बाहर निकलो, ये नहीं सोचा कि पेंशन के बिना ये बुड्ढा खाएगा क्या।
0: अरे अब जाने भी दो भाई साहब, भाई साहब गुस्सा गुस्सा जो है ना, थूक दो आप तो। अरे दरोगा जी दरोगा जी दरोगा जी, अरे सुनिए तो, दयाराम जी जो है ना मान गए हैं, अब तो हमें छोड़ दीजिए।
3: देखो भाई ये थाने का मामला है, कोई ना कोई कार्रवाई तो करनी ही होगी, अब नहीं तो कल तुम ही लोग शिकायत करोगे मेरे खिलाफ कि पुलिस बेकसूर को पकड़ ले गई थी।
0: अरे नहीं दरोगा जी, हम वादा करते हैं हम कोई शिकायत विकायत नहीं करेंगे। अरे मैं तो याद भी नहीं रखूंगा कि मैं कभी थाने गया था, मेरा भरोसा कीजिए।
3: थाने में आने के बाद सब ऐसे ही बोलते हैं, और मगर छूटने के बाद SP DSP से लेकर DGP तक को शिकायत करते हैं। ना भाई ना, देखो तुम्हारी नौकरी की मैं उतनी ही हिफाजत कर सकता हूँ जितने में हमारी नौकरी खतरे में ना आए, तो 107-16 तो मुझे लगानी पड़ेगी। दर
0: है 107-16, ये तो बहुत ज़्यादा है। अरे ज़रा इकाई दहाई में सही कोई धारा लगा दिए ना, आप तो पूरे सैकड़े में पहुँच गए डायरेक्ट।
3: अभी तो धारा क्या, तुम्हारे बाप की डायरी में लिखी है, जो जैसे चाहे काट छाँट कर लो, और ज़्यादा बड़बड़ की तो 151 और लगा दूंगा, पर SDM कोर्ट से जमानत करवाना।
0: देखिए मुझे ये पुलिसिया भाषा समझ में नहीं आती साहब, आप तो किसी तरह मेरी नौकरी बचा लीजिए।
3: इसीलिए तो कह रहा हूँ पेंशन बाबू के ज़्यादा पकाओ मत मुझे, सबसे नरम वाली धारा है 107-16, इसमें कोई जेलवेल भी नहीं होती है, ये तो एक बांड भर है कि इसमें आगे तुम दोनों कोई झगड़ा नहीं करोगे, और अगर किया तो बांड कैंसिल और तुम दोनों जेल।
4: अच्छा तो है मेरे लिए, फिर तो हमें इसकी नकल भी मिल जाएगी और ये साबित हो जाएगा कि मैं जिंदा हूँ, थाने का पक्का कागज, फिर तो पेंशन देने में कोई एतराज नहीं होगा ना बाबू साहब।
0: अरे माफ करो अंकल, मैं तो ऐसे ही मान रहा हूँ कि आप जिंदा हो। अरे काहे कि 107 और 207 करवा रहे हो मेरा। अरे माफ कर दो।
2: तो श्रोताओं ये था आज का नाटक पेंशन की टेंशन, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: देवे। नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
1: ससुराल गेंदा फूल
0: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को मेरा शत शत प्रणाम।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

मैं अशोक चक्रधर FM रेडियो का अभिनंदन करता हूं जो 90.8 पर आप सुनते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इसका प्रसार और प्रचार निरंतर हो रहा है। ये रेडियो आज़ाद हिंद है। आज़ाद हिंद हमें याद दिलाता है नेताजी सुभाष की, याद दिलाता है हमारे स्वाधीनता संग्राम की, याद दिलाता है हमारे गौरव की। इस गौरवशाली परंपरा को मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूँ।

0: नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और आप सुन रहे हो रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: दावा है हर आन हमारा, सारा हिंदुस्तान हमारा।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार श्रोताओं, आइए श्रोताओं आपको अवगत करा दें आज की सायंकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों से। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुन सकते हैं अक्षय निधि, साथ ही आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का। शाम 6 बजे का वक्त होगा कार्यक्रम वतन का राग, जो केंद्रित है भोला भाई देसाई पर। 6:30 बजे इतिहास के पन्नों से आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है रानी दुर्गावती के युद्ध की विजय गाथा पर। शाम 7 बजे टैग गुरु, 7:30 बजे भारत विभूति, 8:30 बजे सुनेगा काव्य गुंजन। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे यशोधरा पार्ट 3 का वाचन। रात 9 बजे हमारे वैज्ञानिक, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है डॉक्टर जयंत नागलिकत पर। 9:30 बजे युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो ये थी जानकारी हमारे आज की सायंकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 110 से वाचन। ऋषि हैं कुत्स आंगिरस, देवता हैं ऋभुगण, छंद है जगति और त्रिष्टुप।
3: ततम मे अपस्तदु तायते पुनः स्वादिष्ठा धीति रुचथाय शस्यते अयम समुद्र इह विश्वदेव्यः स्वाहा कृतस्य समु तृणुत ऋभवः। हे ऋभुदेवो, जो पूजन कृत्य हमने पहले किया था उसे फिर से संपन्न करते हैं। यह मधुर स्तुति देवताओं का गुणगान करती है। समुद्र की तरह विस्तृत गुण वाला सोमरस संपूर्ण देवताओं के निमित्त यहाँ स्थिर है। स्वाहा के साथ आप इसे ग्रहण कर संतुष्टि प्राप्त करें। आभोगयम् प्रयदिच्छन्त एतनापाकाः प्रंचो मम केचिदापयः सौधन वनासश्चिरतस्य भूम नागच्छत सवितुर दाशुषो गृहम्। हे सुधन्वा पुत्रो, अधिक प्राचीन हमारे मित्र आप्त बंधु के समान आप जब सुखोपभोग की कामना से आगे बढ़ें तब आप अपने निर्मल चरित्र के प्रभाव से उदार दानी सविता देव के आश्रय को प्राप्त हुए। तत् सविता वो मृतत्व मांसुवद गोहियम यच्छ्री वयंत एतेन त्यम चिच्च मसमसुरस्य भक्षणमेकम संत मकृणुता चतुर्वयम्। हे ऋभुदेवो, कभी न छिपने योग्य सविता देव की कीर्ति का गान करते हुए जब आप उनके समीप गए तब तत्काल उन्होंने आपको अमरता प्रदान की। त्वष्टा द्वारा निर्मित चमस सोमपान का जो पात्र है को उन्होंने 4 प्रकार का बना दिया। विष्टवी शमी तरिणित्वेन वाघतो मर्तासह संतो अमृतत्व मानशुः सौधन्वना ऋभवः सूरचक्षसः संवत्सरे समप्रच्यन्त धीतिभिः। मरणधर्मी मानवों ने निरंतर उपासना और कर्मयोग की साधना से अमर कीर्ति को प्राप्त किया। सुधन्वा के पुत्र ऋभु सूर्य देव की तरह ही तेजस्विता संपन्न होकर एक वर्ष के अंतराल में ही सबके द्वारा प्रशंसनीय स्तवनों से पूज्य भाव को प्राप्त हुए, अर्थात पूजे जाने योग्य बन गए। क्षेत्रमिव वि ममुस्ते जनेन एकम पात्र मृभवो जेहमानम उपस्तुता उपमम नाधमाना अमर्त्येषु श्रव इच्छमानाः। प्रशंसित ऋभुओं ने अमर देवों की कीर्ति की उपमा के योग्य यश की इच्छा की और खेत तैयार करने की तरह तेज धार वाले शस्त्र से बार बार प्रयुक्त होने वाले तीक्ष्ण तेजस्वी संकल्प से देवों के समतुल्य पात्रता व्यक्तित्व को विकसित किया। आ मनीषा मंतरिक्षस्य नृभ्यः सृचेवः घृतम् जुहवाम विद्मना तरणित्वा ये पितुरस्य सश्चिर ऋभवो वाज मरुहं दिवो रजः। अंतरिक्ष में विचरणशील इन मनुष्य रूपधारी ऋभुओं के निमित्त मनोयोग पूर्वक की गई प्रार्थना के साथ हम चमस पात्र से घृताहुति समर्पित करें। ये ऋभुदेव अपने पिता के साथ सतत क्रियाशील रहकर दिव्य लोक और अंतरिक्ष लोक से अन्न का उत्पादन करने में समर्थ हुए। ऋभुर्न इंद्रः शवसा नवीया नृभुर्वा जेभिर् वसुभिर् वसुर्दधिः युष्माकं देवा अवसाहनि प्रियेभि तिष्ठेम प्रत्सुतीर सुन्वताम्। सामर्थ्यवान होने से ऋभुदेव सदा तरुण नौजवान जैसे दिखाई देते हैं और इंद्रदेव की तरह ही संपन्न हैं। शक्तियों और धन संपदा से युक्त ये ऋभु हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। हे देवो, आपके स्मरणीय साधनों से संरक्षित हम किसी शुभ वेला में यज्ञीय कर्मों से रहित रिपुदल पर विजय प्राप्त करें। निश्चर्मणा ऋभवो गाम पिंशत सम वत्से ना सृजता मातरम पुनः सौधन वनासह स्वपस्यया नरो जिर्वी युवाना पितरा कृणोतन। हे ऋभुदेवो, आपने जिसके चर्म ही शेष रह गए थे ऐसी कृशकाया अर्थात दुर्बल शरीर वाली गौ को फिर से सुंदर हृष्ट पुष्ट बना दिया। तत्पश्चात गौ माता को बछड़े से संयुक्त कर दिया। हे सुधन्वा पुत्र वीरो, आपने अपने सत्प्रयास से अति वृद्ध माता पिता को भी युवा बना दिया। वाजेर भिन्नो वाजसाता वविड ढर्यम भुमाम इंद्र चित्रमा दर्शिराधः तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता मदिति सिंधु पृथ्वी उत द्यौः। हे ऋभुओं से युक्त इंद्रदेव, बलपूर्वक पराक्रम प्रधान समर क्षेत्र में अपने समर्थ साधनों के साथ आप प्रविष्ट हों। युद्ध से प्राप्त अद्भुत संपदाओं को हमें प्रदान करें। हमारी यह प्रिय कामना मित्र वरुण अदिति समुद्र पृथ्वी और द्युलोक आदि देवों द्वारा भी अनुमोदित हो।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 110 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति

भक्ति संगीत सुनने वाले सभी साथियों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे मेरी यानी दीप्ति के साथ।

इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है, फिर चाहे वो मनुष्य का शरीर हो या फल।

श्रोताओं, ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही एक अटल सत्य भी है।

हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित है, परंतु ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को

जिस प्रकार सैकड़ों सांपों की चपेट में रहने के बावजूद चंदन की खुशबू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार बुरे लोगों के साथ रहने के बावजूद अच्छे लोगों की अच्छाई और स्वभाव पर कोई असर नहीं होता।

जिसका मन सच्चा और कर्म अच्छा है वही भगवान का सच्चा भक्त है, और ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है।

0: चार वर्ष का रहा होगा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: अगला राजा जो घोषित किया गया था वो वीर नारायण को घोषित किया गया
1: हाँ।
0: था, और रानी ने उनकी संरक्षिका बनकर राजकाज संभाला था।
1: जी हाँ।
0: तो अब इस समय तक आते आते यानी कि 1564 ईस्वी तक आते आते वीर नारायण लगभग 17-18 वर्ष के रहे होंगे। रानी को शासन करते हुए 14 वर्ष हो चुके थे। तो वीर नारायण 17-18 वर्ष के नौजवान थे
1: जी।
0: बहुत अनुभवी तो नहीं रहे होंगे, लेकिन हाँ साहसी थे। इस युद्ध में उनका भी वर्णन आता है, वो भी सेना का नेतृत्व कर रहे थे
1: जी।
0: तो ऐसे कुछ नाम हमको गढ़ा राज्य की सेना में मिलते हैं।
1: और पूजा जी, क्या रानी दुर्गावती की सेना में एक फौजदार थे जिनका जिक्र इतिहास में आता है, अर्जुन सिंह, उनकी क्या भूमिका थी इस युद्ध में? क्योंकि ये युद्ध उनके लिए भी काफी याद किया जाता है।
0: इस युद्ध का जो सबसे प्रमुख बलिदान सर्वप्रथम दिया वो थे अर्जुन सिंह बखीला। उनको अर्जुन सिंह बैस के नाम से भी जाना जाता है और अर्जुन सिंह बघेल के नाम से भी जाना जाता
1: अच्छा।
0: है। तो ये जो अर्जुन सिंह बखीला थे, ये रानी की जो हाथी सेना थी उसका संचालन किया करते थे
1: जी।
0: फौजदार थे सेना में
1: जी।
0: और जब युद्ध चल रहा था तो उस समय इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब आसफ खां की सेना नरई में प्रवेश कर रही थी उसी समय अर्जुन सिंह बघेला ने पूरा नेतृत्व संभाल लिया और हाथी की सेना के द्वारा उन्होंने खूब अच्छा संचालन किया
1: जी।
0: आप जानते ही हैं कि मध्य युग में हाथियों का सेना में बहुत अधिक महत्व था। हाथी की जो ऊंचाई होती है काफी ज्यादा होती है और ये काफी बलशाली पशु भी है
1: जी।
0: और अपने जो प्रशिक्षक होता है उसकी बात भी बहुत अच्छे से मानता है, इसलिए सेना में हाथियों का खूब उपयोग होता था। और हाथी की सेना का जो संचालन करता था उसका भी बहुत ही महत्व था। तो इस पूरे युद्ध में अर्जुन सिंह बघेला का संचालन बहुत महत्व रखता था
1: जी।
0: तो जब आसफ खां की सेना नरई में प्रवेश कर गई तो सबसे पहला सामना अर्जुन सिंह बघेला ने ही किया और उन्होंने काफी वीरतापूर्वक युद्ध किया
1: जी।
0: लेकिन शाम होते होते अर्जुन सिंह बघेला वीरगति को प्राप्त हो गए और ये गढ़ा राज्य के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति थी।
1: निश्चित रूप से कि जिस सेना में हाथी सेना का बहुत, जिस युद्ध में बहुत ज्यादा महत्व हो, उसके जो फौजदार हैं जो हाथी सेना का संचालन ही कर रहे थे वो बहादुरी से लड़े और वो वीरगति को प्राप्त हुए, तो ये एक बड़ा सेटबैक था, ये अपूर्णीय क्षति थी गोंड सेना के लिए। वाकई श्रोताओं, पूजा जी ने हमें एक बहुत अहम जानकारी ये भी अपने पिछले अंकों में दी है कि एक बहुत बड़ा कारण हाथी भी थे गोंड राज्य पर कब्जा करने के लिए, जो अन्य शासक थे वो क्यों ललायत रहते थे। कहते हैं कि उस समय उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में हाथी पाए जाते थे। तो ये एक बहुत अच्छी और नई जानकारी निकल कर के आई है, क्योंकि हम आज के मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ बहुत सारे हाथी आज नहीं पाए जाते हैं, लेकिन उस समय वो वन क्षेत्र कितना सघन रहा होगा और कितनी उपजाऊ वो भूमि रही होगी कि वहाँ पर हाथी जैसे बड़े शाकाहारी जीव के लिए परिस्थितियाँ कितनी अनुकूल रही होंगी। तो पूजा जी, जब अर्जुन सिंह बैस वीरगति को प्राप्त हुए तो युद्ध उसके बाद भी जारी रहा, क्या इस पूरी बात से गढ़ा सेना का जोश कुछ कम हुआ?
0: युद्ध अपने चरम पर था, दोनों ओर की सेनाएं जोर शोर से लड़ रही थीं, खूब तीर तलवार ढाले बर्छे सब चल रहे थे
1: जी।
0: कोई कमी नहीं थी। एक योद्धा के जाने से सेना रुक नहीं जाती,
1: बिल्कुल।
0: वो तो अपने बराबर जिस उद्देश्य को लेकर चली है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरी मेहनत करती है
1: जी।
0: तो गढ़ा की सेना भी अपना पूरा दल बल के साथ में लगी हुई थी
1: जी।
0: युद्ध जारी था। अब धीरे धीरे दिन ढलने लगा
1: जी।
0: सूरज की रोशनी भी अब मध्यम हो चली थी
1: जी।
0: पर गढ़ा की सेना का जोश कम नहीं हुआ था
1: जी।
0: लगातार तीर भाले तलवार की आवाजें गूंज रही थी। दोनों ओर से कई सौ सैनिक मारे जा चुके थे
1: जी।
0: फिर भी युद्ध तो अपनी गति पर था
1: जी। तो क्या जब शाम हो चुकी थी तो शाम के बाद भी, सूरज ढलने के बाद भी तब युद्ध होता था?
0: नहीं, जैसा कि पुराने युद्धों में नियम है
1: जी
0: कि शाम ढलने के बाद युद्ध नहीं होगा
1: जी।
0: आपने कभी ध्यान दिया हो तो भारतीय परंपरा में युद्ध जैसा कोई शब्द ही नहीं है।
1: अच्छा।
0: वास्तव में युद्ध एक अधूरा शब्द है, पूरा शब्द है युद्ध कला।
1: अच्छा।
0: युद्ध को भी एक कला के तौर पर देखा जाता है और कला में हमेशा नियम होते हैं,
1: नियम होते हैं
0: और सभी को उसका पालन करना होता है।
1: क्या बात है।
0: इसलिए युद्ध में जो नियम रख दिए जाते हैं

0: है कि जैसे कि शाम को नहीं युद्ध लड़ना है, सूरज ढलने के बाद युद्ध नहीं होगा,
1: जी
0: सूरज ढलने के बाद आपस में कोई एक दूसरे को नहीं मारेगा, या युद्ध के समय किस किस प्रकार के नियमों का पालन करना होगा, ये सब सुनिश्चित होता है।
1: जी
0: इसलिए हम बहुत सारे युद्धों में ऐसा देखते हैं कि जब भारतीय युद्ध लड़ते थे तो वो नियमों का उल्लंघन नहीं करते थे,
1: जी
0: और उसके कारण कई बार हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी पराजय भी हमको झेलनी पड़ी,
1: जी
0: लेकिन नियमों पर अडिग रहे
1: जी
0: और कभी भी उन्होंने नियमों को नहीं तोड़ा।
1: जी
0: तो यहां भी हम देखते हैं कि जब शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा, तो अब युद्ध इस दिन का यानी 23 जून का
1: जी
0: अब समाप्ति की ओर था,
1: जी
0: पर युद्ध बराबर तेजी से लड़ रहे थे। हालांकि काफी सारे सैनिक मारे जा चुके थे,
1: जी
0: गौंड सेनापति भी पूरी बहादुरी से अभी तक लड़ रहे थे।
1: जी
0: आखिर सूरज ढलने ही लगा और पहले गढ़ा की सेना ने मुगल सेना को पीछे की ओर धकेल दिया।
1: वाकई श्रोताओं, कितनी अद्भुत जानकारी है ये, कि ये तो हमें पहली बार पता चला कि युद्ध कोई शब्द हमारे इतिहास में होता ही नहीं था। पूरा जो शब्द है वो है युद्ध कला। युद्ध को हम सब भारतीय कला के रूप में देखते थे, और पूजा जी ने हमें कितनी अच्छी और वास्तविक जानकारी दी कि कला में हमेशा नियम होते हैं, कला नियमों में बंधी रहती है, तभी वो कला कहलाती है। और भारतीयता में ये बात कही गई कि सूरज ढलने के बाद युद्ध कला जारी नहीं रहेगी, हथियार रख दिए जाएंगे, और जो लोग थोड़ी देर पहले तक सूरज की किरणों में एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू होते थे, वो वहां पर अपनी अपनी तलवारें अपने म्यान में डाल दिया करते थे। तो ये कितनी वाकई अद्भुत बात है युद्ध कला की।
0: तो इस दिन का युद्ध समाप्त होने को था, दोनों सेनाएं खूब जोर शोर से लड़ रही थीं, लेकिन इस तरफ देख रहे थे कि सूरज ढलने को था।
1: जी
0: और बस गढ़ा की सेना ने कमाल दिखा दिया, मुगल सेना को पीछे धकेल ही दिया,
1: वाह,
0: नरे की घाटी से आसफ खां की सेना को भागने पर मजबूर कर दिया, और इस तरह आक मोहम्मद और नाजिर मोहम्मद बची खुची सेना लेकर घाटी से वापस भाग गए और रानी दुर्गावती की विजय हुई।
1: तो पूजा जी, क्या जो विजय थी, जो 23 जून को जो विजय हुई, ये इसके पीछे रानी की कूटनीति का ही कमाल था? क्योंकि पहले तो दूसरी तरफ से आने वाली थी, फिर रास्ता बदला और उस तरफ से आई जहां के उस पूरे इलाके का उनको ज्ञान था, और जो ऊंची ऊंची जगहों पर आपने कहा कि हाथी जैसे जीव के ऊपर जब बैठ करके ऊपर से वार किया जाता है तो वो विरोधी के लिए मुश्किल होता है, तो फिर तो हाथी इनके पास भी थे। लेकिन रानी ने दक्षता विशेषज्ञता ये दिखाई कि वो घाटी में बहुत ऊंचे ऊंचे स्थानों पर उन्होंने अपने सैनिकों को और शूरवीरों को भेजा, तो क्या इस कूटनीति से उनको मिला?
0: प्रकृति की जानकारी होना गोंड जनजाति की विशेषता है,
1: जी।
0: और यही विशेषता इस पल पर उनके काम आई। जब उनके पास एक बहुत छोटी सेना थी, आकस्मिक आक्रमण हुआ था, तो ये सब जानकारियां उनके लिए तो जैसे सकारात्मक ही थी,
1: जी।
0: और रानी ने अपने पराक्रम से, अपने संकल्प से ये कर दिखाया कि इतनी छोटी सेना होते हुए भी उन्होंने एक विशाल सेना के ऊपर विजय प्राप्त कर ली।
1: वाकई ये कमाल की बात है। और देखिए श्रोताओं, कितनी अद्भुत ये बात है कि यदि हमें अपने इलाकों के बारे में बहुत अच्छे से पता हो, खास तौर से जब हम उस दौर की बात करें, राजाओं की बात करें, तो राजा सिर्फ अपने महल में बैठकर ही राजकाज नहीं किया करते थे। जब तक कि वो रानी दुर्गावती की तरह बाहर नहीं घूमते थे, अपने इलाके में नहीं जाते थे, तब तक उन्हें ये जानकारी हो ही नहीं सकती थी कि किस तरफ नदी है, कहाँ नदी का घाट है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ घाटी है, और कहाँ आने जाने का रास्ता है। और यदि ये जानकारी रानी के पास नहीं होती तो निश्चित रूप से इस युद्ध में उनकी हार हो सकती थी, क्योंकि बहुत ही कम सेना थी रानी दुर्गावती के पास। अदम्य साहस और शौर्य तो था ही, लेकिन बहुत सटीक जानकारी थी युद्ध कौशल होने के साथ साथ। फिर वहां उन्होंने कूटनीति का भी प्रयोग किया, एक ओर मां नर्मदा का उन्हें आशीर्वाद मिला, दूसरी ओर घाटी थी, और फिर बाकी काम उन सभी लोगों की वीरता ने कर दिखाया। तो मैम, जैसे कि आपने ये कहा, आईना अकबरी में भी 23 जून और 24 जून की इस लड़ाई का उल्लेख मिलता है। 23 जून को तो विजय हो ही गई थी, और क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है तो 24 जून की बात तो हम अपने अगले अंक में करेंगे, लेकिन क्या कोई और भी हमें साक्ष्य मिलता है जो इस युद्ध का उल्लेख करता हो?
0: जी हाँ, गढ़ा के गोंड राज्य के बारे में जानने के लिए एक बहुत प्रमाणिक स्रोत है, रामनगर मंडला में एक शिलालेख लगा है जिसमें गढ़ा के गोंड राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। इसी शिलालेख में रानी की विजय के बारे में भी एक श्लोक है।
1: वाह,
0: ये श्लोक संस्कृत में है। और श्लोक इस प्रकार है कि अक्षय हीणनीय अमृत भूतलेन यातम रणे तेन महाभटेन बल विजित्या अपि समस्तम अस्य दुर्गावती भीम पराक्रमेण। यानी कि जिस महाभट्ट ने युद्ध में अक्षिणी सेना को अमृत की तरह भूमि पर प्रवाहित कर दिया और बल को जीतने के बाद भी उसकी दुर्गावती भीम पराक्रम से संपूर्ण शक्ति को नष्ट कर दिया, ऐसी दुर्गावती को प्रणाम।
1: वाह, तो मतलब और भी साक्ष्य मिलते हैं आईना एकबरी के अलावा भी। मध्य प्रदेश में ही मंडला में साक्ष्य अभी भी मौजूद हैं, जाकर देख सकते हैं कि उस लड़ाई के बारे में ये स्पष्ट वहाँ पर अभिलेखित है, वहाँ पर उल्लेखित है कि रानी दुर्गावती ने मुगल सेना को पराजित किया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी। डॉक्टर पूजा सक्सेना पुरातत्वविद हमारे साथ लगातार पिछले कुछ एपिसोड से बनी हुई हैं हमारे कार्यक्रम में और हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं गोंड राजवंश के बारे में, रानी दुर्गावती के बारे में। आगे भी ये कहानी जारी रहेगी, आगे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कुल इस युद्ध का 2 दिन का उल्लेख मिलता है। यदि तारीख की बात करें तो आज से 459 साल पहले की बात थी, 23 और 24 जून 1564 को ये युद्ध लड़ा गया। जैसे कि डॉक्टर सक्सेना ने हमें बताया कि पहले ही दिन रानी दुर्गावती ने मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और मुगल सेना वहां से भागने को मजबूर हो गई। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, ये पूजा जी से जानेंगे हम अपने अगले अंक में। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, सुनते रहिए देश के चैनल देश के लिए, रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर। इतिहास के पन्नों से

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। अगला कार्यक्रम एक छोटी सी अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

गेल्मर वोसबर्ग एक डच सर्जन और मुगल दरबार की कूटनीति। 17वीं शताब्दी के बंगाल के आर्द्र नदी क्षेत्रों में शक्ति हमेशा औपचारिक संधियों या भव्य दूतावासों के माध्यम से नहीं दिखाई जाती थी। अक्सर ये एक शासक और डॉक्टर के बीच पाई जाती थी। इस अनूठी गतिशीलता के केंद्र में गेल्मर वोसबर्ग थे, जो एक डच सर्जन थे। वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक मीर जुमला के बीच एक कूटनीतिक सेतु बन गए थे। 1660 तक मुगल उत्तराधिकार के युद्ध ने साम्राज्य के पूर्वी सीमांत को उच्च तनाव की स्थिति में छोड़ दिया था। सम्राट औरंगजेब के मामा और एक प्रतिभाशाली उद्यमी सेनापति मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मीर जुमला का राजनैतिक और व्यापारिक प्रभाव इतना अधिक था कि वे अक्सर यूरोपीय कंपनियों पर अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए धन, हथियार और तकनीकी विशेषज्ञता के लिए दबाव डालते थे। कपड़ा और शोरा के आकर्षक व्यापार को बनाए रखने के लिए बेताब वीओसी को लगा कि वे केवल तटस्थ नहीं रह सकते। जीवित रहने के लिए उन्हें मीर जुमला की सेवा में खुद को शामिल करना ही पड़ा। इस जबरन सहयोग के हिस्से के रूप में मीर जुमला ने वीओसी से विशेषज्ञ कर्मियों को लीज पर लेना शुरू किया, जिनमें जहाज निर्माता, नाविक और सर्जन गेल्मर वोसबर्ग शामिल थे। जहां उनका प्राथमिक कार्य नवाब और उनके आंतरिक घेरे के स्वास्थ्य की देखभाल करना था, वहीं बटविया के डच निदेशकों और ढाका के फैक्ट्री प्रमुखों ने डॉक्टर के लिए कहीं अधिक रणनीति उपयोग देखा। मीर जुमला के साथ निकटता के कारण कंपनी वोसबर्ग को दैनिक कूटनीतिक व्यवहार करने के लिए सबसे उपयोगी व्यक्ति मानती थी। प्रांतीय कूटनीति की दुनिया में जहां विशिष्ट स्थानीय बातचीत अक्सर दिल्ली के शाही फरमानों से अधिक महत्वपूर्ण होती थी, वोसबर्ग एक मुख्य कड़ी थे। जहां ढाका के डच प्रतिनिधि को सप्ताह में एक बार नवाब से मिलने की उम्मीद थी, वहीं वोसबर्ग नवाब के घेरे के भीतर ही रहते थे। वे कंपनी की आंख और कान थे, जो मीर जुमला के मूड को भांपने और चिकित्सा देखभाल के अनौपचारिक क्षणों के दौरान चुपचाप डच हितों की वकालत करने में सक्षम थे। ये व्यवस्था एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा थी, जहां वीओसी ने अपनी विशेषज्ञता नौसैनिक शक्ति से लेकर चिकित्सा ज्ञान तक को महत्वपूर्ण बार्गेनिंग चिप्स के रूप में इस्तेमाल किया। वोसबर्ग की सेवा ने कंपनी को उस कठिन दौर में रास्ता खोजने में मदद की, जब मीर जुमला आक्रामक रूप से हिजली द्वीप जैसे क्षेत्रों पर अधिकार कर रहे थे। एक ऐसा सर्जन प्रदान करके जिस पर नवाब भरोसा कर सके, वीओसी ने यह सुनिश्चित किया कि सैन्य समर्थन के लिए दबाव के बावजूद उनका व्यापार चलता रहे। गेल्मर वोसबर्ग की कहानी उस युग के ऐसे प्रविधि को दर्शाती है जहां यूरोपीय कंपनियों को मौजूदा एशियाई शक्ति संरचनाओं के साथ तालमेल बैठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये याद दिलाता है कि वैश्विक व्यापार का इतिहास अक्सर व्यक्तिगत विश्वास और सामाजिक निकटता पर बनाया गया था। 17वीं शताब्दी के बंगाल में एक सर्जन की कैंची और गवर्नर के तंबू में फुसफुसाए गए कुछ शब्द कभी कभी वैश्विक साम्राज्य के हितों को सुरक्षित करने में युद्ध पोतों के बेड़े जितने ही शक्तिशाली होते थे।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम टैग गुरु।
2: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज फिर एक बार हाजिर हुए हम आपके बीच हमारा कार्यक्रम टेक गुरु लेकर, और टेक गुरु में आज बात करेंगे एआई पर। हमेशा की तरह हम कोई ना कोई नया सब्जेक्ट, नया विषय आपके बीच में लेकर आते हैं, और आज हमारा प्रयास है आप तक ये पहुंचाने का कि एआई क्या है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन ये है क्या, किसके लिए फायदेमंद है, क्या नुकसान है, सुन तो सबने रख रखा है। अब इतना वृहद विषय है ये, इस पर प्रयास करेंगे कितना हम आप तक पहुंचा पाएं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर अनुग्रह नगाइच। आप मैनिट यानी MANIT मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अनुग्रह जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे स्टूडियो में आके आपके साथ इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने देने का मौका देने के लिए।
2: अनुग्रह जी, AI एक ऐसा विषय है जिस पर हम आपसे चाहेंगे रोशनी डालें, लेकिन उससे पहले चाहेंगे कुछ आपके बारे में।
3: जैसे आज से लगभग 20-30 साल पहले कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी अपने देश में, आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुणगान गा रही है। मेरे ख्याल से कोई भी एक ऐसा क्षेत्र या विषय अछूता नहीं है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावों की चर्चा ना हो रही हो। साथ ही साथ वृहद स्तर पर राष्ट्रों के बीच, देशों के बीच भी AI वॉर ऐसी संबंधी चर्चा आ रही है। तो AI के बारे में मेरा जो रुझान था, मैं मूल रूप से वास्तुकला एवं नगर नियोजन, ये मेरा ग्रेजुएशन का विषय रहा है, और मैंने 9 से 13 के बीच जब ग्रेजुएशन कर रहा था तब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में प्रथम दृष्टया मेरे को पता चला अपने संस्थान के इस कंप्यूटर साइंस के लोगों के द्वारा। तो उस समय मेरा परसेप्शन ये बना कि मशीनों के शायद संवाद, जो ऑटोनोमस मशीन्स बनाते हैं, रोबोट बनाते हैं जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है हॉलीवुड की, कि मशीनों के बीच के संवाद को शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग बोलते होंगे। इससे हमारा कोई उत्ता सरोकार नहीं रहने वाला है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस के है उन्हीं का विषय होगा। लेकिन धीरे धीरे इसकी पड़ताल करने पे मुझे जानकारी हुई कि ये एक ऐसा विषय है जिसकी उपयोगिता मेरे आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग में भी है
2: जी।
3: तब मैंने धीरे धीरे इस पर शोध करना चालू किया। तो मैंने जैसे बताया ग्रेजुएशन आर्किटेक्चर अर्बन प्लानिंग से करके मैं IIT बॉम्बे गया, वहाँ पे मैंने जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्स इंजीनियरिंग, भू संचार प्रौद्योगिकी, इस पे अपना परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वहाँ पे मेरा जो काम था वो यही था कि किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका मशीन लर्निंग नाम का एक सब डोमेन है, उसकी मदद से हम लोग जो अपने सेटेलाइट इमेजरी रहती है उसकी विवेचना करने का, उसके विश्लेषण करने में योगदान ले सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो यही वो समय था जब मैंने अपनी आंखों से AI का अपने विषय में इस्तेमाल देखा, और उस इस्तेमाल को, चूंकि मैं बाहरी था, कंप्यूटर साइंस से बाहर से आ रहा था, और मैंने देखा कि जब मेरे विषय में AI इतना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। छोटा सा उदाहरण दूंगा, जैसे जब मैं यहाँ मैनिट में पढ़ता था तो किसी शहर की शहरी विकास योजना बनती है, शहर का एक नक्शा बनता है, तो 5-6 लोग 2-3 दिन बैठ के एक एक बिल्डिंग को फुटप्रिंट बनाते जाते हैं। मतलब शहर की सेटेलाइट इमेजरी इसरो से आएगी, एक एक सड़क को डिजिटाइज करेंगे, एक एक बिल्डिंग फुटप्रिंट को डिजिटाइज करेंगे, एक एक फीचर, नदी, नाले, पेड़, 5-6 लोगों की टीम 1-2 दिन लेती थी किसी भी बड़े शहर के लिए। AI की मदद से ये जो मैनुअल काम था डिजिटाइजेशन का, वो इसरो स्वयं ही करके दे देता था। मतलब वो अपने आप इमेज में, इसको कंप्यूटर विजन तकनीक बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के अंदर, अपने आप ही फीचर डेलिनेट हो गया। तो आप सोचिए 4-5 लोगों के 2-3 दिन की मेहनत एक क्षण में सॉल्व हो गई। उसके बाद से मेरे को ये चीज समझ में आई कि भाई इस तरीके से ये सिर्फ 2 मशीनों के बीच में संवाद का जरिया, यह नहीं है, ये हम लोग जो कंप्यूटिंग डिवाइस को जैसा प्रयोग में लेते आए हैं आज तक, उसको पूरी तरह से बदलने वाला है। और फिर मेरे को समझ में आया कि ये मेरे विषय में नहीं, लगभग हर विषय में जितने भी मैनुअल काम है उन सबको हटा के एक नए तरीके से काम करने की दृष्टि देगा। तो मेरे बैकग्राउंड से मैंने AI के साथ सामंजस्य बनाते हुए फिर इसी विषय को आगे ले जाने का सोचा, और फिर मेरी PhD जो संपन्न हुई वो पूरा मशीन लर्निंग बेस्ड वेटलैंड मॉनिटरिंग पे थी। और अभी मैं इसी विषय के बारे में और कैसे अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करता है उस पे भी लोगों में जागरूकता फैलाने का या उनको इसके प्रति सेंसिटाइज करने का प्रयास करता हूँ।
2: तो AI क्या कोई सॉफ्टवेयर है जो लोग इसका इस्तेमाल कर लें और फिर अपने काम में ले लें?
3: सर, ये आपका बिल्कुल बहुत सही पकड़ा है आपने। कंप्यूटर रेवोल्यूशन में हम लोग के सामने, नजरों के सामने, कंप्यूटिंग डिवाइस था, डेस्कटॉप कंप्यूटर था। आप देखे होंगे जब आप छोटे थे तो कंप्यूटर्स का जो यूज था वो बहुत लिमिटेड था, ऑफिसों में, पावर प्लांट्स में रहता था। आज इस स्टूडियो से लेके रेलवे स्टेशन के काउंटर तक, या अस्पताल के फ्रंट डेस्क तक, या किसी होटल के रिसेप्शन में लॉबी तक आप कंप्यूटर को हर जगह पाएंगे। कंप्यूटर एक प्रोडक्ट के कारण होने के कारण हम इमेजिन कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि हाँ कंप्यूटर के कितने उपयोग हो सकते हैं। AI वस्तुतः सॉफ्टवेयर ही है। सॉफ्टवेयर कहने का तात्पर्य यह है कि वो टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है, जैसे कंप्यूटर था, जैसे TV था, वो एक प्रोडक्ट था। लेकिन जैसे इंटरनेट है, दो कंप्यूटर्स के बीच में, चले इंटरनेट में मैं कहता हूं कि कुछ हार्डवेयर रहता है, वायर्स या वायरल है, लेकिन AI जो रहेगा वो कंप्यूटर के बैक एंड पे कंप्यूटर के प्रयोग को 10 गुना या 100 गुना या 1000 गुना और प्रभावी बनाएगा। उदाहरण मैंने आपको बताया कि 4-5 लोग जो मिलके एक शहर के खांचे को डिजिटाइज करते थे, वो AI कुछ क्षणों में, कुछ सेकेंडों में कर लेता है। या आपके पास मान लीजिए सेंसस डेटा है एक शहर का, लगभग 20 लाख लोगों के अलग अलग उनके सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया, उसकी आप जानकारी है, उससे अगर आपको एनालाइज करना है किसी विशेष पहलू पे, तो आपको पहले उसमें कुछ प्रक्रियाएं लगती थी, कुछ समय लगता था, कुछ ऊर्जा लगती थी, अब वो आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो मूल रूप से ये बैकएंड में काम करने वाला एक टेंजिबल माध्यम, मीडियम फॉर्म में ना होने के कारण इसको सॉफ्टवेयर तो सही नहीं होगा, लेकिन एक नॉन टेंजिबल रेवोल्यूशन है जो कंप्यूटर्स के बैकएंड पे हो रहा है, जो हमारे कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता है। ChatGPT आपने बोला, अब ChatGPT आने से पहले लेखकों के, कॉपीराइटर्स की बहुत अच्छी दुकान चलती थी, लेकिन एक ऐसा एप्लीकेशन जो हर मोबाइल में जाके आपको रेडीमेड स्क्रिप्ट दे दे, आपको कॉपीराइट दे दे, तो ये बैकएंड में ही संचालित हो रहा है, वही AI है।
2: एक बात जो अभी भी आपने कही कि 5 या 6 लोगों का फुटप्रिंट लगता था, 5-6 लोग उस पर 2-3 दिन 6 दिन काम करते थे, तो अब वो 5-6 लोग नहीं लग रहे, एक हाँ। बात दूसरी चीज, उतना समय भी नहीं लग रहा।
3: बिल्कुल।
2: तो क्या माने AI आने से लोगों के काम छिन गए?
3: देखिए, कोई भी नई तकनीक जब आती है तो अपने साथ कुछ तो कार्य क्षेत्र में चेंज लाती है। कंप्यूटर्स के आने के पहले मुझे याद है जब मैं छोटा था तो टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट रहते थे, शॉर्ट हैंड टाइपिंग होती थी, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग के कोर्सेज होते थे और इसमें कई लोग जाते थे। कंप्यूटर्स आने के बाद और कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन के बाद, जब कंप्यूटर्स का फॉर्म फैक्टर, जब स्मार्टफोन आ गए या अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते गए, इंटरनेट पे बहुत सारी सुविधाएं मिलती गई, तो अब ये टाइपराइटर भी ऑब्सोलीट हो गया। DTP का जो एक व्यवसाय चलता था अपने भोपाल के जवाहर चौक में, आपको याद होगा कितने सारे DTP की जगह थी, या साइबर कैफे चलते थे। तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी अपने साथ डिसरप्शन लाती है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सच है कि जो मैनुअल रिपीटेटिव काम है, जैसे नक्शे में फीचर्स को आइडेंटिफाई करना या रिसर्च करना, लाइब्रेरी में जाके अपने काम की चीज ढूंढ के लाना, तो जो मैनुअल रिपीटेटिव टास्क है वो काफी हद तक ऑटोमेट होने से मैन पावर काफी फ्री हो जाएगी। लेकिन सिर्फ इसका एक पहलू को देख के ये बोलना कि इतने सारे लोग अगर नहीं कर पाएंगे तो वो करेंगे क्या, ये थोड़ा बेमानी होगा। क्योंकि एक तरफ तो लोग फ्री हो रहे हैं रिपीटेटिव टास्क, तो ChatGPT उनको ये सुविधा भी देता है कि वो चाहें तो कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर बनने में सबसे बड़ी बाधा आती है टेक्नोलॉजी के, कैमरे की, आज सबके पास स्मार्टफोन है, विषय की और विषय के प्रस्तुतिकरण की। आज ChatGPT में आप अपने एक स्क्रिप्ट डालिए या उससे बोल दीजिए कि भाई इस विषय के बारे में कोई जानकारी दे। हाँ, ये जरूर है कि वो जानकारी सही है कि नहीं है वो हमको देखना है, लेकिन अगर जानकारी आ गई तो उसे किस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म वीडियो में 30 सेकंड 60 सेकंड में क्लब डाउन करना, ये हर कोई कर सकता है अपने मोबाइल से। तो लोगों के पास जीविकोपार्जन के, स्किल डेवलपमेंट के नए आयाम भी खुलेंगे। तो स्किल रिफॉर्म करना, स्किल डेवलपमेंट करने की तो आवश्यकता रहेगी, लेकिन इस विषय में बहुत ज्यादा सोचना कि बेरोजगारी बढ़ाएगा, मेरे ख्याल से जॉब का नेचर बदल जाएगा और बदलते समय में लोगों को भी उस स्किल को रीडेवलप करना पड़ेगा। ये AI एक आयाम लाने वाला है। मैं यहाँ पे जो प्रशासनिक अकादमी है वहाँ पे भी इसी विषय पे ट्रेनिंग लेने जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं कहता हूँ कि बदले समय में AI के युग में सफलता पाने के लिए, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो, प्रोफेशनल में हो, सबसे जरूरी रहेगा 3 चीज़ों करना, लर्न, अनलर्न और रीलर्न, यानी सीखना, फिर उसे भुलाना और पुनः सीखना। क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से परिवर्तन लाएगी उसमें मुझे भी एज अ शिक्षक, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक डिटेल उदाहरण दूंगा, IIT और के मेरे कुछ साथी शिक्षक है और हम लोग किस विषय में विवेचना करते हैं कि AI हमको रिप्लेस ना कर दे, हमें भी अपने फील्ड में रिलेवेंट बनने के लिए स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अनलर्न करना पड़ेगा और रीलर्न करना पड़ेगा।
2: मैन पावर की भी आपने बात कही थी, तो इसे मैन पावर फ्री करना बेरोजगारी ही बढ़ाना तो है या नहीं?
3: देखिए, जो 5 दिन हम लोग नक्शा बनाने में लगाते थे, वो 5 दिन बचा के हम उसको नक्शों की अच्छे से विवेचना करने में लगा सकते हैं, एडवांस स्टडी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं किसी शहर के सड़कों को डिजिटाइज करने में 2 दिन लगाता था, अब मेरे को सड़कें बन रही हैं, और इनफैक्ट मेरे को ऐसा सौभाग्य मिला था अमृत के मास्टर प्लान प्रोजेक्ट में, मणिपुर के इम्फाल शहर के मास्टर प्लान प्रिपरेशन में, वहाँ पे हमें जो इसरो से शीट्स आई सर्वे ऑफ इंडिया ने भेजी, वो ऑलरेडी डिजिटाइज थी। हमको वो नक्शा ले जाके ग्राउंड ट्रूथिंग करनी थी, मतलब वो नक्शे ले जाके साइट में चेक करना था कि कौन से फीचर सही है कौन से गलत है। तो जो प्रक्रिया 6 महीने लेती थी वो अब मेरे ख्याल से 25 या 30 दिन में पूरी हो गई। हम लोग नक्शे लेके जाते थे, पेंसिल से मार्क करते थे और वही भेज के इसरो में अपडेट कर लेते थे। इस बचे हुए समय को हमने उस नगर का, इम्फाल की, अच्छे नगरी नियोजन, शहरी नियोजन कैसे किया जाए, कैसे हरियाली के बारे में क्वांटिफाइड स्टडी की जाए, उसमें लगाया। तो जहां समय बचता है वहां पे उसे दूसरे तरीके से उपयोग करने की सुविधा बढ़ जाती है। कई लोग जो AI विषय विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि वर्क डेज लिमिटेड हो जाएंगे, मतलब जो 6 दिन या 7 दिन या 5 दिन काम होता है आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो ये वर्क आवर्स कम हो जाएंगे, तो इस चीज को हम चैनलाइज कर सकते हैं दूसरे उसमें। हाँ, ऐसे लोग जो मैं कह सकता हूँ शैक्षणिक स्तर पे नीचे है, जो इतने स्किल डेवलपमेंट नहीं है, उनके लिए भी चीजों या तकनीक के प्रति उनकी पहुंच जो है वो और सुविधायुक्त हो जाएगी। तो अगर वो चाहे तो इसकी मदद से नए स्किल्स को सीख के अपने आप को मार्केट रिलेवेंट बना सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हर युग में हुआ है। ये टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन चूंकि AI इतनी तेजी से चेंज हो रही है तो बहुत आसानी से लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, लेकिन हाँ देखा जाए तो लोगों के पास ये संभावना रहेगी कि अपनी स्किल को अनलर्न करके कैसे वो रीलर्न करके मार्केट रिलेवेंट बन सकते हैं।
2: अनुग्रह जी, एक बात और कि अभी AI को आए हुए तकरीबन 2-2.5 साल हुए हैं अगर माने, तो अभी सबसे ज्यादा उपयोग इसका कहाँ हो रहा है?
3: देखिए, मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोध विषय है ये 1960 से चल रहा था। 2-4 साल पहले इसलिए हुआ है क्योंकि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी उस लेवल पे पहुंच गई थी कि हम AI के एडवांटेजेस को रियल लाइफ में देख पाए। जैसे मैंने बताया कि मैं 2014 से 16 के बीच में जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तब मैंने AI के कुछ परिणाम देखे थे। 2022 के एंड में जब ChatGPT लॉन्च हुआ, वो पहला ऐसा स्टेज था कि एक सामान्य आदमी भी एक तरह से यूज कर सकता था AI को अपने दैनिक डेली डे टू डे टास्क के लिए। तो आज की डेट में मेरे ख्याल से पिछले 2-2.5 साल में ChatGPT हो गया है, Gemini हो गया है, Airtel के यूजर है तो Perplexity मिल जाता है फ्री में, इतने ज्यादा लार्ज ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग मॉडल्स हैं, तो ऑलमोस्ट हर विषय में ही इनकी उपयोगिता हो रही है। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगा, इससे आप समझ जाएंगे कि सबसे ज्यादा कहाँ यूज हो रहा है। इसकी बजाय अगर प्रश्न ये हो कि कहाँ यूज नहीं हो रहा है, वो है जैसे मैं अपने IIT कानपुर के कंप्यूटर साइंस के बहुत वरिष्ठ सीनियर प्रोफेसर है उनके साथ बैठा था, IIT हैदराबाद की कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर के साथ बैठा था, और रुड़की के प्रोफेसर के साथ बैठा था, और भी मेरे साथी लोग थे। हम लोग एक वर्कशॉप में गए थे, वहां पे चर्चा हो रही थी, तो वहां पे कंप्यूटर साइंस कानपुर वाले कंप्यूटर साइंस के सीनियर प्रोफेसर ने बोला कि भाई ये AI हम लोग को भी रिप्लेस कर देगा। तो मेरे को थोड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने बोला यार IIT के कंप्यूटर साइंस के जिन्होंने मशीन लर्निंग पे पिछले 20-30 सालों से शोध किया हो, वो प्रोफेसर ऐसा बोला। मैंने पूछा प्रकाश डाली, तो बोला कि IIT में उनका एक स्टूडेंट है उनके विषय का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, असाइनमेंट प्रॉब्लम प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया करता है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाता है, मतलब ही इज वेरी शार्प, लेकिन वो क्लास अटेंड नहीं करता
2: जी।
3: तो जब उनसे पूछा गया, चूंकि उसमें मेंटरशिप होता है IIT में, डिप्रेशन में नहीं चले जाए, सुसाइड नहीं हो, तो संवाद अच्छा रहता है टीचर और स्टूडेंट का, तो उसको बुला के पूछा भाई आप पढ़ाई में अच्छे हो लेकिन क्लास नहीं आ रहे हो, कुछ सब कुछ कुशल मंगल है, क्या समस्या है? तो बच्चे ने बोला सर जो मैं कॉन्सेप्ट्स क्लास में पढ़ाए जाते हैं, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो मैं AI की मदद से इंटरैक्टिव तरीके से, 1 घंटे का मान लीजिए क्लास है तो 15 मिनट में वो टॉपिक समझ जाता हूँ। और ऐसे टूल्स हैं, मैं भी अपने टीचिंग पेडागोजी में पढ़ाने के लिए कई ऐसे टूल्स यूज करता हूँ कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, कैसे इसको सरल भाषा में समझाया जा सके। तो बोले सर 1 घंटे की क्लास का मटेरियल मैं 15 मिनट में कंज्यूम कर लेता हूँ और वो मेरे रिजल्ट में प्रोजेक्ट में दिख रहा है। बचे हुए 45 मिनट में मैं इंट्राडे ट्रेडिंग या ऐसा कोई नया स्किल सीखता हूँ जो मेरे जीविकोपार्जन में या प्लेसमेंट में मेरे काम आए, तो मेरे लिए क्लास आने का इंसेंटिव क्या है? अब ये प्रश्न देखिए, कॉलेज IITs में अगर एक उद्देश्य देखा जाए तो ठीक है, आप लोगों को पैकेज अच्छा मिले, इंस्टीट्यूट्स शुड गिव गुड प्लेसमेंट टू द स्टूडेंट्स, तो बच्चा कमाने लायक स्किल सीख रहा है, और जो कॉन्सेप्ट उसको क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं शिक्षकों के द्वारा वो बोल रहा है कि वो 15 मिनट में सीख रहा है। तो प्रोफेसर ने यही कहा कि भाई AI तो हमको भी रिप्लेस कर देगा। अब इस बदलते दौर में हम ऐसा क्या करें कि हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल से बेहतर बच्चों को एंगेज करके रख पाए, ये चैलेंज है। ये मैंने आपको उदाहरण इसलिए बताया कि टीचिंग एक ऐसा विषय है जहाँ पे अपन कोशिश करते हैं कि 1-on-1 बात करके बच्चों के सर्वांगीण विकास में योगदान दिया जाए, वहाँ पे भी AI घुस चुका है। और ये एक फील्ड का है, जैसे मैंने आपको बताया सोशल मीडिया में आजकल कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर्स की भरमार आ गई है। आपके आजू बाजू भी कई लोग ऐसे होंगे जो जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था कि ये लेखनी में उतने उत्कृष्ट हो सकते हैं, वो सब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, कैमरे में ऑटोमेटेड फिल्टर्स हैं। आप किसी व्यक्ति को निजी रूप से जानते हैं लेकिन आप उसकी तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा यार इसने प्रोफेशनल फोटोशूट करवाया हो, उसके पास AI इनेबल्ड कैमरा या फिल्टर्स है। तो प्रश्न अगर ऐसा हो कि कौन से ऐसे विषय हैं जहाँ पे AI पेनिट्रेट नहीं करेगा,
2: वो डीपी में बड़ा भारी एक परिवर्तन दिख ही रहा है।
3: हाँ,
2: मतलब वो ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अपन ने बात ही शुरू करी थी विषय भी अपना एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब कुल मिला के आर्टिफिशियल उसमें सब कुछ है, बहुत कुछ है, वास्तविक कितना है ये एक अलग विषय है।
3: हाँ।
2: उस आर्टिफिशियल को कितना आप और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात आपने कही थी अभी अभी, 15 मिनट में कोई भी स्टूडेंट है वो अपने विषय को उससे बेहतर समझ लेता है, तो ये अंतर कैसा है? क्या मतलब वाकई जैसे कोई 10वीं का 12वीं का स्टूडेंट या कहीं का पढ़ने वाला इंजीनियरिंग का मेडिकल स्टूडेंट, ऐसा क्या है कि वो उसको उसमें 15 मिनट में उस चीज़ को समझ लेता है बनस्पत टीचर के समझने से?
3: देखिए, आप भी कभी कोशिश करके देखिएगा कोई ऐसा तकनीकी विषय जिसके बारे में आपको जानना है, जैसे AI बार लीजिए, आप ChatGPT खोल के उसमें लिखिएगा, इमेजिन यू आर अ टीचर,
2: जी
3: एक्सप्लेन AI टू मी लाइक आई एम अ क्लास 10th स्टूडेंट,
2: जी
3: क्लास 5th स्टूडेंट करके देखिएगा, उसका आउटपुट अलग रहेगा। आई हैव अ स्टूडेंट परस्यूइंग लेट्स से BA इन पॉलिटिकल साइंस, तो आप पाएंगे कि वो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, कोई भी ChatGPT हो या एंथ्रोपिक, वो हर बार आपके उस स्तर के हिसाब से आपको आंसर दे रहा है। इन सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का सर जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो बहुत विशाल है। मतलब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की काम करने की प्रक्रिया ऐसी रहती है कि दे डोंट अंडरस्टैंड, वो ये नहीं समझते कि वो क्या बोल रहे हैं। वो ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि उनको बहुत बड़े ट्रेनिंग डेटा सेट पर ट्रेन किया गया। इसको मैं अगर एक शब्दों में समझाना चाहूं तो एक पूरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें होती हैं उन किताबों की 10 गुना किताबों से उनको ट्रेन किया गया। मतलब उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने उन सारी किताबों को एक तरह से पढ़ा हुआ है और उस पूरे पढ़े हुए टेक्स्ट की मदद से वो अगला शब्द या अगला सेंटेंस प्रिडिक्ट करते हुए अपनी बात कहता है। तो उसका जो कॉर्पस ऑफ नॉलेज है वो बहुत ज्यादा विशाल है। मैं फिर दोहराऊंगा कि वो समझता नहीं है उन टेक्स्ट, उन लाइनों का, उन शब्दों का अर्थ नहीं समझता, लेकिन उसने चीजों के पैटर्न को समझा है, ग्रामर के पैटर्न को समझा है, सब्जेक्ट के पैटर्न को समझा है, और उसी तर्ज पे वो अगले शब्द, अगले वाक्य, अगले पैराग्राफ रिक्रिएट कर रहा है। तो उसका कॉर्पस ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा है। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में जितनी किताबें नहीं पढ़ पाएगा, आज के लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑलरेडी उससे ज्यादा किताबें पढ़ चुके हैं। तो उस ब्रॉड कॉर्पस ऑफ नॉलेज से वो कैसे कंटेक्चुअलाइज करके अपने सवाल को जवाब दे पा रहा है वो उसे बहुत इफेक्टिव बनाता है टीचिंग के लिए। दूसरा होता है जैसे अपन टीचर स्टूडेंट रेशियो की बात करते हैं, आमतौर पे देखा जाए तो जितने कम स्टूडेंट होंगे पर टीचर उतना बढ़िया टीचिंग पेडागोजी होगी। अब समस्या यही आती थी कि भाई ऐसा तो कोई परिस्थिति बनती नहीं है कि एक टीचर एक स्टूडेंट के ऊपर हो, एटलीस्ट 10 या 15 का तो बैच हो गई, और जितने ज्यादा बच्चे होंगे टीचर के लिए एक बच्चे पे ध्यान देना उतना मुश्किल होगा। यहाँ पे आपके पास एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो हर बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से, उसके रुचि के विषयों के हिसाब से, उसके बैकग्राउंड के हिसाब से इंडिविजुअली उसको कंटेंट प्रोड्यूस कर सकता है
2: जी।
3: तो ये AI का एडवांटेज है। दैट बीइंग सेड, इतना सब करने के अलावा AI के बहुत भयंकर दुष्परिणाम भी है। यहाँ पे एक दुष्परिणाम जो मैं बताना चाहूंगा ताकि बैलेंस हो जाए कहानी, वो ये है कि चूंकि AI समझता नहीं है शब्दों को, वाक्यों को, वो स्टैटिस्टिकल पैटर्न पे अगला वर्ड, अगला लाइन, अगला पैराग्राफ प्रेडिक्ट कर रहा है, तो AI कई बार हेलुसिनेट भी कर लेता है या गलत जानकारी भी दे सकता है। तो ये चीज भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो AI बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि कहते हैं कि ट्रेनिंग डेटा सेट में जो है वो अगर सही है तो AI सही प्रेडिक्ट करेगा, अगर उसमें ट्रेनिंग डेटा सेट में बायस है, जैसे आज से 2-3 साल पहले बड़ा अच्छा एक केस हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं पे बताया कि ChatGPT से अगर आप बोले इमेज जनरेट करने को कि एक व्यक्ति उल्टे हाथ से लिख रहा है, लेफ्ट हैंड से, तो वो क्रिएट नहीं कर सकता। लोगों ने बड़ा इसको हल्के पे लिया कि यार बताइए प्रधानमंत्री जी कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो सही था, ChatGPT से अगर आप प्रॉम्प्ट में लिखेंगे कि भैया एक ऐसे फोटो जनरेट करो जिसमें व्यक्ति उल्टे हाथ से लिख रहा, वो लेफ्ट हैंड से लिखने वाले व्यक्ति की फोटो बना ही नहीं सकता था। ये मैंने क्लास में बच्चों को करके दिखाया था, शायद अब वो बता सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस जिन इमेजेस पे वो ट्रेन हुआ होगा या जिन कॉन्टेक्स्ट पे वो ट्रेन हुआ होगा उसमें उसके पास कोई लेफ्ट हैंड से ड्रॉ करते हुए व्यक्ति की इमेज उसने देखी या समझी नहीं होगी, तो उसके ट्रेनिंग डेटा सेट में चूंकि सब राइट हैंड से लिख रहे थे इसलिए वो भी राइट हैंड से क्रिएट कर रहा था। तो एक तो ट्रेनिंग डेटा सेट की उपलब्धता, उसके बायसनेस, और दूसरा वो जो आउटपुट जनरेट कर रहा है वो सही है कि नहीं, ये देखना आवश्यक है, अन्यथा जो एडवांटेज अपन डिस्कस कर रहे हैं वो पूरी तरह उल्टा जा सकते हैं।
2: डॉक्टर अनुग्रह नगाइच हमारे साथ मौजूद थे आज स्टूडियो में, उन्होंने इतना तफसील से इस विषय को बताया हमें। कार्यक्रम टेक गुरु में आज AI पर जो हमने बातचीत की उसमें इस भाग में हमने जाना कि आखिर AI है क्या, AI कहां कहां अपना असर डालने वाला है, और ऐसे कई सारे प्रश्न हैं। डॉक्टर अनुग्रह नगाइच का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: ये चर्चा जारी रहेगी आगे भी। तो ये था कार्यक्रम टेक गुरु जिसमें आज हमने बात की AI पर। ये पूरा कार्यक्रम आपके बीच में जो पहुंचाया, इसके मार्गदर्शक थे संतोष कुमार वर्मा जी, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग रहा हमारे साथ सतीश पाथम का, और मैं हूं आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति और सुनते रहिए आपका अपना 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी।

नमस्कार, मैं नितिन मुकेश। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।

0: मैं हूँ मितुल प्रदीप, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नजर, जब एक उपहार राजनीतिक आत्मसमर्पण का हथियार बन गया, क्या आप जानते हैं कि 18वीं सदी के भारतीय कूटनीति की दुनिया में एक साधारण सा उपहार राजनीतिक आत्मसमर्पण का हथियार हो सकता था? ये कहानी है नजर की, यानी वो औपचारिक उपहार जो अधीनता का प्रतीक था और इस बात की कि भारत के दूसरे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस इसे प्रतिबंधित करने के लिए इतने जुनूनी क्यों हो गए थे। नजर के डर को समझने के लिए हमें पहले कॉर्नवालिस के पूर्ववर्ती वॉरेन हेस्टिंग्स को देखना होगा। हेस्टिंग्स का मानना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जीवित रहने के लिए मुगल मुखौटा पहनना होगा। वे मुगल राजकुमारों के साथ भव्य जुलूसों में निकलते थे और इस राजनीतिक कल्पना को स्वीकार करते थे कि कंपनी सम्राट की सेवक है। इस दुनिया में नजर का आदान प्रदान शासक और शासित के बीच परिचित संबंधों का मॉडल था। इन उपहारों को भेंट करके ब्रिटिश अधिकारी स्वदेशी वैधता के सदियों पुराने नाटकीय प्रदर्शन में अपनी भूमिका निभा रहे थे। लेकिन जब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आए तो उन्होंने चीजों को बहुत अलग नजरिए से देखा। कॉर्नवालिस एक ब्रिटिश कुलीन और पेशेवर सैनिक थे, जिनके पास उन चीजों के लिए धैर्य नहीं था जिन्हें वे अपमानजनक समारोह कहते थे। उनके लिए किसी भारतीय शासक को नजर भेंट करना कोई शिष्टाचार नहीं था, बल्कि ये एक अपमानजनक स्थिति थी जिसने ब्रिटिश श्रेष्ठता के भ्रम को चकनाचूर कर दिया था। ये तनाव 1789 में चार्ल्स मैलेट नामक एक राजनयिक के साथ चरम पर पहुंच गया। मैलेट मराठा संघ के नेता पेशवा के दरबार में कंपनी के रेजिडेंट थे। एक औपचारिक बैठक के दौरान उम्मीद की गई कि मैलेट अपने हाथों से नजर पेश करेंगे। क्या आप जानते हैं कि कॉर्नवालिस ने उनसे क्या कहा? उन्होंने मैलेट को इनकार करने का आदेश दिया और जोर देकर कहा कि उन्हें कभी भी, यहाँ तक कि किसी नौकर के माध्यम से भी, खुद को ऐसी स्थिति में नहीं रखना चाहिए। कॉर्नवालिस का मानना था कि ब्रिटिश सरकार की गरिमा ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसने साम्राज्य को थाम रखा है। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय समाज अत्यंत सतर्क है और किसी स्थानीय राजकुमार के प्रति व्यक्तिगत सम्मान के किसी भी संकेत को व्यक्तिगत अक्षमता या कमजोरी के रूप में देखा जाएगा। उन्हें डर था कि यदि अंग्रेज अधीनस्थ दिखाई दिए तो उन्हें हीन वर्ग के लोगों के रूप में देखा जाएगा और कंपनी का विचारों का साम्राज्य गायब हो जाएगा। नजर पर प्रतिबंध लगाकर कॉर्नवालिस मुगल मुखौटे को उतार फेंकने और उसकी जगह अंग्रेजों के अडिग चरित्र को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। वे कंपनी को शौकिया और विश्वसनीय व्यापारियों के समूह से एक पेशेवर नौकरशाही में बदलना चाहते थे, जो भारतीय समाज से अलग और उनसे ऊपर खड़ी हो। ये प्रतिबंध केवल शिष्टाचार के बारे में नहीं था, ये मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता की घोषणा थी। कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि प्रतिष्ठा के दम पर टिके राज्य में अंग्रेज अब अधीनस्थ दिखने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। नजर का डर हमें एक दिलचस्प सबक सिखाता है। शुरुआती राज में एक उपहार केवल एक उपहार नहीं था, ये उस साम्राज्य के कवच में एक दरार थी जो अपने दिल में राजनीतिक नाटक का एक नाजुक हिस्सा था।
2: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारी देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: ये रेडियो आजाद हिंद है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारत विभूति।
2: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।
3: नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है हमारे आज के इस बेहद खास प्रसारण भारत विभूति में। एक ऐसी श्रृंखला जिसमें हम उन व्यक्तित्वों को याद करते हैं जिन्होंने अपने विचारों, कर्मों और साधना से भारत की आत्मा को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया।
2: जी हाँ, आज की ये कड़ी समर्पित है एक ऐसे योग पुरुष को जिनकी 70 वर्षों से अधिक की साधना ने योग को केवल आश्रमों और गुरुकुलों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे घर घर, देश देश और महाद्वीप महाद्वीप तक पहुंचाया। एक ऐसी तपस्या जिसमें शरीर की सीमाएं थीं पर आत्मबल असीमित था।
3: जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं योगाचार्य BKS अयंगर की। दुनिया जिन्हें उनकी कालजयी कृति लाइट ऑन योगा के माध्यम से जानती है और जिनका नाम आज योग की एक पूरी विधा का पर्याय बन चुका है।
2: उनका पूरा नाम था योगाचार्य बेल्लूर कृष्णमाचार सुंदर राज अयंगर। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने योग को व्यायाम या स्वास्थ्य का साधन नहीं माना, बल्कि उसे जीवन जीने की एक अनुशासित और सजग साधना के रूप में स्थापित किया।
3: शारीरिक दुर्बलताओं, कठिन परिस्थितियों और संघर्षों से भरे जीवन में भी अयंगर जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अनुभवों, प्रयोगों और गहन अभ्यास से ये सिद्ध किया कि योग हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वह स्वस्थ हो या रोगी, युवा हो या वृद्ध, कलाकार हो या साधारण गृहस्थ।
2: उनकी साधना में कठोर अनुशासन था पर उद्देश्य करुणा से भरा हुआ। उनकी शिक्षा में सख्ती थी पर उनके पीछे जीवन को बेहतर बनाने की गहरी भावना छिपी थी। आज के इस प्रसारण में हम उनके जीवन की उसी यात्रा को फिर से जीवंत करेंगे, संघर्ष से साधना तक, साधना से सिद्धि तक और फिर सिद्धि से सेवा तक।
3: 14 दिसंबर 1918 दक्षिण भारत के कर्नाटक का एक छोटा सा गांव बेल्लूर। आज सुबह की धुंध कच्ची धरती पर ऐसे बैठी थी जैसे समय भी ठहर गया हो। गांव की सकरी पगडंडियों पर बसे कुछ साधारण से घरों में ही एक गरीब ब्राह्मण परिवार में एक बालक ने जन्म लिया जो आगे चलकर संसार को योग का एक नया मार्ग दिखाने वाला था। बेल्लूर कृष्णाचार सुंदर राज अयंगर।
2: इस बालक के जन्म लेते ही उसकी सांसें मानो जीवन से संघर्ष करने लगी। वह 13 बच्चों वाले परिवार में माता पिता की 11वीं संतान था। माँ स्वयं पहले से ही इन्फ्लुएंजा जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं और ऐसे समय में एक ऐसा बालक जन्मा जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल, दुबला और कई बीमारियों से घिरा हुआ था।
3: बालक की हालत इतनी नाजुक थी कि जब उसे बाहों में उठाया जाता तो उसके शरीर का भार नहीं बल्कि उसकी असहाय कोमलता महसूस होती, जैसे वह जीवन और मृत्यु की सीमा पर खड़ा हो। डॉक्टरों की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी और उनके शब्दों में निराशा। उन्होंने माता पिता से कह दिया कि इस बच्चे का जीवन शायद लंबा ना हो।
2: उस क्षण किसी को यह आभास भी न था कि यही दुर्बल सा बालक आगे चलकर अपने संकल्प और साधना से न केवल अपने जीवन को बदलेगा बल्कि लाखों लोगों के जीवन में स्वास्थ्य, आशा और संतुलन का प्रकाश भी फैलाएगा।
3: डॉक्टरों की ये बात सुनकर माँ की आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा। इस बालक के पिता की चुप्पी में दर्द चीख रहा था, पर इतिहास साक्षी है कि वही बच्चे जिन्हें दुनिया असहाय समझ लेती है आगे चलकर अपनी नियति को चुनौती देते हैं और अपना भविष्य स्वयं लिखते हैं।
2: कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है। कौन जानता था कि जन्म लेते ही जीवन से संघर्ष करने वाला ये बालक आने वाले समय में सांस को ही दुनिया का सबसे बड़ा उपचार बनाना सिखाएगा। वह दर्द से भरा हुआ था, पर शायद वही दर्द उसका सुनहरा भविष्य गढ़ने वाला था। कमजोरी भले ही उसके शरीर की थी, पर एक अद्भुत अदम्य शक्ति उसके भीतर से प्रकट होने को आतुर थी।
3: एक ऐसी शक्ति जो उस बालक को केवल जीवित ही नहीं रखेगी, बल्कि उसे योग की दुनिया का सूर्य बना देगी। कौन जानता था कि बेलूर की यह मिट्टी, यह साधारण सा घर, यह बीमार बालक एक दिन विश्व के करोड़ों लोगों के जीवन को छुएगा, उनके जीवन को निरोगी रहना सिखाएगा।
2: अयंगर का जीवन आरंभ में अनुकूल नहीं था। 13 बच्चों की देखभाल करने वाली उनकी अकेली माँ खुद ही अक्सर बीमार रहा करती थी। वहीं टाइफाइड, मलेरिया और तपेदिक सहित बचपन की कई बीमारियों के कारण अयंगर की स्कूली शिक्षा भी सीमित रही। उनके पिता का निधन 9 वर्ष की आयु में हो गया और लगातार खराब स्वास्थ्य, कुपोषण और गरीबी ने 14 वर्ष की आयु में उनकी जीवन प्रत्याशा को और कम कर दिया।
3: संसार में आते ही अयंगर की जीवन परीक्षा शुरू हो गई थी। जैसे जैसे ये बालक बढ़ रहा था, उसका शरीर कमजोर हो रहा था। वो कई बीमारियों से ग्रसित था। परिवार पहले ही गरीबी से जूझ रहा था। तभी उनके जीवन में प्रवेश हुआ एक ऐसे गुरु का जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी। कुछ वर्षों में ही बचपन की बीमारी और संघर्षों का ये बुरा दौर गुजर गया। वो युवा अब जीवन के एक नए मोड़ पर था।
2: कुछ समय बाद अयंगर मैसूर रहने चले गए, जहां उनका जीवन एकदम बदल गया। यहां उनका मार्गदर्शन करने वाले थे पूजनीय योगाचार्य तिरुमलई कृष्णमाचार्य, उनके बहनोई, उनके गुरु और उनके योग के उस काल के महानतम विद्वान।
3: अयंगर के जीवन की शुरुआत भले ही कठिन थी, लेकिन कठोर अभ्यास, अनुशासन, गुरु की डांट और घंटों तक आसनों की साधना, मानो जैसे अयंगर जी के भीतर एक चुप सा संकल्प जाग उठा था, अगर जीवित रहना है तो योग ही जीवन बनेगा।
2: हालांकि कृष्णमाचार्य का प्रशिक्षण बिल्कुल भी सरल नहीं था। यहाँ बेहद कठिन, निर्भीक और अत्यंत अनुशासित जीवन शैली थी, अब जिसे अपनाने के अलावा अयंगर के पास कोई और विकल्प था ही नहीं। उनके मन में विचार आया कि अब यह केवल साधना नहीं है, यह उनके अस्तित्व का प्रश्न है। जीना है तो योग करना ही होगा।
3: गुरु का आदेश था अभ्यास, निरंतर अभ्यास करो और शरीर का हर दर्द आपके परिवर्तन की पहली सीढ़ी बन जाएगा। गुरु के इस आदेश से युवा अयंगर तप की अग्नि में उतर गए। दिन हो या रात, कठोर आसन, कठिन अभ्यास और शरीर को योग की अंतिम सीमा तक ले जाना, यही उनकी दिनचर्या बन गई।
2: अयंगर की शरीर को साधने की यात्रा शुरू हो चुकी थी। मन को संतुलित करना और आत्मा को ऊंचा उठाना अब यही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया था। दिन में 10 से 12 घंटे अभ्यास, कभी कठिन, कभी वेदनादायक, पर हर दिन आगे बढ़ना है, यही एक ही संकल्प। उनकी साधना का भी बस एक यही सूत्र था, अभ्यास, अभ्यास और केवल अभ्यास।
3: उन्होंने अपने शरीर को एक प्रयोगशाला बना लिया। कौन सा आसन किस रेखा पर टिकेगा, किस सांस पर उसे स्थिरता मिलेगी, इन सब का वो वैज्ञानिक परीक्षण किया करते और अपनी इसी तपस्या के फलस्वरूप आगे चलकर उनके जीवन को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और कई उपलब्धियां उनके नाम लिख दी गईं।
2: वर्ष 1937, सिर्फ 18 वर्ष की आयु में उन्हें अपने परिवार से दूर एक बार फिर पुणे भेज दिया गया। एक बिल्कुल नया शहर, बिल्कुल नया जीवन, पर मन में एक वचन था, योग को समझूंगा या प्रयास में मर जाऊंगा। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा कम ही लोग कर पाते हैं। अयंगर ने इस प्रतिज्ञा को आत्मसात कर लिया।
3: जीवन के इतने उतार चढ़ाव, संघर्ष और असहनीय पीड़ा को बहुत कम उम्र में देख चुके अयंगर यह भली भांति जानते थे कि उनका मार्ग संन्यास तो नहीं है। उन्होंने कभी संसार से पलायन नहीं किया। उन्होंने यह निर्णय स्पष्ट रूप से लिया कि वे गृहस्थ जीवन अपनाएंगे, विवाह करेंगे, परिवार बसाएंगे और समाज के बीच रहकर ही योग का अभ्यास और प्रचार करेंगे।
2: अयंगर के लिए योग किसी गुफा या आश्रम तक सीमित साधना नहीं था। उनके लिए योग रोजमर्रा के जीवन का ही हिस्सा था, जैसे सांस लेना, चलना, काम करना और रिश्तों को निभाना। वे मानते थे कि सच्चा योग वही है जो सामान्य मनुष्य अपने घर, अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों के बीच में जी कर कर सके।
3: यही कारण था कि उन्होंने योग को साधारण जनमानस की भाषा में उतारा। उन्होंने दिखाया कि योग केवल तपस्वियों का नहीं, योगियों के लिए नहीं, बल्कि गृहस्थों, विद्यार्थियों, महिलाओं, वृद्धों और रोगियों सबके लिए है। उनके योग में जीवन से पलायन नहीं, जीवन से संवाद था।
2: धीरे धीरे अयंगर का जीवन इस बात का पुख्ता प्रमाण बन गया कि योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य

0: कहते हैं परिवार के साथ साथ जीवन में मित्रों का होना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि जो संबल, विश्वास और प्रेरणा एक सच्चा मित्र देता है वह शायद किसी और रिश्ते से नहीं मिल पाता। और जब जीवन में ऐसी मित्रता प्रवेश करती है तो वह कृष्ण सुदामा जैसी अमर मिसाल बन जाती है।
1: अयंगर जी के जीवन में भी ऐसा ही एक अद्भुत क्षण आया जब नियति ने उनका परिचय विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन से करवाया। यह मुलाकात केवल दो व्यक्तियों की भेंट नहीं थी, बल्कि योग और संगीत, दो साधनाओं के मिलन की शुरुआत थी, जिसने आगे चलकर अयंगर जी के जीवन और योग की दिशा को वैश्विक पहचान दिलाई।
0: जी हाँ, साल 1952 की बात है। मेनुहिन अपने वायलिन वादन के एक मुश्किल विषय से जूझ रहे थे। शरीर की थकान, सांस की पकड़ और मन की बेचैनी उनका प्रदर्शन प्रभावित कर रही थी। तभी किसी परिचित ने उन्हें अयंगर से मिलने की सलाह दी। मेनुहिन ने अयंगर के पास आकर योग का अभ्यास शुरू किया, जो केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, सांस और मन के बीच का संतुलन खोजने की एक विधि थी।
1: जैसे जैसे अभ्यास आगे बढ़ा, मेनुहिन ने अपने वादन में चमत्कारिक सुधार महसूस किया। उनकी पकड़ मजबूत हुई, सांसों का नियंत्रण बेहतर हुआ और मन अधिक केंद्रित हुआ। इस अनुभव ने दोनों के बीच गुरु शिष्य का बंधन गहरा कर दिया, जो एक सच्ची मित्रता में भी बदल गया। मेनुहिन ने अयंगर को पश्चिम बुलाया, उनसे कहा, आइए हम अपने यहाँ लोगों को भी ये सिखाएं।
0: अयंगर ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और यही वो मोड़ बना जिसने भारत के बाहर अयंगर योग की मान्यता को जन्म दिया। 1960 के दशक में लंदन से एक आग्रह आया। शैक्षिक प्राधिकरण ने अयंगर से कहा कि वे विद्यालयों और कॉलेजों में योग पढ़ाएं। यह कार्यक्रम न केवल शिक्षकों और छात्रों के बीच लोकप्रिय हुआ, बल्कि ब्रिटेन में अयंगर योग के लिए पहला ठोस आधार बना।
1: उन यात्राओं में अयंगर ने सिर्फ योग के आसन नहीं सिखाए, उन्होंने यह दिखाया कि योग कैसे कलाकारों, संगीतकारों और साधारण लोगों के जीवन में शारीरिक और मानसिक सुधार ला सकता है। मेनुहिन ने बाद में कहा कि अयंगर मुझे मेरे सबसे महान वायलिन शिक्षक की तरह मार्गदर्शित करते रहे। यह तारीफ किसी पुरस्कार से कम नहीं थी। उनकी मित्रता ने पश्चिम में योग के प्रति विश्वास और रुचि जगाई।
0: अयंगर और मेनुहिन की यह साझेदारी एक सांस्कृतिक सेतु बनकर उभरी, संगीत और योग के बीच का संवाद। इस मित्रता से यह संदेश गया कि ज्ञान, स्वास्थ्य और कला सीमाओं से परे साझा किए जा सकते हैं। आज भी जिन स्थानों पर अयंगर ने पढ़ाया वहां उनके प्रभाव के निशान दिखाई देते हैं, जैसे स्वास्थ्य सुधार, बेहतर प्रदर्शन और जीवन के लिए नए दृष्टिकोण।
1: मेनुहिन को अयंगर की साधना में जो दिव्यता दिखाई दी थी उसमें दुनिया को बदलने की ताकत थी। इस अटूट मित्रता में एक ओर था संगीत का तपस्वी और दूसरी ओर था योग का साधक। मेनुहिन के पश्चिम आने का निमंत्रण स्वीकार करने के बाद अयंगर कभी नहीं रुके। यही था एक छोटी सी मुलाकात का एक बड़ा असर। जब एक महान संगीतकार और एक समर्पित योगाचार्य मिलते हैं तो वह सिर्फ व्यक्तिगत लाभ नहीं रहता, बल्कि एक पूरी सभ्यता को एक नया मार्ग भी दिखा देता है।
0: इस योग साधक की इस ऐतिहासिक यात्रा ने उन्हें और भारतीय योग को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई। लंदन, पेरिस, जिनेवा, अमेरिका, जहां भी अयंगर जाते, लोग उनके सटीक और अनुशासित योग ज्ञान से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। उनका योग अब केवल अभ्यास नहीं, एक वैज्ञानिक पद्धति, एक सुरक्षित प्रणाली और दुनिया भर के लोगों के लिए आशा बन चुका था।
1: समय बीता, योग की उनकी साधना गहराती चली गई। 1973 में उनकी पत्नी इस दुनिया से चली गई। उनकी स्मृति को योग की पवित्र भूमि में अमर रखना अयंगर जी के लिए एक आध्यात्मिक कर्तव्य बन गया। अयंगर ने अपनी जीवन संगिनी राममणि के सम्मान में एक ऐसा संस्थान स्थापित किया जिसने योग की दुनिया की दिशा ही बदल दी। पुणे में स्थित राममणि अयंगर मेमोरियल योग संस्थान, यह संस्थान सिर्फ एक भवन नहीं था, यह था प्रेम, स्मृति और समर्पण का प्रतीक।
0: यहीं से योग को मिला एक व्यवस्थित ढांचा, एक वैज्ञानिक पद्धति और एक ऐसी दृष्टि जो पूरी दुनिया के लिए आदर्श बन गई। अयंगर अक्सर कहा करते थे, मेरी पत्नी का बलिदान मेरा आधार है, इसीलिए यह संस्थान सिर्फ भवन नहीं, हमारी साधना का घर है।
1: उनकी बेटी गीता अयंगर और पुत्र प्रकाश अयंगर दोनों ने उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाया और इस तरह अयंगर योग एक वैश्विक आंदोलन में बदल गया। अयंगर परिवार यह कोई सामान्य परिवार नहीं, यह तो योग की एक परंपरा है जो आज एक वैश्विक आंदोलन का स्वरूप ले चुकी है।
0: अयंगर ने एक कठोर लेकिन सुंदर शिक्षण पद्धति बनाई। अयंगर योग सिखाना हो तो सालों का अभ्यास, अनुशासन और परीक्षा अनिवार्य थी। आज 40 देशों में 1800 से अधिक संस्थान अयंगर योग का प्रसार कर रहे हैं। अयंगर का शिक्षण गहरा, सटीक और अत्यंत अनुशासित रहा है। वे कहा करते थे, योग मेरी जीवन शैली है। उनके 3 सिद्धांत संतुलन, सटीकता और स्थिरता योग की दुनिया में विख्यात हैं।
1: वे योग को लेकर इतने व्यवस्थित थे कि कभी कभी हास्य शैली में बताते थे कि लोग अक्सर उनके नाम BKS को बीट, कीक और शाउट समझ लेते हैं, क्योंकि वे गलत आसन को तुरंत सुधारते थे। उन्होंने छोटे समूहों से लेकर 1000 लोगों की कक्षाओं में योग सिखाया। 86 वर्ष की उम्र में कोलोराडो, 92 की उम्र में मॉस्को और बीजिंग में उन्होंने योग की कक्षाएं ली। दुनिया उनके सामने नतमस्तक थी।
0: चीन ने तो उनके सम्मान में डाक टिकट तक जारी किया। 1966 में उन्होंने दुनिया को एक कालजयी रचना योग पर प्रकाश, लाइट ऑन योगा, समर्पित की, जिसमें 600 से अधिक आसन और तकनीकें हैं। आज भी इसे योग की बाइबिल कहा जाता है। अब तक कुल 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है।
1: अयंगर ने 1993 में यहूदी मेनुहिन की प्रस्तावना के साथ लाइट ऑन द योगा, सूत्र ऑफ पतंजलि और 2012 में दलाई लामा की प्रस्तावना के साथ कोर ऑफ द योगा, सूत्र द डेफिनेटिव गाइड टू द फिलोसफी ऑफ योगा प्रकाशित की।
0: अयंगर के भारत के प्रति उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें 1991 में पद्मश्री पुरस्कार, वर्ष 2002 में पद्मभूषण और 2012 में प्रतिष्ठित IMC जुरान क्वालिटी मेडल से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन व्यक्तित्वों को दिया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में जागरूकता और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने में आदर्श भूमिका निभाई है।
1: अयंगर इस पुरस्कार को लेने वाले केवल 2 गैर उद्योगपतियों में से एक हैं। 2012 में उन्हें देश में गांधी जी के बाद 50 महानतम भारतीयों में से एक चुना गया था। अप्रैल 2014 में ही वे भारत गणराज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण को ग्रहण करने के लिए दिल्ली गए थे।
0: समारोह के बाद दिए एक इंटरव्यू में अयंगर ने अपनी जग प्रसिद्ध सादगी के साथ कहा, जीवन में हमारी बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। यह त्याग के लिए नहीं बना है। हम इस समाज में रहते हैं और समाज को कुछ वापस देना हमारा कर्तव्य है। त्याग का विचार मुझे 96 वर्ष की आयु में आएगा। त्याग का अर्थ है सांसारिक सुखों का आनंद छोड़ देना, लेकिन मैं आंतरिक सुख से परिपूर्ण हूँ।
1: उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 20 ग्रंथों का लेखन किया। ये अविश्वसनीय नहीं लगता कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने 14 साल में स्कूल छोड़ दिया, वही आगे चलकर योग का सबसे बड़ा दार्शनिक लेखक बन गया।
0: जब किसी में योग्यता होती है तो ईश्वर स्वयं उसमें सामर्थ्य भी भर देते हैं। जीवन के अभावों में पले बढ़े अयंगर सिर्फ योग के साधक ही नहीं थे, बल्कि वे लोक कल्याण के मार्ग पर चलने वाले तपस्वी भी थे। समाज की पीड़ा उन्हें भीतर तक छूती थी, इसीलिए उन्होंने अनेक सामाजिक कार्यों के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में अपना अहम योगदान दिया।
1: योग से मिले धन से अयंगर जी ने बेलूर ट्रस्ट की स्थापना की और उसी बेलूर ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने अपने पैतृक गांव को पानी, बिजली, अस्पताल, विद्यालय, कॉलेज और तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र की सौगात दी। उनकी यही सेवा भावना योग की तरह ही लोगों के जीवन में रोशनी बनकर पहुंची।
0: उन्होंने ऋषि पतंजलि का पहला मंदिर भी पुणे में बनवाया। पश्चिम में योग को विज्ञान और कला की तरह स्थापित करने का सबसे बड़ा श्रेय अयंगर को जाता है। अगर कोई आसन कठिन लगता तो वे कहते, प्रयास करो, जरूरत हो तो रस्सी, ईंट, कुर्सी का सहारा लो, तुम जरूर कर पाओगे।
1: और इसी कारण उन्हें फर्नीचर योगी भी कहा गया। आज जो हम योग के प्रॉप्स जानते हैं, उसकी शुरुआत अयंगर ने ही की थी। योग में प्रॉप्स का उपयोग, ये एकदम नया आविष्कार था जिसमें बेल्ट्स, ब्लॉक्स और बोल्स्टर शामिल थे।
0: बोल्स्टर को कुशन, एक तकिया या एक सहारे के रूप में भी जाना जाता है, ताकि हर व्यक्ति, चाहे वो कमजोर हो या वरिष्ठ हो, अपनी क्षमता के अनुसार सुरक्षित योग कर सके। उनकी योग पद्धति ने लाखों साधकों के जीवन को नया रूप दिया, जिससे कई चमत्कारी परिवर्तन योग साधकों ने महसूस किए। शरीर बदला, स्वास्थ्य सुधरा और मन स्थिर हुआ।
1: अयंगर की मुलाकात जब भी किसी साधक, चिंतक या योगी से होती थी, वे उनसे प्रभावित होते थे, उनके जीवन से प्रेरणा लेते, उनकी बातों से जीवन में संतोष का अनुभव करते। दलाई लामा से अपनी मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं जीवन भर योग का विद्यार्थी रहा हूँ। योग किसी जाति, धर्म या देश का नहीं, बल्कि यह पूरी मानवता का है। जीवन में हमारी कई जिम्मेदारियां हैं और समाज को कुछ लौटाना ही जीवन का उद्देश्य है।
0: अयंगर ने अपने योग जीवन में ये अनुभव किए कि स्वस्थ रहते हुए योग करने से हम कई बीमारियों से लड़ सकते हैं। यदि बीमार है तब भी योग से बीमारी कम की जा सकती है या उसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। उन्होंने राममणि अयंगर मेमोरियल योगा इंस्टीट्यूट संस्थान में और बाहर भी पश्चिमी डॉक्टरों के साथ मिलकर ऐसे तरीके खोजे जिनमें मरीज अपनी बीमारी के इलाज में सक्रिय रूप से शामिल हो।
1: अयंगर कहते थे, मेरी करुणा कठोर है, मैं बीमारी से लड़ता हूँ, व्यक्ति से नहीं, इसलिए मेरी दया भी कठोर है। आज पश्चिमी चिकित्सा भी उनके इस काम को गंभीरता से देख रही है। उनके इलाज और शोध के कई परिणाम प्रकाशित हो चुके हैं और वैज्ञानिक अध्ययनों के बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं।
0: उनके योग अभ्यास पर एक फिल्म बनाई गई थी। कैमरे में दिखाया गया कि कैसे वे आसनों के बीच बादलों की तरह तेजी से, सहजता से एक से दूसरे आसन में बहते चले जाते थे। यह देखना अद्भुत था, पर साथ ही खतरनाक भी।
1: धीरे धीरे अयंगर जी को यह समझ आया कि तेज गति वाला अभ्यास केवल युवा और अत्यंत स्वस्थ लोगों के लिए ही उपयुक्त है और इसमें गलतियों की संभावना भी बहुत अधिक रहती है। इसलिए उन्होंने अपने अभ्यास की चाल को धीमा किया। हर आसन के कोण, हर स्थिति, हर आंदोलन और हर श्वास का गहन अध्ययन शुरू किया।
0: यही वह पल था जब उनके भीतर शोध का एक नया संसार खुला और यही शोध बाद में योग की दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया। जब दुनिया में योग की क्रांति आई तब योग आसनों को पेटेंट कराने की होड़ होने लगी, जिसका उन्होंने वर्ष 2011 में खुलेआम विरोध किया। वो कहते थे, योग का अनुभव हर व्यक्ति का अधिकार है, यह बहस का विषय नहीं, अभ्यास का मार्ग है।
1: 1950 के दशक में अयंगर के मित्र के आह्वान पर शुरू हुई भारत के योग की विश्व यात्रा सतत चलती रही। उन्होंने पश्चिम को यह दिखाया कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि एक जीवन यात्रा है। उनकी पुस्तक लाइट ऑन योगा ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। आज भी उनकी ये किताब योग का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, जहां जहां वे पहुंचे वहां योग के मानो बीज फूट पड़े।
0: टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया। ये सम्मान केवल किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि भारत की योग परंपरा का था। अयंगर योग की कई विशेषताएं हैं। अयंगर योग का मूल मंत्र है संतुलन, सटीकता और स्थिरता। वो हर आसन को बारीकी से करने में विश्वास रखते ताकि रोम रोम तक योग को महसूस किया जा सके।
1: हाँ, हम कह सकते हैं कि अयंगर शिक्षक से ज्यादा मूर्तिकार थे। वे अपने हर विद्यार्थी को ध्यान से देखते और उनकी गलती तुरंत सुधारते। वे तब तक सुधार करवाते जब तक योग आसन अपनी पूर्णता को न छू ले। उनके शिष्यों से उन्हें सिर्फ एक अपेक्षा थी, निष्ठा, नैतिकता और ईमानदार अभ्यास। वे कहते, लोकप्रियता योग के सच्चे लाभों को ढक दे, यह मैं कभी नहीं चाहता।
0: घर में वे अत्यंत सरल थे, शांत, नम्र और नियमों के पक्के व्यक्तित्व। सफलता के अभिमान ने उन्हें कभी छुआ ही नहीं। वे हमेशा कहते, मैं सिर्फ योग का एक विद्यार्थी हूँ। उनकी विनम्रता ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। उनका मानना था कि उदाहरण ही सब कुछ है, और जब उदाहरण सत्य को व्यक्त करता है तो उसमें दूसरों को बदलने की शक्ति होती है।
1: उनके ये शब्द आज भी प्रेरणा है। आपका शरीर आपका मंदिर है, इसे शुद्ध और स्वच्छ रखें ताकि इसमें आत्मा का वास हो सके। उनका यही संदेश था। उनका मानना था कि योग केवल नजर नहीं बदलता, बल्कि जीवन जीने का नजरिया बदल देता है।
0: वर्ष 2001 में एक तारे का नाम उनके नाम पर रखा गया तो वे हमेशा की तरह हंसते हुए बोले, योग की यात्रा अब धरती पर नहीं रही, आकाश तक पहुंच गई है।
1: और आज दुनिया भर में अयंगर योग संस्थान के लाखों शिक्षक इन संस्थानों में कई लोगों को योग की शिक्षा दे रहे हैं। ये करोड़ों साधक उनकी इस योग साधना की विरासत को जीवित बनाए हुए हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया। पर उनका सबसे बड़ा पुरस्कार वो लाखों मुस्कानें थीं जो योग से जीवन पाती रही।
0: 20 अगस्त 2014 का दिन, 96 वर्ष की आयु में वो अपनी योग की दुनिया से विदा हो गए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक ऐसा प्रकाश जो दुनिया को आने वाली सदियों तक योग का मार्ग दिखाता रहेगा। BKS अयंगर, साधक, शोधकर्ता, शिक्षक, दार्शनिक और मानवता के लिए योग का अमूल्य उपहार थे। श्रोताओं, जब तक ये संसार रहेगा तब तक इस विभूति का नाम भी अमर रहेगा।
1: उनकी बुद्धि ऊंची थी पर पैर हमेशा धरती पर टिके रहे। वे असाधारण भी थे और आश्चर्यजनक रूप से साधारण भी। यही संतुलन, यही स्थिरता उन्हें योग जगत का सूर्य बनाती है।
0: आज का यह विशेष कार्यक्रम योगाचार्य BKS अयंगर को समर्पित था। उनकी 70 वर्षों की योग साधना हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। यहाँ हम कह सकते हैं कि वे केवल शरीर से विदा हुए, पर योग के हर श्वास, हर आसन, हर क्षण में वे आज भी जीवित हैं। भारत की इस विभूति को हमारा शत शत नमन।
1: मन को दृढ़ बनाओ, योग तुम्हें पुनर्जन्म देगा। हम अयंगर के इस मंत्र के साथ आज के विशेष कार्यक्रम भारत विभूति को यहीं विराम देते हैं।
0: श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन हमें मिला संतोष कुमार वर्मा से। परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने। समन्वय सहयोग था सतीश बाथम का। लेखन स्वाति गिरी का। और आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना,
1: और मैं विजयकांत नायक।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत विभूति। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: नमस्कार, मैं हूं रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: ढाका की आपूर्ति नावें और कैप्टन कॉक्स की त्रासदी। क्या आप जानते हैं कि औपनिवेशिक इतिहास की सबसे दुखद मानवीय विफलताओं में से एक संसाधनों की कमी के कारण नहीं, बल्कि आपूर्ति वाली नावों के एक ऐसे बेड़े के कारण हुई थी जिसे स्थानीय नौकरशाही ने खोजने से ही इनकार कर दिया था। ये कहानी है ढाका की आपूर्ति नावों की और उस व्यक्ति की जिसने अपने ही सहयोगियों की टालमटोल वाली नीति से लड़ते हुए दम तोड़ दिया। वर्ष 1799 था। चटगांव के दक्षिणी जंगलों में एक भयावह मंजर था। बर्मी हिंसा से बचकर भागे 25,000 से अधिक अराकानी शरणार्थी भूख से मर रहे थे। इस संकट को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने स्थानीय अधिकारियों को दरकिनार कर दिया और कैप्टन ही राम कॉक्स को विशेष आयुक्त नियुक्त किया। वो प्रोकंसुलर शक्तियों के साथ आए थे और उन्हें भूखों को खिलाने के लिए स्थानीय खजाने से असीमित धन निकालने का अधिकार था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्थानीय अधिकारियों ने अपने क्षेत्र में इस बाहरी के हस्तक्षेप पर कैसी प्रतिक्रिया दी? उन्होंने सक्रिय असहयोग का अभियान छेड़ दिया। जब कॉक्स ने राहत के लिए 80,000 रुपए मांगे तो चटगांव के कार्यवाहक कलेक्टर थॉमस पाउनी ने खजाना खोलने से साफ मना कर दिया। उन्होंने स्थापित प्रक्रिया की आड़ ली और 3 प्रतियों में कागजी कार्रवाई की मांग की। हताश होकर कॉक्स ने अनाज के लिए पड़ोसी जिलों ढाका और त्रिपुरा की ओर देखा, लेकिन वहां की नौकरशाही भी उतनी ही संवेदनहीन थी। ढाका और त्रिपुरा के अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालते रहे, जबकि शरणार्थी भोजन के अभाव में प्रतिदिन मर रहे थे। इस बेतुकेपन का चरम तब आया जब आखिरकार चावल की व्यवस्था हो गई। आपको लगेगा कि संकट टल गया, लेकिन स्थानीय नौकरशाही ने अचानक दावा किया कि उन्हें नावें नहीं मिल रही हैं। विशाल नदी प्रणालियों वाले इस क्षेत्र में ढाका और चटगांव के अधिकारियों ने ये तर्क दिया कि उपयुक्त परिवहन नावें उपलब्ध नहीं थीं। क्या आप जानते हैं कि इस दैनिक प्रतिरोध का क्या परिणाम हुआ? जनवरी 1800 तक केवल 16,000 मन चावल ही बस्ती तक पहुंच सका, जो कॉक्स द्वारा मांगी गई मूल मात्रा के 1/4 से भी कम था। जो थोड़ी बहुत सहायता पहुंची उसे भी भ्रष्ट अधिकारियों ने चुरा लिया। कार्यवाहक गवर्नर जनरल ने केवल भारी खर्च और स्थानीय अधिकारियों की परेशानी को देखा और मिशन को विफल घोषित कर दिया। उन्होंने कॉक्स को ये कहते हुए वापस बुला लिया कि वे स्थानीय सत्ता के काम में बहुत अधिक हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस प्रणालीगत तोड़फोड़ से कॉक्स का मनोबल और स्वास्थ्य दोनों टूट गए। वे वहां की जहरीली जलवायु में बीमार पड़ गए और जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। आज कॉक्स बाजार शहर उनके एकमात्र स्मारक के रूप में खड़ा है, लेकिन उनकी कहानी लिमिटेड राज का एक डरावना उदाहरण है। ये हमें सिखाता है कि शुरुआती ईस्ट इंडिया कंपनी में अपने निजी स्वार्थ की रक्षा करने वाले कुछ मुट्ठी भर नौकरशाह किसी भी दुश्मन सेना से कहीं अधिक घातक हो सकते थे। ढाका की लापता नावें समुद्र में नहीं खोई थीं, उनका गला लाल फीता शाही ने घोंट दिया था।

आइए अब आपको सुनवाते हैं चैतन्य भट्ट के संगीत निर्देशन में शिव मंगल सिंह सुमन की लिखी हुई ये रचना स्वर शिवराव के।

0: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आइए अब आपको सुनवाते हैं राजा नकवी का लिखा हुआ ये गीत। संगीत उमेश वीनस तरकसवार का है।

0: हेलो पप्पू पेजर बोल रहा हूँ। ए झंटू ले झटक दादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक।
1: नमस्कार, मैं हूँ सतीश कौशिक। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम काव्य गुंजन।
2: रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए, अब प्रस्तुत है भारतीय साहित्य के प्रख्यात कवियों की अनुपम एवं कालातीत रचनाओं की रचनात्मक प्रस्तुति पर आधारित कार्यक्रम काव्य गुंजन।

0: कार्यक्रम काव्य गुंजन के पिछले भाग में आपने सुना था कि सिद्धार्थ के संबंधी किस तरह सिद्धार्थ के घर छोड़ने पर विलाप कर रहे हैं और दूसरी तरफ यशोधरा का पश्चाताप कि अब मैं राजसी जीवन जीकर क्या करूंगी। लीजिए अब सुनिए इसके आगे।
1: अब जो काव्यांश आप सुनेंगे वो यशोधरा के साथ साथ राहुल जननी की मना स्थिति है। खुद रोते हुए पुत्र को अभागा कहते हुए क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? लीजिए सुनिए।
2: चुप रह हाय अभागे, रोता है अब किसके आगे, तुझे देख पाते वे रोता, मुझे छोड़ जाते क्यों सोता, अब क्या होगा तब कुछ होता, सोकर हम खोकर ही जागे, चुप रह हाय अभागे। बेटा मैं तो हूं रोने को, तेरे सारे मल धोने को, हंस तू है सब कुछ होने को, भाग्य आएंगे फिर भी भागे, चुप रह हाय अभागे। तुझको क्षीर पिला कर लूंगी, नयन नीर ही उनको दूंगी, पर क्या पक्ष पातनी होंगी, मैंने अपने सब रस त्यागे, चुप रह हाय अभागे। चेरी भी वह आज कहां, कल थी जो रानी, दानी प्रभु ने दिया उसे क्यों मन यह मानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, मेरा शिशु संसार वह दूध पिए परिपुष्ट हो, पानी के ही पात्र तुम प्रभो रुष्ट या तुष्ट हो। यह छोटा रस छोना कितना उज्जवल, कैसा कोमल, क्या ही मधुर सलोना, क्यों ना हंसूं रोऊं गाँव में, लगा मुझे यह टोना, आर्य पुत्र आओ सचमुच मैं दूंगी चंद खिलौना, जीर्ण तरी भूरि भार देख अरि एरी, कठिन पंथ दूर पार और यह अंधेरी, सजनी उल्टी बयार वेग धर प्रखर धार, पद पद पर विपदवार रजनी घन घेरी, जीर्ण तरी भूरि भार देख अरि एरी, जाना होगा परंतु खींच रहा कौन तंतु, गरज रहे घोर जंतु बजती भय भेरी, जीर्ण तरी भूरि भार देख अरि एरी, समय हो रहा सपत्न अपने वश कौन यत्न, गांठ में अमूल्य रत्न बिसरी सुध मेरी, जीर्ण तरी भूरि भार देख अरि एरी, भव का यह विभव साथ हाथी भर किंतु हाथ, ले लें कब लौट नाथ, ले लें कब लौट नाथ, सौंप बचे चेरी, जीर्ण तरी भूरि भार देख अरि एरी, इस निधि के योग्य पात्र यदि था यह तुच्छ गात्र, तो यही प्रतीत मात्र दैव दया तेरी, जीर्ण तरी भूरि भार देख अरि एरी। दैव बनाए रखे राहुल बेटा, विचित्र तेरी क्रीड़ा, तनिक बदल जाती है उसमें मेरी अधीर पीड़ा व्रीड़ा, किलक अरे मैं नेक निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, पानी भर आया फूलों के मुँह में आज सवेरे, हाँ गोपा का दूध जमा है राहुल मुख में तेरे, लटपट चरण चाल अटपट सी मन भाई है मेरे, तू मेरी उंगली धर अथवा मैं तेरा कर धारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, आ मेरे अवलंब बता क्यों अंब अंब कहता है, पिता पिता कह बेटा जिनसे घर सूना रहता है। दहता भी है बहता भी है यह जी सब सहता है, फिर भी तू पुकार किस मुंह से, हाँ मैं उन्हें पुकारूं इन दांतों पर मोती वारूं। आली चक्र कहाँ चलता है, सुना गया भूतल ही चलता, भानु अचल चलता है। आली चक्र कहाँ चलता है, कटते हैं हम आप घूम कर, निर्वश निर्बलता है। दिन कर दीप द्वीप शलभों को पल पल में छलता है। आली चक्र कहाँ चलता है, कुशल यही वह दिन भी कटता जो हमको खलता है। साधक भी इस बीच सिद्धि को लेकर ही टलता है। आली चक्र कहाँ चलता है, गोपा गलती है पर उसका राहुल तो पलता है। अश्रुसिक्त आशा का अंकुर देखूं कब फलता है। आली चक्र कहाँ चलता है।
3: ओ माँ आंगन में फिरता था कोई मेरे संग लगा, आया जो ही मैं अलिंद में छिपा न जाने कहाँ भगा।
2: बेटा भीत न हो ना, वह था तेरा ही प्रतिबिंब जगा।
3: अम्ब भीति क्या,
2: मृषा भ्रांति वह, रह तू प्रीति पगा। ठहर बाल गोपाल कन्हैया, राहुल राजा भैया, कैसे धाऊं पाऊं तुझको हार गई मैं दैया। सद दूध प्रस्तुत है बेटा, दुग्ध फैन सी शैया, तू ही एक खिवैया मेरी पड़ी भवर में नैया। आ मेरी गोदी में आजा, मैं हूँ दुखिया मैया।
3: मैया है तू अथवा मेरी दोथन वाली गैया, रोने से यह रिस ही अच्छी तिलिलिलिताता थैया।
2: तब कहता था लोभ न दे, अब चंद खिलौने कीरट क्यों।
3: तब कहती थी दूंगी बेटा, माँ अब इतनी खटपट क्यों।
2: कह तो झूठ मूठ बहला दूं, पर वह होगी छाया, मुझको भी शैशव में शशि की थी ऐसी ही माया। किंतु प्रसू बनकर अब मैंने उसको तुझ में पाया, पिता बनेगा तभी पाएगा तू वह धन मन भाया।
3: अम्ब पुत्री अच्छा यह मैं झेलूं इतनी झंझट क्यों।
2: पुत्र हुआ तो पिता न होगा, यह विरक्ति ओ नटखट क्यों।
3: अम्ब यह पंछी कौन बोलता है मीठा बड़ा, जिसके प्रवाह में तू डूबती है बहती।
2: बेटा यह चातक है।
3: माँ क्या कहता है ये।
2: पी पी किंतु दूध की तुझे क्या सुध रहती।
3: और यह पंछी कौन बोला वाह।
2: कोयल है।
3: माँ क्यों कूक की तू हूक सी है सहती, कहती उमंग से है मेरे संग संग अहो। कहो कहो किंतु तू कहानी नहीं कहती, नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा पय हो चाहे पानी।
2: नहीं पिएगा बेटा यदि तू तो सुन चुका कहानी।
3: तू ना कहेगी तो कह लूंगा मैं अपनी मनमानी।
2: सुन राजा वन में रहता था, घर रहती थी रानी, और हटी बेटा रटता था नानी नानी नानी।
3: बात काटती है तू, अच्छा जाता हूँ मैं मानी।
2: नहीं नहीं बेटा आ, तूने यह अच्छी हट ठानी, सुनकर ही पीना सोना मत, नई कहूँ या पुरानी।
3: व्यर्थ गल गया मेरा रसाल, मैंने स्वयं नहीं चखा था, माँ चुनकर सौ सौ में इसे पिता के लिए बचा रखा था।
2: वह जड़ फल सड़ जावे, पर चेतन भावना तभी वह तेरी अर्पित हुई उन्हें में वत्स, यही मति तथा यही गति मेरी। निष्फल दो दो बार गई, हार गई माँ हार गई।

0: गई माँ हार गई।
1: मेरी भोली माई भला खिलौना लाई,
0: जब देखो अपनी ही कहता मेरी कब सुनता है, क्रीड़ा में ऐसा साथी क्या कोई चुनता है।
1: आहा तू मुस्कुराई मेरी भोली माई, नहीं नहीं उपजाता है माँ यह ममत्व ही गहरा, सहज मधुर भाषी होकर भी यह बराक ही बहरा, मेरा छोटा भाई मेरी भोली माई। अम्ब तात कब आएंगे?
0: धीरज धर बेटा, अवश्य हम उन्हें एक दिन पाएंगे, मुझे भले ही भूल जाएं वे तुझे क्यों न अपनाएंगे, कोई पिता न लाया होगा वह पदार्थ वे लाएंगे।
1: माता पिता पुत्र हम दोनों संग संग फिर जाएंगे, देना तू पाथे प्रेम से विचर विचर कर खाएंगे, पर अपने दूने सूने दिन तुझको कैसे भाएंगे।
0: हाँ राहुल क्या वैसे दिन भी इस धरती पर छाएंगे, देखूंगी बेटा मैं जो भी भाग्य मुझे दिखलाएंगे, तो भी तेरे सुख के ऊपर मेरे दुख ना छाएंगे।
1: अम्ब मेरी बात कैसे तुझ तक जाती है?
0: बेटा वह वायु पर बैठ उड़ जाती है।
1: होंगे जहाँ तात क्या ना होगा वायु माँ वहाँ?
0: बेटा जगत प्राण वायु व्यापक नहीं कहाँ,
1: क्यों अपनी बात वह ले जाता वहाँ नहीं?
0: निज ध्वनि फैल कर लीन होती है यहीं,
1: और उनकी भी वहीं, फिर क्या बड़ाई है?
0: सबने शरीर शक्ति मित की ही पाई है, मन ही के माप से मनुष्य बड़ा छोटा है, और अनुपात से उसी के खरा खोटा है, साधन के कारण ही तन की महत्ता है, किंतु शुद्ध मन की निरुद्ध कहाँ सत्ता है। करते हैं साधन विजन में वेतन से, किंतु सिद्धि लाभ होगा मन से मनन से, देख निज नेत्र कर्ण जा पाते नहीं वहाँ, सूक्ष्म मन किंतु दौड़ जाता है कहाँ कहाँ। वत्स यही मन जब निश्चलता पाता है, आकर इसी में तब सत्य समा जाता है।
1: तो मन ही मुख्य है माँ?
0: बेटा स्वस्थ देह भी योग्य अधिवासी के लिए हो, योग्य गेह भी।
1: विहग समान यदि अम्ब पंख पाता मैं, एक ही उड़ान में तो ऊंचे चढ़ जाता मैं, मंडल बनकर मैं घूमता गगन में, और देख लेता पिता बैठे किस वन में, कहता मैं तात उठो घर चलो अब तो, चौंक कर अम्ब मुझे देखते वे तब तो, कहते तू कौन है तो नाम बतलाता मैं, और सीधा मार्ग दिखा शीघ्र उन्हें लाता मैं, मेरी बात मानते हैं मान्य पितामह भी, मानते अवश्य उसे टालते ना वे कभी, किंतु बिना पंख के विचार सब रीत है, हाय पंछियों से भी मनुष्य गए बीत हैं, हम थलवासी जल में तो तैर जाते हैं, किंतु पंछियों की भांति उड़ नहीं पाते हैं, मानवों को पंख क्यों विधाता ने नहीं दिए?
0: पंखों के बिना ही उड़े चाहे तो इसलिए?
1: पंखों के बिना ही अम्ब?
0: और नहीं
1: कैसे माँ?
0: भूल गया,
1: ओ हनुमान उड़े जैसे माँ, क्यों कर उड़े वे भला?
0: बेटा योग बल से।
1: मैं भी योग साधना करूँगा अम्ब कल से, तेरा मुंह पहले बड़ा था अम्ब कह तू।
0: राहुल क्या पूछता है बेटा भला यह तू?
1: रह गया तेरा मुंह छोटा यही कह के, दादी जी अभी तो अम्ब रोई रह रह के।
0: राहुल तू कहता है खा चुका हूँ इतना, किंतु मुझे लगता है खाया अभी कितना, बेटा यही बात मेरी और दादी जी की है, होती परितृप्ति कभी जननी के जी की है।
1: रोई किंतु क्यों वे अम्ब?

0: वियोग से, वंचित हूँ जिनके बिना में राजभोग से।
1: माँ वही तो, छोटा मुंह कहने को तेरा है, दैन्य और दर्प जहाँ दोनों का बसेरा है। चाहे मुंह छोटा रहे किंतु बड़ा भोला है, छोटी और खोटी बात वह कब बोला है। और तेरी आँखें तो बड़ी है अम्ब तब भी।
0: बेटा तुझे देख परिपूर्ण हैं वे अब भी।
1: जब तात यहाँ लौट कर आएंगे और वे भी तेरा मुंह छोटा बतलाएंगे, तो मैं सुन उनसे कहूँगा बस इतना, मुंह जितना हो किंतु मानी मन कितना। माँ कह एक कहानी।
0: बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी।
1: कहती है मुझसे यह चेठी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी।
0: तू है हटी मान धन में मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी।
1: हाँ माँ यही कहानी।
0: वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु छिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी।
1: हाँ माँ यही कहानी।
0: गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से।

चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन

0: की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी।
1: माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी।
0: कोई निर अपराध कुमारे, तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। तूने गुनी कहानी, सो अपने चंचल पन सो मेरे अंचल धन सो। पुष्कर सोता है निज सर में, भ्रमर सो रहा है पुष्कर में, गुंजन सोया कभी भ्रमर में, सो मेरे गृह गुंजन सो मेरे अंचल धन सो। तनिक पाशर्व परिवर्तन कर ले, उस नासा पुट को भी भर ले, उभय पक्ष का मन तू हर ले, मेरे व्यथा विनोदन सो मेरे अंचल धन सो। रहे मंद ही दीपक माला, तुझे कौन भय कष्ट कसाला, जाग रही है मेरी ज्वाला, सो मेरे आश्वासन सो मेरे अंचल धन सो। ऊपर तारे झलक रहे हैं, गोखों से लग ललक रहे हैं, नीचे मोती ढलक रहे हैं, मेरे अपलक दर्शन सो मेरे अंचल धन सो। तेरी सांसों का सुस्पंदन, मेरे तप्त हृदय का चंदन, सो मैं कर लूं जी भर क्रंदन, सो उनके कुल नंदन सो मेरे अंचल धन सो। खेले मंद पवन अलकों से, पोंछूं मैं उनको पलकों से, छदरद की छवि की छलकों से, पुलक पूर्ण शिशु यौवन सो मेरे अंचल धन सो।
2: ऊपर आसमान में तारे चमक रहे हैं। अपनी बालक में यशोधरा को बचपन की कोमलता तथा यौवन की चंचलता दोनों दिख रही हैं, और वो उसके सोने का आह्वान कर रही है। और अगले काव्यांश में संसार और अपने जीवन के सुख दुख की विवेचना में व्यस्त यशोधरा नियति को नाटक के रूप में देख रही है।

भावना का व्यर्थ ही क्यों ढो रही, भर हर्ष में भी शोक में भी अश्रु संस्रति रो रही। सुख दुख दोनों दृष्टियों से सृष्टि सुद बुद्ध

बेला रहे वह जो रही। उलट पड़ा यह दिव रत्नाकर, पानी नीचे ढलक वहां, तारक रत्ना हार सखी उसके खुले हृदय पर झलक रहा। निर्दय है या सदय हृदय वह, मैंने उससे ललक कहा। हंस बोला ग्रह चक्र देख लो, पर न उठे ये पलक। हहा पवन तू शीतल मंद सुगंध, इधर किधर।

गंध, किंतु बिगाड़ ना दे ये सांसें तेरा बना प्रबंध। मेरे फूल रहो तुम फूले, तुम्हें झुलाता रहे समीरन झोंके देकर झूले। तुम उदार दानी हो, घर की दशा सहज ही भूले। क्षमा कभी यह उष्ण पाणी भी भूल तुम्हें यदि छूले। प्रकट कर गई धन्य रस राग तू, पौ फट कर भी निरुपाय। भरे हैं अपने भीतर आग तू, री छाती फटी नहाए। यह प्रभात या रात है घोर तिमिर के साथ। नाथ कहाँ हो हाय तुम, मैं अदृष्ट के हाथ। नहीं सुधा निधि को भी छोड़ा, काल करों ने धर अंबर में सारा सार निचोड़ा। टपक पड़ा कुछ इधर।

केरस तूने यदि मुझसे मुँह मोड़ा तो कह किस तृष्णा के माथे वह अपना घट फोड़ा। मेरी नयन मालिके

अब क्या रखा है रोने में इन दुकले, दिन काट शून्य के किसी एक कोने में किसने हाय भरा घर लूटा, अर्णव सा दर्पण भी छूटा, खोना ही खोने में अब क्या रखा है रोने में। सृष्टि किंतु सो

अब क्या रखा है रोने में, बेला फिर भी तुझे भरेगी, संचय करके व्यय न करेगी, अमृत पिए है तू न मरेगी, सब होगा होने में, अब क्या रखा है रोने में।

0: क्या रखा है रोने में।
1: यशोधरा का मानना है कि रोने से दुख और बढ़ता है। जब आपत्ति के समय प्राणी धैर्यपूर्वक प्रयत्न करता हुआ विपत्ति को पार कर लेता है तब वो गौरव का भागी बनता है।
0: अभी आपने सुना राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ यशोधरा का वाचन। आज के भाग में आपने सुना राहुल जननी की मनः स्थिति। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य कुंचन। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनांकन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और कलाकार थे विकास अवस्थी, मनीषा चतुर्वेदी, वर्षा सिंह और वत्सला चौबे। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गुंजन। ये रेडियो आजाद हिंद है 90.8 MHz पर। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।
3: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए। प्रेम।

0: यह है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप ध्रुव संगारी बिलाल चिश्ती को इस पे सुन रहे हैं। रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारी वैज्ञानिक।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक। और श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे डॉक्टर जयंत नार्लिकर जी के बारे में। भारत के महान खगोल भौतिक विज्ञानी डॉक्टर जयंत नार्लिकर का जन्म महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक उच्च शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार में 19 जुलाई 1938 को हुआ था। उनके पिता प्रोफेसर विष्णु वासुदेव नार्लिकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गणित के विभागाध्यक्ष थे। इसके बाद वे राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने। डॉक्टर जयंत नार्लिकर की शिक्षा वाराणसी में हुई। उनकी माता तत्कालीन बंबई विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातक थीं। इसके अलावा अंग्रेजी साहित्य से भी उनका लगाव था। वे बहुत शालीन, सुसंस्कृत और शिक्षित महिला थीं।
2: श्रोताओं, युवा डॉक्टर नार्लिकर असाधारण प्रतिभा के धनी थे। स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं में वे हमेशा प्रथम रहते थे। गणित उनका प्रिय विषय था। इसके अलावा किताबें पढ़ने का उन्हें बहुत शौक था। सन 1959 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। वे विश्वविद्यालय में प्रथम आए। उनके विषय गणित और खगोल भौतिक थे।
1: उनके पिताजी उन्हें उच्च अध्ययन के लिए विदेश भेजना चाहते थे। इंग्लैंड से पढ़कर लौटे लोगों ने उन्हें आगाह करते हुए आत्मसंतुष्ट न होने की सलाह दी थी। उन लोगों के अनुसार इंग्लैंड का जीवन बड़ा ही कठिन था, परंतु कठिन परिश्रम के बल पर डॉक्टर नार्लिकर पूरी तरह सफल रहे। उनके पिता से और विशेष रूप से उनके मामा डॉक्टर वसंत राव हुजूर बाजार से मिले परामर्श से उनका काम आसान हो गया।
2: उनके माता पिता के अलावा उनके शिक्षक और उन्हें सलाह देने वाले फ्रेड हॉयल का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। और इसके अतिरिक्त स्नातक स्तर पर उनके असाधारण परिणाम ने उनको छात्रवृत्ति भी दिलवाई। उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। वहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लिया। यहां उन्होंने केवल 2 वर्ष में एमएससी की डिग्री प्राप्त कर ली।
1: संयोग से खगोल भौतिकी के विश्वविख्यात अध्यापक उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे। उनका नाम था फ्रेडरिक होयल। लोग उन्हें फ्रेड होयल भी कहते थे। होयल किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रोफेसर थे और खपिंडो यानी सेलेशियल बॉडीज की गति और स्थिति पर अनुसंधान करा रहे थे। डॉक्टर नार्लिकर ने फ्रेडरिक होयल के मार्गदर्शन में पीएचडी करने के लिए पंजीकरण कराया और अनुसंधान कार्य शुरू कर दिया। होयल ने भी डॉक्टर नार्लिकर को पूरे दिल से स्वीकार कर लिया था। सन 1963 में डॉक्टर नार्लिकर को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई। वे कैम्ब्रिज में सन 1957 से 1962 तक रहे।
2: श्रोताओं, डॉक्टर नार्लिकर ने 15 वर्ष तक विदेश में रहने के दौरान अनेक महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य किए। 22 वर्ष की आयु में वे रॉयल एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी के सदस्य हो गए। उन्हें किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज का फेलो भी नियुक्त किया गया। उनके पिता भी इस संस्थान के सदस्य थे। उनकी पीएचडी के शोध प्रबंधन में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों और अलग अलग खपिंडों के बीच गुरुत्वीय आकर्षण और दबाव, सृष्टि के निर्माण और अन्य दूसरे विषयों के बारे में अनुसंधान शामिल थे। उन्होंने लोकप्रिय बिग बैंग सिद्धांत के विषय में भी विचार दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। अनेक सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार नहीं हो रहा है, बल्कि वह स्थिर है। उन्होंने इसे स्थिर स्थिति यानी स्टेडी स्टेट कहा। इस सिद्धांत ने इस विषय पर नया प्रकाश डाला।
1: फ्रेड होयल के साथ उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सादृश्य सिद्धांत यानी कन्फॉर्मल थ्योरी ऑफ ग्रेविटी प्रस्तुत किया। उनके द्वारा प्रस्तुत यह सिद्धांत पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। डॉक्टर नार्लिकर और फ्रेड होयल ने ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर कार्य किया, जिसमें स्थिर स्थिति सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और विद्युत गति यानी इलेक्ट्रो डायनामिक्स शामिल थे। उन दोनों ने ये मत प्रतिपादित किया कि अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में विद्यमान अन्य शक्तियों के बल का पदार्थ के द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा वो पदार्थ की आकृति और आकार को भी प्रभावित करता है।
2: श्रोताओं, अंतरिक्ष के पदार्थों के गुरुत्वाकर्षण संबंधी अनेक अनुसंधानों को असाधारण माना जाता है। यूरोप में उन्हें अनेक संस्थानों से पुरस्कार और पदक मिले। सन 1969 में केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने डॉक्टर नार्लिकर और प्रोफेसर फ्रेड होयल को भारत आकर के भाषण देने के लिए आमंत्रित किया।
1: सन 1968 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उन्हें एडम अवार्ड से सम्मानित किया। इससे पहले ये प्रतिष्ठित अवार्ड 3 भारतीय वैज्ञानिकों को प्रदान किया जा चुका था। ये अवार्ड सन 1944 में डॉक्टर होमी भाभा को, सन 1948 में डॉक्टर एस चंद्रशेखर को और 1961 में डॉक्टर हुजूर बजरा को प्रदान किया गया था।
2: श्रोताओं, यह अवार्ड गणित, खगोल, भौतिकी और प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्रों में असाधारण अनुसंधान के लिए हर 2 वर्ष में डॉक्टर जेसी एडम की स्मृति में प्रदान किया जाता है। एडम एक असाधारण खगोल वैज्ञानिक यानी एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने सन 1864 में नेपच्यून ग्रह के विद्यमान होने की भविष्यवाणी की थी।
1: डॉक्टर नार्लिकर का विवाह सन 1966 में मंगला सदाशिव राजवाड़े के साथ हुआ। 1969 में जब वे भारत वापस आए तब भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने उन्हें खगोल भौतिकी यानी एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर के पद का कार्यभार संभालने के लिए आमंत्रित किया।
2: डॉक्टर नार्लिकर ने भी अपने देश में अपनी सेवाएं प्रदान करने का निर्णय कर लिया था। सन 1972 में उन्होंने प्रोफेसर के रूप में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR में कार्यभार संभाल लिया। अनुसंधान और शिक्षण के अलावा वे डॉक्टरेट के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी करते थे। यहां उन्होंने टेकियॉन पर अनुसंधान जारी रखा। टेकियॉन ऐसे कण हैं जो प्रकाश की गति से भी अधिक तेज गति से चलते हैं। डॉक्टर नार्लिकर के मतानुसार कृष्ण वीवर यानी ब्लैक होल टेकियॉन कणों के आधार पर होते हैं। वे बाहर से आने वाले प्रकाश को अवशोषित करते हैं और समाविष्ट कर लेते हैं और अत्यधिक दबाव के साथ ब्लैक होल की सतह को संकुचित कर देते हैं।
1: भारत आने के बाद डॉक्टर नार्लिकर ने एक और कार्य किया, लोगों में विज्ञान और विशेष रूप से खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने के लिए डॉक्टर नार्लिकर ने अपनी मातृभाषा मराठी में आकाशाशी जड़ले नाते यानी आकाश से जुड़ा नाता नामक एक पुस्तक लिखी। इसके अलावा उन्होंने विज्ञान से संबंधित कहानियां भी लिखी। उनकी पुस्तकों का अनुवाद हिंदी और गुजराती भाषाओं में भी किया गया है। डॉक्टर नार्लिकर कुशल विज्ञान कथा लेखक हैं।
2: श्रोताओं, सितंबर 1988 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें खगोल विज्ञान और नाभिकीय भौतिकी अंतर विश्वविद्यालय केंद्र यानी एस्ट्रोनॉमी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता से यह केंद्र बना। डॉक्टर नार्लिकर इसके प्रथम निदेशक बने और उन्होंने होमी भाभा प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। सन 1988 में अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में खगोल विज्ञान से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी उन्होंने भाग लिया।
1: 10 जनवरी 1989 को राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने डॉक्टर नार्लिकर को सन 1988 का वेणु बापू मेमोरियल अवार्ड प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। इस पुरस्कार में 25,000 रुपए नकद और 1 पदक प्रदान किया जाता है। सन 1990 में उन्हें भारतीय विज्ञान अकादमी का इंदिरा गांधी पुरस्कार और सन 1996 में यूनेस्को का कलिंग पुरस्कार प्रदान किया गया।
2: 12 मार्च 2003 को उन्हें यशवंत राव चौहान राष्ट्रीय पुरस्कार 2002 प्रदान किया गया। तो श्रोताओं, ये था जीवन परिचय डॉक्टर नार्लिकर का। अब हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अब तक आपको हमने बताया कि स्वामी जी अमेरिका से पेरिस होकर लंदन गए थे। लंदन में भी अमेरिका की तरह उनका भव्य स्वागत हुआ। लगभग एक महीने की अवधि में ही उन्होंने लंदन में यथेष्ट ख्याति प्राप्त कर ली थी। इसी समय एक भाषण सभा में कुमारी मार्गरेट नोबल यानी भगिनी निवेदिता से स्वामी जी का परिचय हुआ। ये असाधारण विदुषी महिला एक स्कूल में अध्यापिका थीं और विद्वान समाज में उनकी बहुत ख्याति व प्रतिष्ठा थी। कुमारी नोबल स्वामी जी के प्रति श्रद्धा रखते हुए भी सहसा उनकी शिष्या नहीं बनी थीं। प्रतिदिन वे स्वामी जी के भाषण व प्रश्नोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से आती थीं और चुपचाप इस अद्भुत सन्यासी को देखा करती थीं। अंत में उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण करने का संकल्प लिया।
1: स्वामी जी ने अमेरिका की तरह इंग्लैंड में भी प्रचार कार्य में यथेष्ट सफलता प्राप्त की। इंग्लैंड छोड़कर पुनः अमेरिका जाने के पूर्व उन्होंने अपनी एक शिष्या को लिखा था,
2: इंग्लैंड में मेरे प्रचार कार्य को आशातीत प्रतिष्ठा प्राप्त हुई और ये सुनकर कि अगले सप्ताह मैं फिर अमेरिका जाऊंगा, कई व्यक्ति बड़े दुखी हुए। कई लोग तो इस प्रकार की आशंका प्रकट कर रही हैं कि मेरे चले जाते ही जो कार्य हुआ है उसका परिणाम अनेकांश में नष्ट हो जाएगा, परंतु मैं ऐसा नहीं समझता। मैं मनुष्य या किसी चीज पर निर्भर नहीं रहता, प्रभु ही मेरी एकमात्र शरण है। वे ही मुझे यंत्र बनाकर कर्म करा रहे हैं।
1: 18 जनवरी सन 1896 को इंडियन मिरर नामक पत्रिका ने स्वामी जी के प्रचार कार्य के संबंध में लिखा था,
3: हमें ये लिखते हुए बड़ा आनंद होता है कि स्वामी विवेकानंद ने लंदन के अनेक विशिष्ट भद्र पुरुषों व महिलाओं की दृष्टि आकर्षित की है। उनकी हिंदू दर्शन व योग संबंधी कक्षाओं में अनेक उत्साही व श्रद्धा युक्त श्रोतागण उपस्थित होते हैं।
1: दूसरे पत्रकार ने लिखा,
4: लंदन नगर की कुछ ऐश्वर्यशालिनी विलासिनी उच्च घरानों की महिलाएं कुर्सियों के अभाव में फर्श पर पैर मोड़कर बैठ गुरु भक्त भारतीय शिष्यों की तरह भक्ति के साथ स्वामी जी के उपदेश सुन रही हैं। ये वास्तव में ही विरल दृश्य है।
1: तीसरे पत्रकार ने लिखा,
5: कैथरस विल्बरफोर्स हैस आदि विशिष्ट धर्म प्रचारकों ने भी उन्हें बड़े सम्मान के साथ ग्रहण किया है। प्रथमोक्त महोदय के निवास स्थान पर स्वामी जी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए एक पारिवारिक सभा बुलाई गई थी, जिसमें लंदन के अनेक प्रतिष्ठित भद्र महोदय व महिलाएं उपस्थित थीं। स्वामी जी ने अंग्रेजी भाषी जनता के दिल में भारतवर्ष के प्रति जिस प्रेम व सहानुभूति को जागृत किया है, वो अवश्य ही भारतवर्ष की उन्नति की सहायक शक्तियों में शीर्ष स्थान प्राप्त करेगी।
0: लंदन में रहते समय कई बार उन्हें आलोचना भी सुननी पड़ती थी, परंतु अगर कोई भारत की निंदा करता तो वे सहन नहीं करते थे। एक दिन सभा के बीच में स्वामी जी भारत के गौरव का वर्णन कर रहे थे। इसी समय एक समालोचक ने प्रश्न किया,
6: भारत के हिंदुओं ने क्या किया है? वे आज तक किसी जाति पर विजय प्राप्त नहीं कर सके।
2: नहीं कर सके नहीं, कहिए कि उन्होंने की नहीं। और यही हिंदू जाति का गौरव है कि उसने कभी दूसरी जाति के रक्त से पृथ्वी को रंजित नहीं किया। वे दूसरों के देश पर अधिकार क्यों करेंगे तुच्छ धन की लालसा से? भगवान ने हमेशा से भारत को दाता के महिमामय आसन पर प्रतिष्ठित किया है। भारतवंशी जगत के धर्मगुरु रहे हैं। वे दूसरे के धन को लूटने वाले रक्त पिपासु दस्यु न थे। इसलिए मैं अपने पूर्वजों के गौरव से गर्व का अनुभव करता हूँ।
6: आपके पूर्वज यदि मानव समाज को धर्म दान देने के लिए इतने व्यग्र थे, तो वे इस देश में धर्म प्रचार करने के लिए क्यों ना आए?
2: उस समय तुम्हारे पूर्वज तो जंगली बर्बर थे, पत्तों के हरे रंग से अपने उलंग देहों को रंजित करके पर्वत की गुफाओं में निवास करते थे। क्या वे अरण्य में धर्म प्रचार करने आते?
6: स्वामी जी, आप तो ईसाई है नहीं, ईसाई धर्म के आदर्शों को आप क्या समझेंगे?
2: वे प्राच्य देशीय तथा सर्वत्यागी सन्यासी थे। मैं भी प्राच्य देशीय सन्यासी हूँ। मैं समझता हूँ पाश्चात्य जगत अभी उन्हें पहचान नहीं सका है, उनके प्रचारित धर्म को भली भांति समझ नहीं सका है। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि जाओ तुम अपना सब कुछ बांट दो और उसके बाद आओ मेरा अनुसरण करो? तुम्हारे देश के कितने विलासी लोग ईसा की ये उक्ति कि धनी व्यक्ति के स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने की तुलना में ऊंट को सुई के छेद से निकलना अधिक सरल है को सत्य मानकर सर्वत्यागी हुए हैं।
0: आलोचक चुप हो जाते। जब स्वामी जी इंग्लैंड में अपने प्रचार कार्य में व्यस्त थे तभी उनके पास अमेरिका से भक्तों तथा शिष्यों के बार बार लौटने के लिए अनुरोध पत्र आने लगे। इधर उनके मित्र और शिष्यगण लंदन में ही रह जाने के लिए उनसे अनुरोध करने लगे। अतः ग्रीष्म काल में फिर लंदन लौट आने का आश्वासन देकर उन्होंने अमेरिका जाना ही उचित समझा। इसी बीच बोस्टन की एक धनी महिला ने स्वामी जी के प्रचार कार्य का सारा व्यय उठाने का वचन देकर उन्हें एक पत्र लिखा जिससे स्वामी जी अमेरिका जाने के लिए तैयार हुए।
1: इंग्लैंड की शिष्य मंडली को एक समिति का रूप देकर उन्हें गीता तथा दूसरे हिंदू शास्त्रों की नियमित चर्चा करने का उपदेश देकर स्वामी जी अमेरिका के लिए रवाना हो गए।
0: स्वामी जी की अनुपस्थिति में अमेरिका में स्वामी कृपानंद, अभयानंद तथा भगिनी हरिदासी यानी कुमारी वाल्डो ने उत्साह से प्रचार कार्य चलाया था। न्यूयॉर्क के अलावा बफेलो और डिट्रॉयट नगर में दो प्रचार केंद्र की स्थापना हुई थी। 6 दिसंबर को स्वामी जी लंदन से न्यूयॉर्क आए। बोस्टन के भक्त महिला की सहायता से 29 नंबर स्ट्रीट में दो बड़े कमरे किराए पर लिए गए। स्वामी जी कृपानंद के साथ वहां रहते थे। दोनों कमरों में 150 छात्रों के बैठने की व्यवस्था थी। यहां पर दिए गए व्याख्यानों का संकलन कर कर्म योग नामक भाषणों की पुस्तक प्रकाशित हुई।
1: शिष्य गणों ने उनके भाषणों को लिपिबद्ध करने के अथक प्रयास किए। फिर इंग्लैंड के जे गुडविन न्यूयॉर्क आए और ये दायित्व अपने कंधों पर लिया। वे स्वामी जी के साथ परछाई की भांति जुड़े रहे, हर जगह जाते रहे और भाषणों को लिपिबद्ध किया। बाद में उन्होंने शिष्यत्व भी ले लिया था। राजयोग पुस्तक के अलावा और सभी भाषणों के संकलन गुडविन महोदय के परिश्रम का फल है।
0: अमेरिका के प्रसिद्ध वक्ता श्री रॉबर्ट इंग्रसोल जैसे स्वतंत्र विचार वाले व्यक्ति भी स्वामी जी के अभिन्न मित्र बन गए थे। परंतु पहले उन दोनों में काफी मतभेद थे। फिर यह मित्रता कैसे हुई तो सुनिए। दर्शन व साहित्य में प्रवीण होते हुए भी श्री इंग्रसोल संदेहवादी व भोगवादी थे। धर्म, ईश्वर, उपासना आदि विषयों का वे सदैव ही उपहास करते थे। परंतु वे इतने लोकप्रिय वक्ता थे कि एकमात्र भाषण देकर ही लाखों रुपए कमा लेते थे। उधर दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद कठोर सन्यासी, प्रत्येक धर्म के समर्थक, वेदांत दर्शन के प्रचारक थे। इन दोनों में मेल मिलाप वास्तव में आश्चर्यजनक था।
1: स्वामी जी के स्पष्ट, सरल परंतु स्नेहपूर्ण भावों ने ही इंग्रसोल के दृढ़ हृदय पर विजय प्राप्त कर ली थी। मतों की विभिन्नता होते हुए भी उस समय के अमेरिका के दो प्रसिद्ध वक्ताओं की मित्रता का ये दृश्य वास्तव में बड़ा मधुर था।

0: नहीं मिला था। एक दो दिन बाद उन्होंने कुमारी वाल्डो से कहा,
1: यहाँ का खाना बड़ा गंदा दीख पड़ता है, क्या तुम मेरे लिए पका सकोगी?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी मकान मालकिन से मिलकर रसोई में खाना पकाने की अनुमति लेकर आती हूँ।
1: और बर्तन भांडे?
2: आप चिंता ना करें, वो सब मैं घर से ले आऊंगी।
1: तुम्हारा घर क्या पास ही है?
2: नहीं स्वामी जी, पास तो नहीं है, वो ब्रुकलिन के दूसरी छोर पर है। पर आप चिंता ना करें, मैं सुबह 8 बजे तैयार होकर यहाँ 10 बजे तक आ जाऊंगी और आपका खाना समय पर दे दिया करूंगी।
1: तुम अकेले ही तकलीफ क्यों करोगी? सप्ताह के अंत में 2 दिन मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, वहीं दोनों मिलकर खाना पका लेंगे, ठीक है?
0: कुमारी वाल्डो के साधारण से घर की शांति और स्वतंत्रता के बीच स्वामी जी को बड़ा आराम मिलता था। वे वहाँ नए नए प्रकार के भारतीय तथा पाश्चात्य व्यंजन बनाया करते, बहुत खुश नजर आते थे वहाँ। कुमारी वाल्डो ने संस्मरण में लिखा है,
2: इतने घनिष्ठ मेल जोल के बावजूद मेरे मन में एक बार भी संसार त्याग करने की बात नहीं उठी। यही बड़े आश्चर्य की बात है। उनके साथ भारत जाने के बारे में भी मैंने कभी गंभीरता से नहीं सोचा। मुझे लगता कि मेरा स्थान अमेरिका ही है, तथापि ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं उनके लिए नहीं कर पाती। जब वे पहले बार न्यूयॉर्क में आए, तब वे सर्वत्र ही अपने नारंगी रंग के वस्त्र पहने रहना चाहते थे। ब्रॉडवे पर ऐसे अग्नि के समान भड़कीले कोट पहनकर चलने के लिए बड़े साहस की जरूरत पड़ती थी। स्वामी जी, जब किसी की भी परवाह किए बिना राजोचित मुद्रा में लंबे लंबे डग भरते मेरे आगे चलते और मैं हाफते हुए उनके साथ चलने का प्रयास करती, उस समय सभी लोगों का ध्यान हमारी ओर खिंच जाता और हर व्यक्ति पूछता, कौन है ये लोग? बाद में मैंने उन्हें समझा बुझाकर और भी हल्के रंग का कोट उपयोग करने को राजी कर लिया था।
3: एक दिन स्वामी जी ने वाल्डो की आंखों में आंसू देखकर पूछा,
1: क्या बात है एलन, कुछ हुआ है क्या?
2: क्योंकि जब दूसरे लोग आपको नाराज कर देते हैं तो आप आकर मुझे ही डांटते हैं।
1: देखो, मैं उन लोगों को ठीक से जानता नहीं कि उन्हें डांट सकूं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आता हूं। यदि अपने लोगों को भी ना डांट सकूं तो फिर डांटने के लिए और किसके पास जाऊंगा? चलो आंसू पोंछ डालो, अब तुम्हें नहीं डांटूंगा।
3: वाल्डो के आंसू सूख गए।

0: वहां सड़क के दोनों ओर बादामी रंग के पत्थरों से निर्मित एक ही प्रकार के मकानों की कतारें थी। मकानों के रूप रंग में इतनी समानता थी कि एक बार एक प्रसिद्ध चित्रकार ने प्रश्न किया, आप लोग कैसे समझ पाते हैं कि हम अपने ही घर में आए हैं? गलती से पड़ोसी के घर में भी तो प्रविष्ट हो जाने की संभावना है। इनमें से प्रत्येक संकरे परंतु लंबे मकान की दूसरी मंजिल पर एक लंबा और संकरा बैठक खाना होता था। इसके एक ओर ऊंचा मुड़ने वाला दरवाजा, दूसरे छोर पर दो बड़ी खिड़कियां और दोनों के बीच में फर्श से छत तक पहुंचता हुआ एक बड़ा दर्पण लगा रहता था। इस दर्पण की ओर स्वामी जी का आकर्षण दिख पड़ा। वे बारंबार उसके सामने खड़े होकर बड़े ध्यानपूर्वक अपने को देखने लगे और बीच बीच में विचारों में डूबे चहलकदमी करते रहे। कुमारी वाल्डो की आंखें भी उनका अनुसरण कर रही थी। वे सोच रही थी, अब इनका भांडा फूटने ही वाला है, ये अपने व्यक्तित्व के मद में चूर दिखते हैं। स्वामी जी सहसा उनकी ओर मुड़े और कहने लगे, एलेन, ये बहुत ही विचित्र बात है कि मैं याद ही नहीं रख पाता कि मैं कैसा दिखता हूं। मैं बारंबार दर्पण में अपने को देखता हूं, परंतु वहां से मुड़ते ही याद नहीं रह जाता कि मैं कैसा दिखता हूं।
1: रोमा रोला साहब ने और कई घटनाओं का उल्लेख किया है, आइए उन घटनाओं के बारे में उन्हीं के मुख से सुने।
0: स्वामी जी की प्रथम अमेरिकी यात्रा के दौरान ही उनकी राजयोग पुस्तक तैयार हुई थी। इसका अधिकांश भाग उनके मुख से सुनकर कुमारी वाल्डो ने लिपिबद्ध किया था। उन्होंने इसे संकेत लिपि में नहीं अपितु सामान्य लिपि में ही लिखा था। इस कार्य में बीते आनंद पूर्ण समय की बातें उनके लिए विशेष रूप से स्मरणीय थी। वे प्रायः ही उस पर चर्चा किया करते। प्रतिदिन स्वामी जी का भोजन पक जाने तथा रसोई घर का कार्य समाप्त हो जाने पर वे मकान के पिछले हिस्से में स्थित स्वामी जी के कमरे में आते और मेज पर रखी दवात में कलम डुबाकर प्रतीक्षा में बैठी रहती। तब से लेकर उस दिन की कार्यावली समाप्त होने तक उनकी कलम की निब भीगी ही रहती थी, ताकि वे स्वामी जी के मुख से बीच बीच में निकल पड़ने वाली वाक्य धारा को पकड़ सके। कभी कभी किसी सूत्र के किसी संस्कृत शब्द का अंग्रेजी पर्याय सोचते हुए वे 15 से 20 मिनट तक एकाग्रता पूर्वक मौन बैठी रहती, परंतु कलम को सूखने नहीं दिया जाता था, क्योंकि किसी भी क्षण बोलने का प्रभाव प्रारंभ हो जाने की संभावना बनी रहती। पांडुलिपि तैयार हो जाने पर उसके मुद्रण का उत्तरदायित्व कुमारी वाल्डो को सौंप दिया गया, परंतु पुस्तक निकलने के पूर्व उन्हें बड़े कष्ट तथा मर्मांतिक पीड़ा का अनुभव करना पड़ा था। स्वामी जी के एक अन्य विशिष्ट अनुरागी ने पांडुलिपि को उनसे देखने के लिए लिया और उसे लंदन में ले जाकर प्रकाशित कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इसके लंदन में प्रकाशित हो जाने से स्वामी जी के कार्य में सुविधा होगी, परंतु इसके फलस्वरूप अमेरिकी संस्करण निकलना संभव न हो सका। अप्रचलित शब्दों की तालिका तथा कुछ अन्य सामग्री जोड़ने के बाद ही उसे प्रकाशित किया जा सका।

0: स्वामी जी ने स्टर्डी महोदय को फरवरी 1896 ईस्वी में जो पत्र लिखा था उससे भी उनकी न्यूयॉर्क के उन दिनों की कार्यप्रणाली के बारे में अच्छी धारणा हो जाती है। उन्होंने लिखा था,
1: यहाँ प्रति सप्ताह मेरी 6 कक्षाएं चलती हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रश्नोत्तर कक्षा भी है। श्रोताओं की संख्या 70 से 120 तक होती है। साथ ही प्रति रविवार को मैं एक सार्वजनिक भाषण भी देता हूँ। पिछले माह जिस सभागार में मेरे व्याख्यान हुए उसमें 600 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, परंतु प्रायः आते थे 900 लोग। कुछ तो खड़े रहकर सुनते थे और कुछ को स्थानाभाव के कारण वापस लौट जाना पड़ता था। अतः इस सप्ताह मैंने एक बड़ा सभागार ठीक किया है जिसमें 1200 लोग बैठ सकेंगे। इन व्याख्यानों में प्रवेश पाने के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं मांगा जाता, परंतु सभा के समय जो चंदा एकत्र होता है उससे मकान का किराया चुक जाता है। इस सप्ताह संवाद पत्रों की दृष्टि भी मुझ पर पड़ी है और इस वर्ष मैंने न्यूयॉर्क में काफी हलचल मचा रखी है। भय होता है कि निरंतर कार्य के बोझ से मेरा स्वास्थ्य चौपट हो जाएगा। मैंने भक्ति पर लेख लिखना आरंभ कर दिया है। यहां के कुछ मित्र मेरे रविवार के भाषणों को छाप रहे हैं। पहले की कुछ प्रतियां मैंने तुम्हें भेजी हैं। अगली डाक से परवर्ती 2 व्याख्यानों की कुछ प्रतियां तुम्हें भेजूंगा।
2: इस तरह हम देखते हैं कि अमेरिका में स्वामी जी प्रदत्त भाषण संरक्षित हो गए। इसका श्रेय श्री गुडविन और कुमारी वाल्डो को जाता है। दोनों ने दिन रात जुटकर स्वामी जी के श्रीमुख से निकले एक एक शब्द को सहेज कर रखा। हम उन दोनों के प्रति आभारी हैं, क्योंकि उन दोनों के परिश्रम के फलस्वरूप आज हमें स्वामी जी का साहित्य पढ़ने के लिए उपलब्ध है।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 गीगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सभा का समापन राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बज चुके हैं, हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में सुबह 6:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। अब हमें अनुमति दें। नमस्कार, जय हिंद।